0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए। मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
1: क्या आपकी विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं, तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी स्टार विंडोज और डोर से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट एक साल के बाद कर दें कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ। याद आएगी, इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए, सम कंडीशंस में अप्लाई। मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200। It's 416-206-3200।
2: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बोवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैकलॉगलन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट BramptonAppliances.ca।
4: बारबेक्यू टुनाइट की दूसरी लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में। 200 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश, बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं। बारबेक्यू आइटम्स, बिहारी कबाब, सीख कबाब, कड़ाही, बिरयानी, ताजा नान और बेशुमार डिशेज, जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन। पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 9052829868। बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में। 9052829868।
5: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001, 9058191001, license number 12374.
6: Just for you, bringing you world's largest Eid festival from May 22nd till May 20th.

0: Alaikum. You are listening to Radio Pakistan Toronto.
1: बटकड़ाही की पिकरिंग लोकेशन में आपके लिए 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता, ऐसा जायका जो आपने पहले कभी चखा ही ना हो। इसके अलावा बटकड़ाही की रिवायती कड़ाही, गोट पाए, निहारी, खोए वाले चने, स्मोकी कीमा, बटर और सेसमी नान, लस्सी और बेशुमार आइटम्स। केटरिंग के लिए स्मॉल और लार्ज ट्रेज अवेलेबल है जिसमें आपके पसंद की बेशुमार डिशेज। रेस्टोरेंट के साथ 150 लोगों तक की पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल जिसमें मेहंदी, बर्थडे, वेडिंग, फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं। बुकिंग के लिए अभी कॉल कर लें बटकड़ाही 820 किंगस्टन रोड पिकरिंग 905-839-0002। बटकड़ाही जहां 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता।

ஒரு கிண்ணத்தை ஏந்துகின்றேன், பல எண்ணத்தை.

கொஞ்சம் எனக்கு

0: Monday to Friday.
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: क्या आप सुन रहे हैं?
3: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
2: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
3: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
5: वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। मैं हूं शिवानी आपके साथ, और आमिर और शिवानी के साथ शुरू हो चुका है लवी डवी शो का ये लवी डवी सा सफर। ट्यूसडे की बड़ी खूबसूरत सी मॉर्निंग है, और टेम्परेचर के लिहाज से, मौसम के लिहाज से, धूप के लिहाज से, सनशाइन के लिहाज से बहुत खूबसूरत सा दिन चढ़ा है, और हफ्ते का दूसरा दिन है, और उम्मीद है कि आपने इस दिन को भी बड़ी खूबसूरत तरीके से, पॉजिटिव तरीके से और फुल ऑन इन्जॉयमेंट के साथ इन्जॉय करने के लिए सोचा होगा। बहुत सारी बेस्ट विशेज आपके लिए हमारी तरफ से। आपका आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरे, हर एक मोमेंट, हर एक लम्हा आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, अपनों का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी अच्छी सेहत और बहुत सारी कामयाबी लेकर आए। 416-303-3639 इज द नंबर टू कॉल, 416-303-3639। कहते हैं यू वर बॉर्न विद विंग्स, you were born with wings. Why prefer to crawl throughout your life? You have wings, learn to use them and fly. This is Lovey Dovey Show.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 905-819-1001 License number 12374।
3: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट्स से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
4: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
5: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
4: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
6: द लवी डवी शो ड्राइविंग यू होम, अ मेलोडी अबव एंड बियॉन्ड, ब्रॉट टू यू बाय रेडियो टोरंटो कनाडा, मंडे टू फ्राइडे।
7: कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। समझे ना जिसे तुम आंखों से, वो बात जुबानी कह देंगे। जो प्यार करेंगे जानेंगे, हर बात हमारी मानेंगे। जो खुद ना जले हो उल्फत में, वो आग को पानी कह देंगे। जब प्यास जवां हो जाएगी, एहसास की मंजिल पाएगी। खामोश रहेंगे और तुम्हें हम अपनी कहानी कह देंगे। इस दिल में ज़रा तुम बैठो तो, कुछ हाल हमारा पूछो तो। हम सादा दिल हैं अश्क मगर, हर बात पुरानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023। इट्स 437-829-6023। मास्टर धनिक महाराज।
5: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
6: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
7: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
6: क्या वो मदद करेंगे?
7: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
8: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
7: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
8: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
9: द लवी डवी शो, ड्राइविंग यू होम, अ मेलोडी अबव एंड बियॉन्ड, ब्रॉट टू यू बाय रेडियो टोरंटो Canada, Monday to Friday.
10: This is Lovey Dovey Show. मैं हूँ शिवानी, मेरे साथ हैं आमिर और हम दोनों के साथ हैं आप सारे लिस्टनर्स। और ये है डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स। जाना पहचाना ये कोर्स है। अरसे से ये जो लवी डवी शो रेडियो टोरंटो कनाडा की जानिब से आपको दिया जा रहा है। कितने ही ऐसे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं जो अपना अपना बिजनेस जो है इससे करने के बाद शुरू कर चुके हैं, जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और अपना बिजनेस अब खुद प्रमोट करना चाहते हैं, खुद के बॉस बनना चाहते हैं। हायरिंग के लिए किसी को हायर करके जिंदगी भर पेमेंट करने से अच्छा एक छोटे अमाउंट दे के आप जिंदगी भर के लिए अपना खुद प्रमोशन कर सकते हैं A to Z। और उसके लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डिजिटल मीडिया कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आफीफ अली। आफीफ, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
11: गुड मॉर्निंग, आई एम वेल, हाउ आर यू?
10: बिल्कुल ठीक ठाक, ऑल गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। और डिजिटल मीडिया कोर्स के हवाले से सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स जो नए नए लिसनर्स रोज जुड़ते हैं, तो सबसे पहले ये हमसे जानना चाहेंगे कि ये डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स क्या है।
11: ओके, सो ये डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन एक कोर्स है विच इज कल्बिनेशन ऑफ काफी डिफरेंट जो है ना फील्ड ऑफ मीडिया। इसमें कंटेम्प्रेरी मीडिया भी आ जाती है, जैसे फिल्म एंड टेलीविजन हो गई एंड सोशल मीडिया भी आ जाती है, राइट? तो इसमें हम सिखाते हैं काफी चीजें।
10: अच्छा।
11: सबसे पहले आपको कंटेम्प्रेरी मीडिया में सिखाते हैं डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन, कैमरा कैसे यूज करना है, उसके बेसिक्स, ISO वगैरह क्या होते हैं, लाइटिंग क्या होती है, राइट? उसके बाद अगर हम डिजिटल साइड पे आए तो हम पढ़ाते हैं सोशल मीडिया में क्या क्या चीजें होती हैं, सच एज कि आपको अपनी, क्योंकि सोशल मीडिया इज अ वर्टिकल फील्ड मोर ऑफन, तो उसमें कैमरा जो है वो स्ट्रेट होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता, तो उसकी डिफरेंट चीजें सिखाते हैं। बहरहाल ये सिखाते हैं कि उसमें आप किस तरह रील्स बना सकते हैं, क्योंकि टाइम स्पैन भी छोटा होता है, 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको अपना मैसेज देना है, वो आप कैसे करेंगे, स्टोरी बोर्डिंग कैसे होती है, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, उसके बाद पोस्टर डिजाइनिंग सिखाते हैं, एनिमेटेड पोस्टर्स होते हैं आपको, फिर सिखाते हैं कि पोस्टर रील्स कैसे बनाते हैं, काफी सारी चीजें, और उसके बाद आखिर में आता है कि एडिटिंग, आखिर में तो नहीं लेकिन जो थर्ड स्टेप होता है प्रोसेस का, वो कि आपने एडिटिंग कैसे करनी है, राइट
10: जी।
11: और एडिटिंग के लिए हम सबसे जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है अडोबी प्रीमियर प्रो, वो सिखाते हैं।
10: एंड
11: उसके बाद हम, जब आपका एक वीडियो बन गई या आपका एक प्रोडक्ट बन गया, तो आपने वो अपलोड कैसे करना है, मार्केट कैसे करना है, ये सारी चीजें सिखाते हैं इस कोर्स में। एंड दिस कोर्स इज फॉर लाइक 4 वीक्स का कोर्स है,
10: ठीक है,
11: सैटरडे एंड संडे फ्रॉम 1 PM to 6 PM।
10: जी, 1 PM to 6 PM, महज 4 हफ्तों में, वो भी सैटरडे और संडे जब मसरूफियत नहीं होती है, उसमें आप ये आइए कोर्स कीजिए और सिर्फ 4 हफ्तों में आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। जिंदगी भर के लिए आपके पास एक ऐसा हुनर होगा जो आप खुद अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। कंटेंट क्रिएशन और जो पंच लाइन होती है, जो टैग लाइन होती है, वो सब भी कुछ इसमें पढ़ाया जाता है, इंक्लूडिंग फंडिंग।
11: जी बिल्कुल, पंच लाइन टैग लाइन ये भी हमारे जो राइटिंग के अंदर आता है ना, उसमें आ जाता है।
10: अच्छा, ठीक है।
11: कि आपको फॉर एग्जांपल अगर आपका एक ब्रांड है, तो आप उसकी जो है ना एक टैग लाइन क्या बनाएंगे, या फिर आपके एड की पंच लाइन क्या होगी, ये सारा भी सिखाया जाता है। एंड फंडिंग ज्यादा आ जाते हैं तो फंडिंग भी सिखाते हैं, क्योंकि कैनेडा में काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फिल्म या फिर डॉक्यूमेंट्री को फंड करती हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, आपका सबसे पहले आइडिया होना चाहिए फॉर एग्जांपल, उसके बाद आपको किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, ये सारा सिखाया जाता है।
10: जी बिल्कुल, और उसके लिए नंबर एक ही घुमाना है आपको, एक छोटा सा अमाउंट, वेरी वेरी रीजनेबल अमाउंट एज कम्पेयर टू व्हाट यू विल बी टॉट इन द कोर्स, बहुत रीजनेबल अमाउंट है जिंदगी भर के लिए, सिर्फ वन टाइम फी है ये। 416-303-3639, आई रिपीट द नंबर 416-303-3639। हफीफ, इससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, कुछ और ऐड करना चाहेंगे?
11: या मैं ये कहना चाहूंगा कि इट इज, ये जो कोर्स है ये हमने बनाया इसलिए है कि वो लोग जो खुद अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहे, या फिर वो खुद अगर फॉर एग्जांपल अगर उनको शौक है कि उनको जो है ना एक इन्फ्लुएंसर बनना है, या फिर उनको वीडियोस बनाने का शौक है, तो ये स्पेशली हमने उन लोगों के लिए बनाया है।
10: अमेजिंग।
11: तो मेक श्योर यू कम टू दिस कोर्स, एंड जब आप आएंगे आपको खुद सीखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा इस कोर्स लेने में।
10: क्या बात है, तो बस मजे मजे में प्रोफेशनल बनिए और बहुत जल्दी से 4 हफ्तों में प्रोफेशनल बन जाइए इस कोर्स को करके। 416-303-3639। हफीफ, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, प्लेजर हैविंग यू विद अस, थैंक यू।
11: थैंक यू सो मच।

0: listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: is the number to call. और आप हैं लवी रवि पर आमिर और शिवानी के साथ. दोस्तों, अगर हम बात करें भारत की, बात करें पाकिस्तान की और दूसरी सिमिलर क्लाइमेट वाली कंट्रीज़ की, तो उसमें अच्छा खासा समर आ चुका है. यहाँ थोड़ा सा समर आने में टाइम ले रहा है, लेकिन बहुत जल्दी समर आएगा. और आएगा तो ऐसा आएगा कि बस यहाँ की जो थोड़ा सा ही पॉकेट होती है, थोड़ी सी ही विंडो होती है समर की, लेकिन जो होती है तो अच्छी खासी शिद्दत के साथ गर्मी पड़ती है. तो अगर हम स्किन केयर की बात करें गर्मियों में, तो वो जहाँ कहीं भी हम रहते हैं उसकी ज़रूरत डेफिनेटली पड़ती है. स्किन केयर की ज़रूरत तो हर मौसम में पड़ती है, लेकिन समर में इसकी ख़ास तौर पर हमें अपनी स्किन की को ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, स्पेशली इन दिस कंट्री जहाँ पे हमें बहुत छोटी सी विंडो समर की मिलती है. हम सोचते हैं क्या कुछ ना कर गुजरे हम, और लेकिन बड़ी आसानी के साथ थोड़ा सा ध्यान रख के हम इस समर को एंजॉय कर सकते हैं और अपनी स्किन और एक खूबसूरत स्किन को भी इंजॉय कर सकते हैं. तेज़ धूप होती है, स्वेटिंग होती है, बाहर निकलते हैं तो थोड़ी सी डस्ट भी होती है, स्किन डल लगने लगती है, लाइफलेस लगने लगती है, ब्लेमिशेज आने लगते हैं, रिंकल्स जल्दी आने लगते हैं. और इसका सही जो इलाज है वो है होम रेमेडीज और साथ में गुड डाइट. अगर हम अपनी डाइट पर ध्यान रखते हैं और घर की बनी हुई चीज़ें अपने चेहरे पर लगाते हैं, यानी कि जो हमारे स्पाइसेस हैं, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं. अगर हम खाने की बात करें तो उसमें जो कोकोनट वाटर है, जिसको हम नारियल का पानी कहते हैं, वो हमारी बॉडी को अंदर से कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है और टॉक्सिन्स बाहर निकाल कर हमारे चेहरे पर नेचुरल ग्लो लेकर आता है और ताज़गी बनाए रखता है, फ्रेशनेस बनाए रखता है. इसके अलावा एक दूसरा ड्रिंक का बहुत अच्छा है, बहुत इफ़ेक्टिव है, जिसको हम कहते हैं वाटरमेलन का जूस. इसमें बहुत पानी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं, सन डैमेज कम करते हैं, चेहरे को फ्रेश रखते हैं, सॉफ्ट रखते हैं और शाइनी बनाने में मदद करते हैं. इसके अलावा अगर हम क्यूकम्बर की बात करें, वो भी हमें बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट देता है, स्किन को डिटॉक्स करता है, पिंपल्स और ऑयल कंट्रोल में मदद करता है, जिससे हमारा चेहरा जो है वो क्लीन दिखाई देता है, फ्रेश दिखाई देता है और ग्लोइंग स्किन नजर आती है. और इसी के साथ अगर हम फेस पैक की बात करें, तो ढेरों ऐसे फेस पैक हैं जो अक्सर मैं शेयर भी करती रहती हूँ और आपने पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे. तो उसमें योगर्ट है, टर्मरिक है, हनी है, लेमन है, फुलर्स अर्थ जिसको मुल्तानी मिट्टी कहते हैं, इसके अलावा एलोवेरा जेल है जो बहुत ठंडक देता है. कहीं भी आप सन से आ रहे हैं, एलोवेरा जेल अपने चेहरे पर लगाइए, लगे रहने दीजिए, ओवरनाइट भी लगे रहने दे सकते हैं. सिंपल तरीका है, रात में अपना जब शाम को आके आप अपना फेस वॉश करें सारे दिन के बाद, तो या तो एलोवेरा जेल लगा लीजिए रात भर के लिए, या थोड़ा सा कोल्ड मिल्क कॉटन में रब करके लगा लीजिए, वो भी आपको बहुत खूबसूरत सा रिजल्ट्स देगा आपके चेहरे पर. और इसी के साथ प्यार से लव के साथ सुनते रहिए लवी रवि शो. 416-303-3639 आप हैं आमिर और मेरे यानी शिवानी के साथ.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023। इट्स 437-829-6023। मास्टर धनिक महाराज।
5: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
6: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
5: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: दर्द कमर का हो या जोड़ों का, परेशानी डायबिटीज की हो या शियाटिका पेन हो, जोरों का स्ट्रेस और एंग्जाइटी की दिक्कत हो या मसला बे औलाद जोड़ों का, बात करें आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी के साथ, क्योंकि ये 8 जनरेशन से सिर्फ आयुर्वेदा में आपको सेवाएं दे रहे हैं। इंडिया से खालिस हर्ब्स लाकर आपके लिए ऐसी दवा तैयार करते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी। शियाटिका पेन, नेक पेन, लो स्पर्म काउंट, स्ट्रेस, स्किन डिजीजेस या किसी भी तरह के जनरल हेल्थ इशू के लिए कॉल कीजिए आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी। 437-438-3399। इट्स 437-438-3399।
3: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001 License number 12374.

0: साहब, एक वक्त था इस मुल्क में, इस देश में, जब कोई मसला, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती थी तो प्रोफेशनल्स का मिलना मुहाल होता था। हमारी तमाम तर कोशिश के बावजूद भी प्रोफेशनल्स मिल नहीं पाते थे किसी सूरत। हम और आप बहुत लकी हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं कि यहाँ आज हमें प्रोफेशनल्स की खदमात हासिल हैं, सर्विसेज हासिल हैं, अवेलेबिलिटी है हमारे पास। अब बात कर लेते हैं आपके रोड पर मौजूद होने की। इस वक्त बहुत से लोग अपनी गाड़ियों में, अपनी कारों में, अपने ट्रक्स में हमें सुन रहे होंगे। उनके लिए पैगाम यह है कि कुछ नंबर्स का कम से कम ड्राइवर्स के पास होना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटोरी है। आप जितने भी मोहतात ड्राइवर हों, लेकिन आपके साथ रोड पर गाड़ी चलाने वाले दूसरे लोग कितने मोहतात हैं ये आप कभी नहीं जान सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि बी वेरी वेरी केयरफुल एंड हैव एटलीस्ट वन नंबर that belongs to a very experienced, very skillful or more than full-time personal injury lawyer. इन्होंने business administration पढ़ा, commercial law में क्या क्या laws applicable हैं, किन किन laws से काम लिया जा सकता है, क्या क्या areas हैं, ये सब जानते हैं। उसके बाद फिर obviously LLB करने के बाद इन्होंने जो सेक्टर, जो फील्ड चुनी, जो डिपार्टमेंट चुना, वो पर्सनल इंजरी का था। और जब से ये कर रहे हैं पर्सनल इंजरी, तब से इन्होंने पलट के नहीं देखा है। ही इज द स्पेशलिस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सनल इंजरी लॉयर, सैयद एम रजा बैरिस्टर। वेलकम करते हैं सर आपको।
1: जी तो फैल भाई, आपका और आपके रेडियो प्रोग्राम का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का, आपके इंट्रोडक्शन का एज वेल। तो फैल भाई, ये है कि हमारी लॉ फर्म, ऐसा आपने बताया कि एक्सक्लूसिवली पर्सनल इंजरी को कंसंट्रेट करती है जी। उसका रीजन ये है कि इसमें नंबर वन कि हमारी कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है कि वो रिप्रेजेंटेशन अवेलेबल नहीं थी, तो इसीलिए सैयद लॉ ने ये जो है ये डिसाइड किया कि पर्सनल इंजरी क्लेम्स में, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए होती है कि दे व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट, तो वो जो है वो इधर उधर चले जाते हैं, उनके केसेस किल हो जाते हैं या किल कर दिया जाता हैगा, और उनको वो कंपनसेशन नहीं मिलता हैगा कि जो वो डिजर्व करते हैं, ना ही उनके बेनिफिट्स प्रोसेस होते हैं, ना ही उनको ट्रीटमेंट नहीं। तो ये सब देखते हुए जो है वो सैयद लॉ ने यही जो है वो जिसको क्या कहते हैं कि वी डिसाइडेड कि वी हैव टू प्रैक्टिस ओनली इन पर्सनल इंजरी। अब इसमें आप ये देखें कि व्हाट वी डू फॉर आवर क्लाइंट्स, वी इमीडिएटली प्रोसेस ऑल देयर बेनिफिट्स द मोमेंट दे रिटेन अस, आवर टीम स्टार्ट्स वर्किंग ऑन प्रोसेसिंग देयर बेनिफिट्स। इसमें जो है वो जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत जरूरी इसलिए होते हैं कि एक शख्स है जो अपना राइट शेयरिंग सर्विसेज का काम कर रहा था, अभी उसके पास जो है वही मुसीबत सर ये है कि राइट शेयरिंग सर्विसेज वालों को जो है उनकी गाड़ी जो है जब अच्छा स्टोरेज में होती है, उनके पास कोई जो है वो अदर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होता है। तो उनकी पास जब तक एक डेढ़ महीने में जब तक उनके पास दूसरी गाड़ी नहीं आ जाती है, दे आर ओनली एट द मर्सी ऑफ यू नो व्हाट दीज इंश्योरेंस कंपनीज। उसमें जो है वो उनको इतनी बुरी तरह ट्रीट करती हैं कि इंश्योरेंस कंपनी, दे थिंक दैट बाय इन्वॉल्विंग एन एक्सीडेंट सम पीपल हैव कमिटेड अ क्राइम। दे डोंट नो कि जी उसके ने इसी के लिए तो आपको पे किया है, और आप जो सैलरी लेते हो वो आप इसी काम की सैलरी लेते हो, ये आवाम के पैसे से आप सैलरी लेते होगे, और आवाम को ही आप अपना दुश्मन जो है वो ट्रीट करने लगते होगे। तो ये हमारी जो स्ट्रगल है, हमारा जो वर्क हैगा, ये सारी उन इंश्योरेंस कंपनीज के अगेंस्ट हैगा जो बेनिफिट्स नहीं देना चाहती हैंगी। आप यकीन जाने एक्सीडेंट होता है कहती हैं जी हमारे ट्रीटमेंट सेंटर पे चले जाओ। भाई तुम्हारे ट्रीटमेंट सेंटर पे क्यों चले जाएं? तुम्हारा ट्रीटमेंट सेंटर जहाँ तुम रिकमेंड कर रहे हो वो तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसा होता है तो फैल भाई वहाँ चले गए, उन्होंने आपकी इंजरीज की जो लिस्ट बनाई, उन्होंने जो सिग्निफिकेंट इंजरीज है वो लिखी नहीं, और बाद में जो है वो आप कह रहे हो कि जी मेरे को तो ये इंजरी, क्या तुम्हें उस वक्त तो ये इंजरी नहीं थी, अभी ये इंजरी कैसे आ गई? तो आप देखें मतलब के लेवल ऑफ इसको कहना चाहिए कि मैनिपुलेशन किस कदर जो है वो अडॉप्ट किया जाता है, किस लिए? टू किल द बेनिफिट्स, नॉट टू पे द बेनिफिट्स, कि क्लेम जो है वो आगे प्रोसेस ना हो। और एक बात और बता दूं, बेसिकली जो क्लेम का जो इनिशियल स्टेज होता है ना, जो आपकी इंजरीज लिस्ट की जाती हैं, ये जो आप हॉस्पिटल में जाते हो आप इंजरीज बताते हो, आप फैमिली डॉक्टर के पास जाते हो, आप फिजियो के पास जाते हो, आप इंजरीज बताते हो, ये अगर इनिशियली इंजरी सही लिस्ट ना हो तो बिलीव मी तुफैल भाई आगे जाके आपका केस जो है ये बहुत बुरी तरह अफेक्ट होता है, और आपका जो टॉर्ट क्लेम है, जो क्लेम अगेंस्ट एट फॉल्ट ड्राइवर है, वो बहुत बुरी तरह उसकी वैल्यू जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। इसलिए यू हैव टू अवॉइड ऑल दीज पिटफॉल्स इन योर क्लेम्स। पिटफॉल अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है, हम बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, हम उनको हर स्टेज पे बताते हैं कि वी आर डूइंग दिस एंड वी नीड दिस टू स्ट्रेंथन योर केस, वी नीड यू टू कंटिन्यूअसली यू नो व्हाट कोऑर्डिनेट विद अस। मतलब बहुत से क्लाइंट जो है, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ पे जो है वो हर लोग भी बिजी होते हैं, फिर काम होते हैं सारे, तो बट द थिंग इज दैट you have to concentrate on your claim, you have to go for treatment, you have to go for assessments, everything, taki aapka claim jo hai wo strong bane. That's what we do, that's what our team supports our client to do, that's what our team motivate our clients to do. yahi wajah hai ki hum jo settlements karwate hainge they are very very competitive settlement, koi bhi jo hai us settlement se jo hai, yahi wajah Syed Law last 13 years se ek hi field mein kyun kaam kar raha hai, wajah yahi hai कि पीपुल ट्रस्ट Syed Law फॉर देयर इंजरी क्लेम्स। तो फैल भाई कोई भी छोटा बड़ा कार एक्सीडेंट, स्लिप एंड फॉल, ट्रिप एंड फॉल हो, आपके लिसनर्स प्लीज नोट द नंबर तो फैल भाई इज गोइंग टू टेल यू, और Syed Law को कॉल करें, आपकी अपनी इंजरी लॉ फर्म इंजरी टेकन सीरियसली। थैंक यू तो फैल भाई, आप
0: इंजरी टेकन सीरियसली ये इनका स्लोगन है, और एक एक कदम पे एक एक स्टेप पे आपको आगाह रखते हैं, आपको बाखबर रखते हैं, आपको लूप में रखते हैं, आपके साथ बात करते रहते हैं, आपको चिट्ठी मिलती रहती है कि आपका मामला किस स्टेज तक पहुंच गया है। पर्सनल इंजरी के स्पेशलिस्ट लॉयर हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द टाउन, टॉक टू हिम राइट अवे। ये है नंबर 416-937-5046। नंबर दोबारा बता रहे हैं 416-937-5046। बहुत शुक्रिया Syed M. Raza Barrister, थैंक यू वेरी मच।
2: थैंक यू। 416-303-3639। और आमिर कहते हैं कि पहला इश्क अपनी जड़ों से कीजिए,
0: आहा,
2: जिनसे आप शादाब हैं, जिन जो आपकी रूट्स हैं, जिनकी वजह से आप यहाँ पे हैं, पहला इश्क उनसे होना चाहिए, वो पहले इश्क के हकदार हैं। दूसरा उस दरख्त से कीजिए जिसकी छाओं ने आपको पाला पोसा, और तीसरा अपने आप से इश्क कीजिए। और उसके बाद भी अगर चौथे इश्क की तमन्ना रह जाए तो वो उससे कीजिए जिसे आपके इन तीनों इश्कों से इश्क हो।
0: मैं आपकी बात से सिर्फ इतना रजामंद हूँ, मुत्तफिक हूँ कि
2: सिर्फ इतना
0: तरतीब उलट कर लेना चाहता हूँ।
2: अच्छा,
0: कि सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत कीजिए, क्योंकि जहाज जब डूब रहा होता है तो दूसरों को बचाने की तमन्ना और आरजू तो सबको होती है, लेकिन इसी चक्कर में, इसी मामले में, इसी कोशिश में लोग अपनी या तो जान गंवा बैठते हैं, या जख्मी हो जाते हैं, या लहू लुहान हो जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि अपने आप से मोहब्बत पहले की जाए, अपने आप से करेंगे तो दूसरों को मोहब्बत तो आपसे फिर खुद ब खुद ही हो जाएगी।
2: बिल्कुल सही, तभी हम फ्लाइट में भी जाते हैं तो जो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो सबसे ना ये ऑक्सीजन मास्क है जो भी है इन केस ऑफ इमरजेंसी, सबसे पहले अपने ऊपर लगाइए, फिर अपने चाहे आपके घर वाले बगल में बैठे
0: हाँ
2: उनका नंबर आपसे बाद में आना चाहिए।
0: खुद बचे रहेंगे तो फिर दूसरों को भी बचाएंगे आप। तो आपने जो आखिरी नंबर पे कहा कि इश्क अपने आप से कीजिए,
2: आखिरी तो चौथा वो था, चौथे इश्क की अगर इच्छा बच जाए
0: अच्छा
2: तो उससे कीजिए जिससे आपको इन तीनों से इश्क हो।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, बहरहाल तीसरे नंबर पे भी ये मामला ठीक नहीं है, ये इसको पहले नंबर पे होना चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है,
2: अच्छा,
0: कि वो लोग जो इश्क नहीं करते, जिन्हें इश्क का जज्बा जिनके दिल के अंदर बेदार नहीं होता, मुझे लगता है कि उन्हें जिंदगी जीने का कोई हक हासिल नहीं है। मोहब्बत, मुरव्वत, खुलूस, चाहत, इकरार, चाह, इन सब से कहीं ऊपर का जज्बा है इश्क।
2: बिल्कुल,
0: जिसमें मिठास भी है, थोड़ा थोड़ा ये तुर्श भी है, जरा सा गुदगुदा भी देता है कभी कभी, और जरा सा गम भी दे देता है कभी कभी। इसमें कमाल की छांव है और इंसान को झुलसा देने वाली धूप भी है।
2: बिल्कुल सही।
0: इसमें मजा भी है, लुत्फ भी है, इसमें अनकही सी दर्द भी है, इसमें बेसबब सी उदासी भी है। अगर आप जिंदगी के सब लुत्फ लेना चाहते हैं तो इस इश्क से बड़ा कोई जज्बा नहीं है। तो इश्क कीजिए, एक ऐसी जिंदगी जिए आप जिसमें तनवो है, जिसमें डाइवर्सिटी है, जिसमें रंग है, जिसमें मौसमों के फूल खिले हैं, जिसमें हर तरफ अनवाहो एकसाम के नज़ारे आपको दावत दे रहे हैं, और ये दावत नज़ारा है।
2: क्या बात है।
0: तो मुझे लगता है कि इश्क करना चाहिए, और सबसे पहले
2: अपने आप से करना चाहिए।
0: आईने के सामने जाए, अपना चेहरा देखें, जरा सा मुस्कुराएं, और फिर ये सोचें कि ऊपर वाले ने आपको क्या खूब बनाया है।
2: और फिर एक कोटेशन याद रखें जो एक साइकोलॉजिकल स्टडी के बेसिस पे की गई है, कि आप जितने खूबसूरत अपने आप को महसूस करते हैं, दूसरों को उससे 20% ज्यादा अच्छे लगते
0: हैं। अरे, तो आप इज इट लाइक दैट?
2: हाँ, जैसे आप अपने आप को अभी मान लीजिए 95% समझ रहे हैं, तो आप 115% लोगों को लग रहे हैं अच्छे।
0: उन लोगों में कौन कौन शामिल है?
2: बहुत हैं।
0: अच्छा,
2: मैं कल ही आपसे एक दो का जिक्र कर रही थी।
0: वो एक दो नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है।
2: सिर्फ एक है। दो तीन मैंने इसलिए कहा कि उस एक को देख के

0: जिंदगी की रानाइयों से है, जिंदगी के हुस्न से है, इसकी खूबसूरती से है। वो लोग जो इश्क करना भूल जाते हैं वो जिंदगी से प्यार करना भूल जाते हैं, ये मेरा अपना मानना है
1: जी।
0: लेकिन एक बात इस मामले में बहुत अहम है कि जिससे भी आप इश्क करते हैं आप उसको पहले डिफाइन कर लें, उसको पहले डिसाइड कर लें कि इश्क में आप किस हद तक जा सकते हैं। इश्क मिटने का नाम है, दूसरों के लिए अपने आप को ख़त्म करने का नाम है, अपनी हस्ती को मिटा देने का नाम है, अपनी मैं को, अना को, तासुब को, ज़िद को ख़त्म कर देने का नाम है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहिए कि फना हो जाने का नाम है। आप ये फैसला कीजिए कि आप फना किसके लिए होना चाहते हैं। ऊपर वाले से इश्क करना चाहते हैं आप, ज़रूर कीजिए, लेकिन उसके लिए फिर फना होना पड़ेगा, अपनी हस्ती को भूलना पड़ेगा, अपने आप को नेस्तो नाबूद करना पड़ेगा, अपनी एक हर एक ख्वाहिश, अपनी हर एक अना को पसे पुष्ट डाल के किसी की ख्वाहिश को मद्देनजर रखना पड़ेगा। मुझे लगता है इश्क का ये दूसरा नाम है कि जब आप अपने आप को मिटाते हैं, दूसरे को तरजीह देते हैं, दूसरे को मद्देनजर रखते हैं, चाहे फिर वो इश्क किसी से भी क्यों ना हो। मान लीजिए आपको मुताले से, पढ़ने लिखने से, स्टडी से, पढ़ाई से मोहब्बत है, तो पढ़ाई क्या करती है, अपने आप को मिटा देने का नाम है ये कि आप रातों को जागे, आप दिन में भी पढ़े, आप शाम में भी पढ़े, आपने कभी कंप्यूटर पे जाके एक्सरसाइजेस की, कभी आपने किताब का सहारा लिया, कभी आपने ट्रेनिंग की, कभी आपने दोस्तों के साथ मिल के पढ़ा। सो इन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं उस इश्क में। दूसरी बड़ी वाज़े मिसाल है, बात बहुत तवील हो जाएगी, शम्मा और परवाने की। ठीक है, शम्मा अपने जगह पर कायम रहती है, मौजूद रहती है, अपने आप को मिटाती नहीं है, लेकिन परवाने को शम्मा से मोहब्बत होती है, इश्क होता है, वो उसके गिर तवाफ करता है और तवाफ करता करता गिर जाता है, अपनी जिंदगी को हार देता है, लेकिन इश्क को नहीं हारता है, अपनी जात को मिटा देता है, अपनी जिंदगी को ख़त्म कर देता है, लेकिन उसका इश्क कायम रहता है।
1: क्या बात है। और इसके बारे में अगर और भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग डिजिटल मीडिया, जिस कॉस्ट और डिजिटल मीडिया क्या है, इसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। और इन सब की जानकारी के लिए नंबर से फेक रहता है 416-303-3639, 416-303-3639।

0: तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके और डिजिटल मीडिया के नए कोर्स के स्टूडेंट ने इस संडे को, सैटरडे को भी जरूर गाया होगा, क्योंकि मैं संडे को थी इसलिए मैंने सुना कि पहले तो उन्होंने एक एंथम तैयार किया जो आमिर की शान में गाया,
1: ओ माय गॉड,
0: आपसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके कि दुनिया मुट्ठी में आ गई हमारी, है ना,
1: मुट्ठी में आ गई।
0: टू बी वेरी ऑनेस्ट आमिर, मैंने ये आई एम नॉट इन टू डिजिटल मीडिया, मतलब आई एक्सेप्ट कि मैं इसमें अभी काफ़ी पीछे हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी सीख साख के लिए ट्रेनिंग ली जाए, तो आई वेंट देयर ऑन संडे और अमेजिंग, पूरी क्लासरूम फुल थी और जो जिनको बिल्कुल बेसिक भी नहीं आता था वो भी एटलीस्ट उस दिन एक अच्छा मूविंग पोस्टर्स बना रहे थे और आई वॉज रियली रियली इम्प्रेस्ड। और ये नया बैच बड़ी सक्सेसफुली शुरू हो चुका है, एक हफ्ता पूरा हो चुका है।
1: तो डिजिटल मीडिया में आपने जब कदम रखा, यानी एक डिजिटलाइज्ड माहौल में आपने जब कदम रखा, तो आपने
0: अभी
1: क्या
0: अभी वो प्री कदम की,
1: अच्छा प्री कदम है
0: कदम रखना, तो आप उन्होंने रखा जो उस दिन अच्छा काम कर रहे थे।
1: अच्छा, नहीं मुझे लगा कि जब आपने डिजिटल मीडिया में कदम रखा, यानी उस क्लास में कदम रखा, तो आप अपने आप को भी यंग यंग सा महसूस करने लगे, 18-19 साल का, मुझे लगा ऐसे।
0: नहीं वो तो ऐसा था कि घर से मैं,
1: जब आपने सुना फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, तो आप बिल्कुल ऐसे, यू नो,
0: पिछले एक महीने से मैं 12 से 16 साल के बच्चों के बीच में हूँ, तो उसी फील माइंडसेट के साथ में आई थी, तो वो मेहनत में घर से करके आई थी।
1: अच्छा,
0: अब मैं आई एम यूज्ड टू डूइंग होमवर्क, राइट,
1: होमवर्क, ओके,
0: होमवर्क करके आई थी।
1: अच्छा,
0: तो आई वॉज ऑलरेडी फीलिंग यंग।
1: अच्छा, मुझे ये बात बताएं, आपने इतनी बड़ी कॉपी उठा रखी थी, उस पर लिखा भी कुछ नहीं, फिर आपने ट्रेनिंग, ये ऐसा क्यों किया?
0: नहीं, मैं क्या करती हूँ कि जो कॉपी होती है उसको वचन में, उसको हम काला कूटी कहते थे।
1: कॉलर कूटी,
0: काला कूटी, मतलब इसमें डिजाइन बना दी, पत्ती बना दी, बना दी, क्योंकि आपको ये भी लगे और बाकी स्टूडेंट्स को कि आई एम ऑल्सो,
1: हाँ कुछ कर रहे हैं आप भी।
0: वो मुझे पता था कि मैंने आपसे इनडायरेक्टली पूछा था कि आज आप क्या पढ़ाएंगे, आपने कहा कुछ पोस्टर्स बनवाऊंगा, तो कुछ पोस्टर्स मैं बना के ले गई थी।
1: अच्छा, आपने अपने हिसाब से अपनी ड्राइंग करके पोस्टर बनाया?
0: मैंने बगल वाले स्टूडेंट के सामने ऐसे सरका दिया था कि उसने कहा कि आमिर के सिखाने से पहले ये सीख गई पोस्टर बनाना। ये सारी चीजें बचपन में मैंने, आई टोल्ड यू आई वाज अ वेरी शरारती गर्ल।
1: मैंने सोचा कि आपको एक बार और मौका दिया जाए कि वॉज का लफ्ज इस्तेमाल करके, ताकि आप अपने फैसले पर कोई नजरेसानी कर सके।
0: जी एक्चुअली मेरे जो क्लासमेट्स हैं जो मेरे साथ ग्रेड 5-6 तक थे, अब वो दुनिया में कहीं कहीं हैं, कुछ काफ़ी सारे बैक होम ही हैं, कुछ दूसरी कंट्रीज में भी हैं, तो कभी उनसे मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, तो वो एक बात के लिए मुझे हमेशा थैंक यू बोलते हैं।
1: हाँ जी।
0: और मैं बहुत आराम से उनको टाइम देती हूँ मेरी तारीफ करने का, और कहती हूँ संडे के दिन
1: सब लोग तारीफ ही करते हैं।
0: जी, वो ये कहते हैं कि हम जो जिंदगी में स्ट्रगल करने का हौसला हमें आया है, लड़ाई करने का, स्ट्रगल करने का,
1: लड़ाई करने का,
0: जो अपने हक के लिए लड़ना,
1: अच्छा,
0: कि तुम्हारा दोस्त तुमने क्यों छीन लिया, इस टाइप के जो हक के लिए जो लड़ना होता है, वो हमने तुमसे सीखा। क्योंकि आई यूज्ड टू बिलीव कि किसी का अगर एक पैर में चोट है और फिर भी वो कहने के बाद भी काम किया जा रहा है, तो उसकी सिचुएशन को फिक्स करना चाहिए।
1: अच्छा,
0: तो
1: बिल्कुल,
0: दूसरी भी उस कंडीशन में ले आओ पैर कि वो इंसान आराम करे।
1: नहीं तो आप जब छोटी थी तो आप शरारती थी बहुत, तो लोगों को मतलब 2-4 लगा भी देती थी, लड़कों लुड़कों को इधर उधर।
0: हाँ, वो एक के मैंने सिर पे, आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगी ऐसे कीजिए, मैंने उसके सिर पे काफी पुशअप और घूंसे मार के उसका सिर पर,
1: ओह माय गॉड,
0: और उसके बाद मैंने कहा आज से तेरा नाम गोल्ड स्पॉट है। You won't believe, मैं इतनी शरारती थी।
1: नहीं तो वो लोग तो अब आपसे ताल्लुक भी नहीं रखना चाहते होंगे, इतना पीटा है आपने उनको बचपन में।
0: नहीं, वो आज के फॉर्म में देख के रखने लगे हैं कि इंसान बदलता है।
1: बदल के शायद बदल गई हो।
0: हाँ, कि जब
1: इस उम्मीद पे कि शायद बदल गई हो।
0: हाँ, जब आप इंसान बदल जाए तो उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए।
1: शिवानी कह रही हैं कि इन्होंने डिजिटल मीडिया क्लासेस को देखा है, वहां पर ये गई हैं, क्लासेस आर सक्सेसफुली गोइंग ऑन, इस दफा बड़ा अच्छा बैच है।
0: और आपने बताया था कि एक I saw a gentleman there, वो आए और जब वो क्लास के बाद गए, it was a such a nice feeling to see कि उन्होंने जाते जाते कहा कि जो मेरी वाइफ हैं वो भी सीखना चाहती हैं, तो मैं अगले हफ्ते से मैं उनको भी लेकर आ रहा हूँ. उन्होंने वहीं पे अपनी वाइफ को भी एनरोल कराया. तो ये चीज़ बिल्कुल पता भी नहीं था. उन्होंने क्लास अटेंड की, जब मैंने उनको बोला कि एक दिन में कैसे आपने आमिर ये सब पोस्टर बनाना सिखा दिया, और वो कस्टमाइज हर एक इंसान अपने हिसाब से बना रहा था. किसी को कुकिंग का था, उसने कुकिंग का प्रोमो पोस्टर बनाया.
1: जी, बिल्कुल, बिल्कुल.
0: तो आपने कहा ये तो कुछ भी नहीं, आगे जाके जब ये वेव्स पे काम करेंगे, टिकटॉक पे रील्स बनाएंगे, मूवीज बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म सीखेंगे.
1: बिल्कुल,
0: इट्स लॉन्ग वे टू,
1: इट इज जस्ट अ स्टार्ट. जिसमें हम पहले पोस्टर वगैरह बनाना सिखाते हैं, आर्ट वर्क सिखाते हैं, फॉन्ट्स, कलर्स, बैकग्राउंड, ब्रांडिंग, सेल्स, मार्केटिंग, इनके बेसिक्स बता देते हैं. और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑडियो प्रोडक्शन की तरफ लोग जाते हैं, उसके बाद फिर वीडियो प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, फिर वीडियो एडिटिंग की तरफ जाते हैं. इट इज अ प्रॉपर फन, आई एम टेलिंग यू. एक काम हमने और किया है कि अगर कहीं आठ स्टूडेंट्स का बैच है, कहीं भी आप स्कारबरो में हैं, मार्कम में हैं, एजेक्स में, पिकरिंग में, यहाँ ब्रैम्पटन, मिसिसागा, कहीं भी हैं आप, और आप आठ लोग हैं टोटल, तो हमारी टीम आपके प्रेमिसेस पे आके ये कोर्स डिलीवर करती है.
0: अमेजिंग. ये मैं कहने वाली थी कि अगर आप अगर हमें रियल्टर्स सुन रहे हैं या फिर ऐसे प्रोफेशनल सुन रहे हैं जो एक ऑफिस में काम करते हैं और एक ग्रुप के साथ काम करते हैं, तो उनके लिए जैसे आमिर ने बताया कि हम ऑफिस में जाके आमिर अपनी टीम के साथ वहां पे ट्रेन कर सकते हैं लोगों को एज अ ग्रुप ऑफ 8 to 10 पीपल, जिससे कि एक ही बैच में सारा का सारा जो ऑफिस है वो ट्रेन हो जाए
1: और ये वर्किंग डेज में होगा. यानी हमारी जो टाइमिंग है इसके लिए वो सुबह 12 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक होगी. 12 से 4 वी विल कम टू योर प्रेमिसेस, योर ऑफिस, योर बोर्ड रूम, यहाँ पे 8 से 10 लोग होंगे, वहीं पे हम सारी की सारी ट्रेनिंग आपको करवा देंगे आपके स्टाफ को. उससे फायदा ये होगा कि आपकी ट्रेवलिंग बच जाएगी, हम वी विल ट्रेवल टू योर प्लेस, आपका टाइम बच जाएगा, आप अपने दफ्तर में अपने हिसाब से ट्रेन होंगे. और ये हैंड्स ऑन है, क्योंकि अगला बैच अभी हमने अनाउंस नहीं किया है कि इससे अगला बैच कौन सी तारीख को हम शुरू करने वाले हैं. तब तक के लिए ये एक प्रोविजनल अरेंजमेंट है कि हम वी विल कम टू योर प्लेस एंड डिलीवर द कोर्स.
0: अमेजिंग. और उसके लिए नंबर सिर्फ एक है, 416-303-3639. आप हमसे बात कर सकते हैं. और कैसे आप बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ये कर सकते हैं, आप डे चूज कर सकते हैं, टाइम चूज कर सकते हैं, जिसमें आपके सारे कोलीग्स, सारे लोग जिनको सीखना है वो अवेलेबल हों उस ऑफिस में. और एट अ स्ट्रेच हम 5 घंटे तक या एक दिन तक
1: जी बिल्कुल कोर्स में 5 hours each day
0: प्रोफेशनल बना सकते हैं. 416-303-3639.
1: 25 घंटे बनते हैं शिवानी ये हफ्ते के. 5 दिन 1 घंटा एवरी डे, तो ये 25 घंटे बने, तो 1 घंटे का, 1 महीने का कोर्स होगा ये तकरीबन, कमोबेश
0: 1 महीने का कोर्स.
1: 1 महीने का कोर्स होगा, यानी 4 weeks हम लगाएंगे, तकरीबन 4 to 5 घंटे ईच डे होंगे. एंड विल बी डन ऑन योर लोकेशन. So course on location, it's not live on location, it's course on location.
0: और right? एक महीने में जब आप professional बन जाएंगे तो वो जो feel आप में आएगी ना, वो भी जरूर हमें बताइएगा इसी number पे, 416-303-3639. Over to the song.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
4: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
3: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
5: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
6: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
7: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
6: क्या वो मदद करेंगे?
7: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
8: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
7: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
8: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
9: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001, 9058191001, license number 12374.
10: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: 416-303-3639. आमिर, एक वैसे तो आजकल बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक बिन बुलाए मेहमान की तरह हर किसी की बॉडी में घर कर लेती हैं।
1: बिल्कुल सही बात।
0: तो वन फाइन मॉर्निंग हम उठते हैं और हमें लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। एक दिन पहले बिल्कुल हम इतने अच्छे होते हैं कि नाच गाने और पार्टीज में भी आते हैं, अगले दिन सुबह लगता है कि अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई। हम अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो हम साउथ एशियंस में तो ये बड़ी एक कॉमन प्रॉब्लम है, और थोड़े टाइम तक तो हम, ये तो सबको होती है, क्या कि हम बड़ी कॉन्फिडेंटली उसको हैंडल करते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम अकेले नहीं है, वी आर नॉट अलोन। ये एक जो लाइन है ना, वो अच्छी अच्छी बीमारियां जो है इंसान झेल जाता है।
1: जी, सही।
0: जब हम हॉस्पिटल में भी किसी को गॉड फॉरबिड्स कभी कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम डायग्नोस होती है, तो डॉक्टर्स भी फैमिली मेंबर्स भी जब उसको कंसोल करते हैं, उसको इस हालत में पेशेंट को लाते हैं कि वो ये सिचुएशन फेस करे, तो बाकी और पॉजिटिव चीज़ें बोलने के साथ साथ ये सबसे पहले बोलते हैं डॉक्टर्स कि यू आर नॉट अलोन। मेरे पास तो 4 पेशेंट्स आए थे।
1: कभी कभी तो डॉक्टर ये भी बोलता है यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू, मुझे भी यही मसला है।
0: हाँ। और डॉक्टर्स के बारे में कहते हैं कि मतलब अगर कोई डॉक्टर सुन रहे हैं तो मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, लेकिन ये कहते हैं कि बिकॉज दे सी सो मच ड्यूरिंग द डे कि कई चीजों में वो बहुत इजी ले लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जितना वो एडवाइस करते हैं दूसरों को कम खाइए, उतना अगर उनको आप देख लेना तो वो बिल्कुल चलते फिरते अनहेल्दी खाएंगे कई, क्योंकि वो थोड़ी टाइम के लिए उससे डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं
1: और दूसरा ये है कि बहुत से डॉक्टर्स आपने भी देखा होगा जब वो पेशेंट्स को देख रहे होते हैं तो हर दूसरे पेशेंट को देखने के बाद उन्हें यह लगता है कि ये बीमारी तो मुझमें भी है।
0: हाँ।
1: आंखें ठीक से काम नहीं करती, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। डॉक्टर सोचता है ये तो मुझे भी है, लगता है कभी कभी मुझे भी धुंधला दिखाई देता है। सर में दर्द हल्का हल्का सा तो मुझे भी रहता है।
0: हाँ।
1: ये टांगों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, सुबह सुबह उठता हूँ, ये तो मुझे भी रहता है। सो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स जो हैं उन्हें भी किसी डॉक्टर की कभी ना कभी जरूरत रहती
0: होती है। और जब पेशेंट कहता है ना कि ये आता जाता सा रहता है, कभी होता है, तो डॉक्टर तो बहुत रिलेट करते हैं डॉक्टर्स कि मुझे भी दोपहर के टाइम हो जाता है, दिन के टाइम नहीं होता है ना। और पेशेंट्स के कई बार इतनी कन्विंसिंग बात करने का तरीका होता है कि वो डॉक्टर्स को हिला देते हैं।
1: हाँ, और डॉक्टर्स भी बेचारे कितने मजबूर लोग होते हैं ना, कह भी नहीं सकते कि ये मसला मुझे भी है, क्योंकि सामने वाला बोलेगा डॉक्टर साहब आप तो खुद डॉक्टर हैं, आप खुद ही बीमार हो गए, ऐसे कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बेचारे डॉक्टर्स हैं ये भी बीमार होते हैं, इन्हें भी मसाइल हो सकते हैं, इन्हें भी परेशानियां हो सकती हैं, इनके भी खुदा ना खास्ता ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो इसलिए ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, आम से इंसान है, चलते फिरते हुए, ये कोई ऊपर से उतरी हुई मखलूक नहीं है कि ये बीमार नहीं होंगे, ये भी बीमार हो सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: चाहे पीएचडी डॉक्टर हो चाहे मेडिकल का डॉक्टर।
0: और वो भी कभी बिल्कुल एक लेमैन वाली और फुलिशनेस वाली बातें कर सकता है, राइट?
1: कर सकता है।
0: हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है।
1: नहीं, बात यह है कि फुलिशनेस वाली और लेमैन वाली बातें हर किसी को करनी चाहिए।
0: हाँ।
1: उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर जो एक छोटा सा बच्चा है, एक शरारती बच्चा है, वो जो एक एलिमेंट है वो खत्म नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में ऑलरेडी इतने मसाइल हैं, इतने बिल्स हैं, इतनी डेडलाइंस हैं, मैं आपको बता दूं, एक सर्वे के मुताबिक पिछले दिनों ही मैं ये सर्वे पढ़ा था, 69% कैनेडियंस आर सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी एंड रेस्टलेसनेस।
0: बिल्कुल। अब देखिए, दिन में अगर हम एक बार ही किसी बच्चे के अवतार में आ जाएं, बच्चे को अपने अंदर डाल लें,
1: अवतार यानी रूप,
0: रूप,
1: हाँ जी,
0: मतलब उस फॉर्म में आ जाएं, देखिए एक छोटा बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स बैठ के टीवी देख रहे हैं, वो साथ में खेल रहा है, पेरेंट्स के सामने ही उसने कुछ गिराया, फिर भी पेरेंट्स से कह रहे हैं कि मैंने नहीं गिराया, और पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुमने थोड़ी गिराया, ये अभी तुम्हारे सामने तुम्हारा फ्रेंड आके गिरा के गया है। और उसके बाद वो बच्चा मान भी रहा है और बहुत प्राउड फील कर रहा है कि मैंने पेरेंट्स को बना दिया।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: यही चीजें अगर इंसान में आ जाए ना, तो बड़ी इनोसेंस आएगी और एक हम ज्यादा मुस्कुराएंगे।
1: मुझे लगता है कि इन मुल्कों में आके हम जिंदगी को जीना भूल गए हैं। हम जिंदगी गुजार रहे हैं, कभी ये बिल दिया तो दूसरा आ गया, दूसरा दिया तो तीसरा आ गया, तीसरा दिया तो चौथा आ गया। लोग परेशान हैं भाई, इस मुल्क में लोग बड़े परेशान हैं शिवानी।
0: और चौथे के बाद पांचवा आ गया तो ऑफिस में फोन किया, आज जा नहीं पाएंगे, स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट है हमारा। उसको फिक्स भी करना है, उसके तरीके भी बहुत हैं।
1: तो इसलिए मुझे ये लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड मैं यूरोप में भी रहा हूँ 17-18 साल और यहाँ पे भी मुझे कुछ 100 साल हो गए रहते हुए, क्योंकि हुए तो मुझे 6-7 साल ही है, लेकिन इसी में मुझे यूं लग रहा है कि जैसे 100 साल हो गए। जब मैं आया तो साथ में कोविड भी लेके आया था यहाँ। सो उसके बाद फिर ये हालात इन मुल्कों के वेस्टर्न वर्ल्ड के संभल ही नहीं पाए हैं। और लोग जो यहाँ पे कनाडा के बारे में मैंने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सुनी कि लोग बाहर अपनी कीमती चीजें रख के बगैर दरवाजे लॉक किए सो जाते थे, कोई फिक्र कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई कंसर्न नहीं था लोगों को। लेकिन आज के हालात में लोग दरवाजे बंद करके भी सोएं, गाड़ियां लॉक करके भी सोएं, सब हिफाजती इकदाम करके भी सोएं, तब भी महफूज नहीं है,
0: नहीं है,
1: विच इज अ ट्रेजेडी ऑफ आवर एरा। ये बहुत बड़ा अलमिया है।
0: क्या बात?
1: लोगों की गाड़ियां चोरी हो रही हैं, लोगों के बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के साइकिल चोरी हो रहे हैं, लोगों के दिल चोरी हो रहे हैं।
0: दिल तो ऐसे उठा के ले जाते हैं।
1: सो बहुत कुछ चोरी हो रहा है।
0: आप अपना हार्ट अगर ज्यादा दुखी हो किसी से या ज्यादा लड़ाई हो गई हो, ब्रेकअप हो गया हो, तो प्लीज ट्रैश कैन में या
1: ट्रैश कैन
0: रिसाइकलिंग बिन में ना डालें, वहां से भी लोग उठा के ले जाएंगे ग्लव्स पहन के। तो आमिर, जैसे कोलेस्ट्रॉल हम बात कर रहे थे कि बड़ी एक आम सी प्रॉब्लम है, वैसे तो इसका ट्रीटमेंट आराम से आप डॉक्टर के पास जाइए, एक मेडिकेशन लीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आएगा। और ये जो हम बताते हैं ये कोई भी आपके मेडिकल जो आपका जो ट्रीटमेंट है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये इन एडिशन टू आप अपनी मेडिकेशंस ले सकते हैं। बहुत अच्छा एक आर्टिकल है जो किसी ने लिखा है, एक आयुर्वेदिक ड्रिंक है जो आप घर पे बना सकते हैं। यू नो कोलेस्ट्रॉल हमारी जो नसें होती हैं उसमें जब प्लाक अक्यूमुलेट हो जाता है तो हमारे रास्ते को ब्लॉक करता है और कई बार ब्लड फ्लो में ये रुकावट पैदा करता है, और जो ब्लड की जो सप्लाई है उसके लिए हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। और एक्स्ट्रा प्रेशर डालने से हमारे हार्ट रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यही वजह है कि कोलेस्ट्रॉल की इन्वेस्टिगेशन से, ट्रीटमेंट से, ब्लड टेस्ट से ये पता चलता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है।
1: जी बिल्कुल।
0: और इसके लिए खास जो ड्रिंक है वो हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो एकदम खत्म कर देता है ये। और आर्टरीज में जो ब्लॉकेज है वो भी खत्म हो जाती है। सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स की हमें जरूरत होती है, उसमें 1 कप गार्लिक जूस, गार्लिक बहुत अच्छा माना जाता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज,
1: लहसुन जिसे कहते हैं,
0: जी लहसुन, उसका 1 कप आपको जूस चाहिए, जिंजर का 1 कप जूस चाहिए, एप्पल जो विनेगर है उसका 1 कप चाहिए आपको, 1 कप लेमन जूस चाहिए, 3 कप्स ऑफ हनी चाहिए।
1: ओह, ये तो काफी कुछ चाहिए।
0: जी, ये 5 चीजें हैं, 1 कप ऑफ ईच गार्लिक जिंजर एप्पल विनेगर और लेमन जूस, और ये 4 कप हो गए, 3 कप आपको हनी चाहिए।
1: अच्छा, हनी भी चाहिए।
0: हाँ, इस ड्रिंक को बनाने के लिए आप हनी को छोड़ के बाकी चारों को एक पैन में डालिए और लो फ्लेम पर आप जब तक 1/4 वो नहीं रह जाए तब तक आप उसको बॉईल कीजिए, उसको ठंडा कीजिए और उसमें हनी मिला के एक जार में आप रख दीजिए और ये काफ़ी टाइम तक रहेगा। और एवरी डे आप उसको एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में थोड़ा सा पीजिए, 2-3 स्पून्स, एंड इट विल डू वंडर्स थ्रू आउट द डे।
1: बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा बताया आपने। लेकिन इसमें अगर हनी जो शहद वाला हनी है ना हो और घर में जो हमारी हनी है उसको बुला के कोई काम चलाए,
0: नहीं फिर उस केस में कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा,
1: शुगर लेवल बढ़ जाएगा,
0: उसके लिए भी मैं ट्रीटमेंट लेकर आऊंगी,
1: मर्चों का लेवल बढ़ेगा। तो वो ये बहुत अच्छा बताया आपने, ये रगों में।
0: लेकिन ये फिर से मैं बता दूं, ये हनी जो है ये हनी मतलब हनी है,
1: हनी
0: जो आप लेकर आएंगे और ऑर्गेनिक
1: हनी जो मनी से मिलता है बाहर वॉलमार्ट वगैरह पे। अच्छा, वो वाला हनी,
0: वो दूसरी वाली आप हनी की जो आमिर बात कर रहे हैं, दैट इज टू प्रेशियस एंड टू एक्सपेंसिव, हर एक के बूते की बात नहीं। ये हम आसान सा नुस्खा बताते हैं आमिर,
1: चूंकि ये रगों में दौड़ते हुए खून के लिए है ये सारा नुस्खा, कि ये अच्छे तरीके से दौड़ता रहे,
0: गुड कोलेस्ट्रॉल,
1: गुड कोलेस्ट्रॉल है। अगर उसमें प्लेग आ जाए, जैसे आप बता रही थी जंग आलूद रगे, उसमें जंग आ जाए, जैसे कुछ चीज अटक जाए, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है ताकि आप अपने वालिद साहब से, अपने फादर साहब से कह सकें कि इन रगों में आपका खून दौड़ रहा है, वरना ये दौड़ने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
0: अच्छा खून होना चाहिए, नहीं तो दूसरे मामला बिगड़ जाएंगे।
1: आप वरना ये नहीं कह सकेंगे कि खून दौड़ रहा है रगों में, आप शायद ये कह सकेंगे कि आपका खून इन रगों में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है
0: या अटक अटक
1: अटक अटक के चल रहा है। अटक अटक के चल रहा है, फिर वाले साहब और डांटेंगे आपको कि ये क्या हशर किया मेरे खून का तुमने, इसके बहाव का भी ठीक से इंतजाम नहीं किया क्या?
0: हम इस उम्र में भी दौड़ रहे हैं।
1: तो इसलिए अपनी रगों में खून को दौड़ता हुआ रखिए, शिवानी की बातें ध्यान से सुना कीजिए, ये बड़े अच्छे अच्छे नुस्खे तलाश करके लाती हैं। मेरा ख्याल है पुराने हकीमों से इनका कोई ताल्लुक है, उनसे फोन कर करके ये नुस्खे लेती रहती है।
0: हमारे आयुर्वेद और हर्ब्स गुरु जी हैं जो हमारे साथ आते हैं, तो वो उनके साथ में कॉन्स्टेंट टच में रहती हूँ, तो वो कहते हैं कि देखिए
1: प्रॉफिट शेयरिंग,
0: आपने गुरुजी को ठीक से समझा नहीं, आपको कुछ मीटिंग्स की और जरूरत है उनके साथ।
1: स्टे ट्यून्ड, दिस इज लवी डवी शो।

0: सब बात की जाए आजकल के हालात की, तो ये बात याद रखिए कि वक्त पर किए गए फैसले बड़े मजबूत और देरपा और अच्छे होते हैं। एक बात ध्यान में रखनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फैसला देर से या जल्दी करना एक अलग बात है, उसको एक तरफ रख दीजिए, फैसला ना कर पाना एक बहुत बड़ी गलती है। फैसला ना करने की नेग्लिजेंस या नालायकी, इसको आप अपने आप को माफ नहीं कर सकते। इसलिए यह फैसला आज कीजिए। एक बड़ा ही शानदार प्रोजेक्ट आया है और यहां ब्रैम्पटन में आया है। ईजीएस्ट डिपॉजिट स्ट्रक्चर है, ये इजी नहीं है, मैंने ईजीएस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया है। डिपॉजिट स्ट्रक्चर की बात करें, लोकेशन तमाम तर एमिनिटीज में घिरी हुई, पार्क्स की बात करें, स्कूल्स की बात करें, वर्शिप प्लेसेस की बात करें, हाईवे कनेक्शंस की बात करें, स्पॉट ऑन आपको ऐसी लोकेशन पे ऐसा घर इस डिपॉजिट स्ट्रक्चर में आजकल के दिन के अंदर मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। और ये प्रोजेक्ट आपको दिला रही हैं निकी गांधी जी। वेलकम करते हैं निकी जी आपको।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आमिर जी फॉर पुटिंग मी ऑन एयर, एंड सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी ट्यूजडे टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ, हम आज बात करने वाले ब्रैम्पटन के बहुत ही एक्साइटिंग प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में, रोलिंग वुड्स टाउन। जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 600 में विथ अर्ली 2028 क्लोजिंग। इसका मतलब ये है कि बायर को एक्सटेंडेड डिपॉजिट स्ट्रक्चर और प्लानिंग की फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। मतलब आप एक कंफर्टेबल और स्मार्ट वे में इन्वेस्ट करने का आपको मौका मिल रहा है। और सबसे एक्साइटिंग बात ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है ना वो आ रहा है मेविस एंड रेलोसन बुलेवर्ड के प्राइम लोकेशन पे। इसका मतलब ब्रैम्पटन और मिसिसागा की बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक आ रहा है। अगर आपको ब्रैम्पटन मिसिसागा की बॉर्डर पे रहना है सिर्फ और 600,000 में आपको टाउन हाउसेस चाहिए, सो एक ही नाम है, रोलिंग वुड्स टाउन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन किए हुए है जो आज के मार्केट में बहुत ज्यादा हाई डिमांड पर है। और साथ ही में जैसे हम लोग कहते हैं राइट कि रियल एस्टेट में लोकेशन लोकेशन लोकेशन, इसकी लोकेशन बिल्कुल ये लाइन ना एक्चुअली इसी पे फिट बैठती है। लोकेशन कुछ इस तरह है, मेजर हाईवेज जैसे कि 401, 407, 410, स्कूल हो गई, शॉपिंग हो गई, ट्रांजिट, सारी डेली कम्युनिटीज बहुत ही नजदीक है। शेरडन कॉलेज से सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर है, हार्टलैंड टाउन सेंटर, शॉपर्स वर्ल्ड, एवरीथिंग, कॉस्को, वॉलमार्ट, रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरीज, सब कुछ बहुत ही कन्वीनियंटली लोकेटेड पे है। इसका मतलब ये है कि अगर आप फैमिलीज हो या फिर आप इन्वेस्टर हो, दोनों के लिए ये बहुत ही स्ट्रांग लोकेशन बनती है। एक और खास बात है इस लोकेशन के बारे में, ये जो पॉकेट है ना इसमें 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में ना काफी लंबे टाइम से कोई भी प्री कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है। बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं ब्रैम्पटन में, मिसिसागा में, पर वो ब्रैम्पटन में भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो कई नॉर्थ साइड पर है। इस पर्टिकुलर पॉकेट की हम बात करें ना तो ये बहुत टाइम के बाद अपॉर्चुनिटी आई है। सो गाइस डेफिनेटली डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 1300 से 1900 स्क्वायर फिटेज तक के 3 से लेकर 5 बेडरूम तक के ऑप्शन अवेलेबल है। इसका मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, आप इन्वेस्टर हो या फिर आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रहना चाहते हो, यहाँ पे हर टाइप के बायर के लिए कुछ ना कुछ सुटेबल ऑप्शन मिल ही जाना है आपने आपको। इसके साथ साथ बिल्डर्स जो है ना बहुत सारे लॉन्च इंसेंटिव जो है वो भी लॉन्च कर रहे हैं। और हमारा जो ब्रोकर लॉन्च जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है वो है जून 1 को। सो जून 1 को ना हमारा ब्रोकर लॉन्च इवेंट भी है। सो मैं सभी अपने रियल्टर्स भाइयों बहनों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इस ब्रोकर लॉन्च की भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको ये लॉन्च अटेंड करना है तो आप मुझे राइट अवे कॉल कर दीजिए एट 416-456-3815। इट्स ब्रोकर्स प्रोटेक्टेड। मैं बिल्डर की डायरेक्टली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ। सो अगर रियल्टर्स हो, आप डायरेक्टली क्लाइंट्स भी हो, अगर आपको प्राइजेस, फ्लोर प्लान, इंसेंटिव की VIP एक्सेस चाहिए तो आप मुझे अभी के अभी कॉल कर सकते हो। एक और बात है, आजकल ना प्री कंस्ट्रक्शन के घरों पे ऑन्ट्रियो गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे इंसेंटिव दे रहे हैं. उन्होंने जीएसटी एचएसटी का रिबेट दे रहा है, राइट, जिसमें एलिजिबल बायर्स जो है वो अप 230,000 तक का बेनिफिट आप पा सकते हो, राइट. इसलिए बायर्स के लिए ना एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन रही है कि आपको ना कि सिर्फ बिल्डर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट अच्छी अच्छी लोकेशन पर दे रहे हैं, पर गवर्नमेंट भी आपको प्री कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में सपोर्ट कर रहे हैं. सो मेक श्योर इसका फायदा जरूर उठा. सी अभी ना मार्केट धीरे धीरे ओपन अप होना शुरू हो गई है, इंटरेस्ट रेट भी अब काफी स्टेबलाइज हो रहा है और बायर्स का जो कॉन्फिडेंस है ना अब वो भी वापस आने लगा है. सो जो लोग भी वेट कर रहे थे कि चलो नहीं जब कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी आएगी बढ़िया प्रोजेक्ट आएगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे, तो यही एक प्रोजेक्ट है रोलिंग वुड्स टाउन, जिसमें लोकेशन भी प्राइम है, प्राइसिंग भी बहुत बढ़िया है, इंसेंटिव भी बहुत बढ़िया मिल रहे हैं. सो ये एक रोलिंग वुड टाउन्स एक डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी है. सो सभी मेरे लिसनर्स को, सभी मेरे भाइयों बहनों को, रियल्टर्स भाइयों बहनों को, अगर आप लोगों को ज्यादा जानकारी चाहिए प्राइसिंग के लिए और इवन अगर ब्रोकर्स को लॉन्च में अटेंड करना है, आप मुझे राइट अवे कॉल कर सकते हैं एट 416-456-3815. आई रिपीट, इट्स 416-456-3815.
0: It's Nikki Gandhi. Back to you, Amir ji. कुछ मौके जब निकल जाते हैं तो उसके बाद फिर इंसान पछताता रहता है, परेशान होता रहता है और सोचता है कि काश उस मौके से फायदा उठा लेते. यहां आज भी अगर आप अच्छे तरीके से अच्छी जगह पे अच्छे प्रोजेक्ट में अच्छे रियल स्टेट प्रोफेशनल के साथ मिलके इन्वेस्टमेंट करें तो कोई वजह नहीं है कि साल डेढ़ साल बाद उसी पैसे से फर्दर पैसा भी बना सकते हैं, घर भी बना सकते हैं, अच्छी लोकेशन पे बना सकते हैं और जिंदगी में राहत आ सकती है. तो इसलिए बात कीजिए निक्की गांधी से. ये प्रोजेक्ट जाने ना पाए, सस्ता भी है, इजी डिपॉजिट स्ट्रक्चर है, अमेनिटीज के बिल्कुल करीब है, आज ले लेंगे. 2028 में अगर इसकी क्लोजिंग होती है और उसके बाद फिर हम इसको बेच भी देते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है. ये नंबर है 416-456-3815. नंबर दोबारा दे रहे हैं आपको, 416-456-3815. निकी जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए.
1: बहुत शुक्रिया.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट्स से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
3: लवी शो पर आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। आमिर, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स के बैचेस टाइम टाइम पे आप शुरू करते हैं
4: जी।
3: चार हफ्ते का ये कोर्स होता है
4: जी।
3: और हर हफ्ते में दो दिन बड़ी कन्वीनियंटली सैटरडे और संडे हम ये क्लासेस रखते हैं, पांच घंटे 1 बजे से 6 बजे तक, जिससे कि कन्वीनियंटली हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं। और इतने सैकड़ों लोग, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रोफेशनल बन चुके हैं बड़े ही एक महीने में, जो जीरो नॉलेज रखते थे वो 100% नॉलेज के साथ अपना बिजनेस खुद प्रमोट कर रहे हैं।
4: बिल्कुल,
3: ये तो बात थी कि जो स्टूडेंट्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तबके के लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, हाउस वाइफ्स आती हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं। यहाँ हम आज बात कर रहे हैं उन ऑफिसेस की, उन कंपनीज की, जो अपने एम्प्लॉयज को डिजिटल मीडिया में ट्रेन करना चाहते हैं।
4: बिल्कुल ऐसा ही।
3: और ये पूरा ग्रुप होता है जो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठता है और उसको उनको ट्रेन किया जाता है, जिससे कि वो अपना कॉन्सेप्ट और जो कंपनी का कॉन्सेप्ट है जो उनको प्रमोट करना है वो अपने तरीके से और पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ कर सकें। तो आमिर, कैसे हेल्प करता है इसमें डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स?
4: बिल्कुल जी, आपको बता दें शिवानी कि हम ऑन लोकेशन ट्रेन करते हैं लोगों को। एक तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन का कोर्स वो है जो वीकेंड ओनली है, सैटरडे संडे है, जिसको हम चला रहे हैं। कोर्स इज रनिंग क्वाइट सक्सेसफुली। और दूसरा वो कोर्स है जो हम ऑन लोकेशन देते हैं।
3: अच्छा।
4: मंडे टू फ्राइडे कोई से भी दो दिन रख लेते हैं,
3: करेक्ट,
4: दोनों अतराफ की बाहमी रजामंदी के साथ। यानी जिनको हमने ट्रेन करना है वो दे देंगे दो दिन और हम देखेंगे हमारे पास वो दिन हैं कि नहीं। दो उसके बाद तय पा जाएगा कि ये दो दिन ट्रेनिंग के होंगे। हम उनकी लोकेशन पे जाएंगे, शर्त सिर्फ ये है कि 8 से 10 लोग होने चाहिए।
3: अच्छा।
4: उन्हीं के कॉन्फ्रेंस रूम में, उन्हीं के बोर्ड रूम में 8 से 10 चेयर्स लगा के वहीं पे हम एक महीने के अंदर उनके स्टाफ को ट्रेन करेंगे।
3: अच्छा।
4: बजाय इसके कि एक ब्रोकरेज किसी रेडियो, किसी टेलीविजन, किसी डिजिटल मीडिया के प्रोफेशनल को कॉन्ट्रैक्ट दे, हम आपके पास आते हैं, हम आपके सारे स्टाफ को ट्रेन कर देंगे। आपको सस्ता भी पड़ेगा, आपका टाइम भी बचेगा, आप कन्वीनियंटली अपने ऑफिस में वो ट्रेनिंग ले लेंगे। इसमें मार्केटिंग भी है, कन्वेंशनल मार्केटिंग भी है, मॉडर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी है, कन्वेंशनल मीडिया भी है, मॉडर्न मीडिया भी है। और आपको वो स्किल्स सिखाए जाते हैं कि आप रियल स्टेट में हैं तो अपने वर्चुअल टूर्स हुए, रील्स हुई, घरों की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज हुई, आपने कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है वीडियो के अंदर, वो कैसे बनानी है फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, पोस्टर कैसे बनाना है, आर्टवर्क कैसे बनाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे उसको इनकॉर्पोरेट करके आपने फॉलोइंग या सब्सक्रिप्शन कैसे बढ़ानी है, और सबसे बढ़कर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हाइप कैसे क्रिएट करनी है, स्ट्रेटजी क्या बनानी है, प्लान क्या बनाना है, ये सब बताया जाएगा। आप ऑन लोकेशन हमारा ट्रेनिंग सेशन बुक कीजिए, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एक ऐसा स्किल सीखिए जो आपको हमेशा फायदा पहुंचाएगा। नंबर ये मिलाएंगे आप 303-3639। पूरे जीटीए में आप कहीं भी हैं, 8 से 10 लोगों का ग्रुप है, हम आपके पास आएंगे हफ्ते में 2 दिन, आपको ट्रेन करेंगे। मंडे टू फ्राइडे 12 से 5 के बीच की टाइमिंग होगी
3: जी।
4: नंबर अगेन 416-303-3639।
3: नंबर एक बार फिर से 416-303-3639। इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को बुक कर सकते हैं आप इस कोर्स के लिए। स्टे ट्यून्ड।
2: लवी डवी सॉन्ग ऑफ द डे इज ब्रॉट टू यू बाय रूहानी कॉलेज। आंखों में बसा है डॉक्टर बनने का सपना या सोच रहे हैं मसाज थेरेपिस्ट का शानदार करियर हो अपना, तो बस आपको है रूहानी कॉलेज ही चुनना। बेहतरीन पढ़ाई से शानदार कमाई वाले करियर के सफर में आपका हम सफर, रूहानी कॉलेज। रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं। 905-731-2555, 905-731-2555, रूहानी कॉलेज।

Tie your business on CMR at 11. Reach the South Asian community.

0: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
1: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
0: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: कैश पॉइंट, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैश पॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैश पॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवॉन्टेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैश पॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000।

0: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन, तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर इट डिजर्व्स।
1: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट। Asians is the best.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं। और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील, कॉल 9059461000 फॉर मिडलैंड एंड सील्स एंड 4167571000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट mymechanicauto.ca।
1: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.

0: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
1: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
0: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट। Asians is the best.
3: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: Beach.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर. It deserves.
2: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम provide करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.

0: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर में स्पेशलाइज करते हैं। और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील, कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सील्स एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट mymechanicauto.ca।
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR FM 101.3. Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, jahan news, views, sports, entertainment ki khabre hongi bilkul unlimited. Entertainment to bahut hai, lekin yahan par milega aapko bilkul unlimited. News aur views to har jagah milenge, lekin yahan par milega bilkul unlimited.
2: Yahan bhi hoga, wahan bhi hoga, ab to sare jahan mein hoga kya? Mera hi jalwa.
1: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
3: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
1: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम.
4: और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई.
1: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज, व्यू, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती है बिल्कुल अनलिमिटेड। स्टूडियो का नंबर 4165930055। और बहुत ही प्यारे से गीत से हमने दिन की शुरुआत की है, एंड इट्स फ्रॉम द शाहरुख खान फिल्म माई नेम इज खान। 12:15 हेडलाइंस। बाहर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी, एंड टेम्परेचर्स विल बी अराउंड 28-29 फॉर द डे, एंड ट्री पोलिंग डिक्रीजिंग टुमारो। और सनसेट होगा 8:47 PM, 8:47 पर होगा सनसेट। एंड टुडेज टेम्परेचर्स, मिनिमम टेम्परेचर्स एट नाइट विल प्रॉबली बी एट अबाउट 17-18, टुमारो 25 and 12, थर्सडे 20 and 10, but we are looking at some decent weather for the next few days actually. But filhal ye jo garmi hai ye to abhi shuruaat hai, abhi aur garam temperatures hame dekhne ko milenge for the next 3 months at least, June, July, August. And 4165930055 studio ka number hai jis par aap call kar sakte hain, sponsors ke messages, aapki song request, we will play them one after another. And I think worldwide Bakra Eid jo hai wo kal celebrate ki ja rahi hai, if I'm not wrong, and if somebody has some different information, aap 4165930055 pe call karke bhi hame bata sakte hain. Par mere hisab se I think Eid is tomorrow, and it's being celebrated worldwide tomorrow as well, chahe wo India Pakistan ki hum baat kare. And but aksar in त्योहारों को लेकर आजकल एक ऐसा होता है कि जहाँ पर कोई आधा एक दिन पहले सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी दुनिया के कोने में, एंड देन समबडी सेलिब्रेटिंग इट, बट इट ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक अ 2-3 डे ऑफ सेलिब्रेशंस, व्हिच इज़ आल्सो अनदर गुड थिंग फॉर एवरीवन। विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग 905-206-1008 हर सैटरडे आफ्टरनून 12:30 to 3:30 फ्री सेमिनार होता है, आप अपना सीट ज़रूर रिजर्व करवा लें। प्लीज़ डोंट वॉक इन। 905-206-1008, एंड द सेगमेंट इज़ आल्सो ब्रॉट टू यू बाय ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से सुल्तान जी। सुल्तान जी बड़ी अमेजिंग डील्स ईद के मौके पर ऑफर कर रहे हैं, टीवी, अप्लायंस, लॉन्ड्री में जो भी आपने लेना है, याद रखें सुल्तान जी, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी इन ब्रैम्पटन, विद सम अमेजिंग डील्स वेटिंग फॉर यू। एंड इसके अलावा जो है IPL का जो मैच हो रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहां पर RCB ने पहले बैटिंग कर रही है RCB, एंड दिस इज़ द फर्स्ट क्वालिफायर, एंड इसके ऊपर सबकी निगाहें हैं बिकॉज पीपल आर लुकिंग एट कि भाई RCB विराट कोहली की टीम जो है जीत जाए, जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये तो अब आने वाला वक्त जो है बताएगा। बट एनीवेज जो शुरुआती जिस तरह से बैटिंग शुरू की थी हैज़ बिन प्रीटी गुड, एंड पाटीदार ने जो है ब्रूटल 93 नॉट आउट स्कोर किया, हेल्प्स RCB हैमर प्ले ऑफ रिकॉर्ड 254 फॉर द लॉस ऑफ 5 wickets. So amazing, amazing, amazing. Rajat Patidar ki ye zabardast phenomenal captain's knock in Dharamshala kheli gayi hai, aur plenty of momentum jo hai RCB ko mila hai is game mein, and flurry of sixes lagaye hain unhone 33 ballo mein, 93 not out, is one of the great IPL playoff innings, pushing his team to 254 for the loss of 5 wickets. Amazing, amazing. Ab dekhte hain ki bhai ab samne ki team kya karti hai, and ye dekhne wali baat होगी, बिकॉज 255 को गुजरात को चेस करना इज समथिंग क्रेजी, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सबकी निगाहें इसी मैच पर हैं आज। और दूसरी तरफ फीफा की बड़ी धूमधाम से तैयारी हो रही है राइट हियर इन टोरंटो एज वेल एज वैंकूवर, और सबकी निगाहें हैं कि भाई फीफा इज कमिंग टू आर सिटी, आर कंट्री, सो आर प्रोविंस, सो देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन रिगार्ड्स टू दैट एज वेल। टिकट्स की कीमतें जो सामने आ रही हैं आर एब्सोल्युटली क्रेजी, जिस कीमत पर टिकटें बिक रही हैं। एंड ऑल्सो बी केयरफुल मार्केट प्लेस या अलग अलग जगहों से, कि जीजी से कहीं से भी आप अगर गलती से कोई टिकट खरीदने की चक्कर में हैं, वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट कुड बी कि ऐसा ना हो कि यू नो किसी स्कैम का आप अनफॉर्चुनेटली हिस्सा बन जाएं। 4165930055 स्टूडियो का नंबर है। मैन 42 डाइज इन हॉस्पिटल आफ्टर मोटरसाइकिल वाज हिट बाय अ कार ऑन नगेट एवेन्यू नियर मार्कम रोड। और टोरंटो के फायर चीफ सेज टू रीसेंट फायर्स एट रिसाइकलिंग फैसिलिटी नियर कील और फिंच वर कॉज्ड बाय लिथियम आयन बैटरीज। सो ये भी एक यू नो समथिंग टू बी वेरी केयरफुल एक्चुअली व्हाट वी थ्रो इन द गार्बेज आपके घर के बाहर जो आप गार्बेज रखते हैं या रिसाइकल का जो कैन है उसमें आप क्या थ्रो कर रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग जो हैं साउथ एशियंस उस चीज़ में थोड़ी सी अलगर्जी जो है कर बैठते हैं, एंड समटाइम्स वी जस्ट थ्रो स्टफ यू नो विदाउट पेइंग अटेंशन. सो यू नो इन द लॉन्ग रन ऐसी चीज़ों का खामियाजा जो है भुगतना पड़ता है. विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक एंड वी बी राइट बैक.
1: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे. डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस मई 16th तक. लीज रेट एज लो एज 2.9% अप टू 24 मंथ्स. Select demo vehicles for savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: हाय अंजू, कैसी हो? हाउस योर सन डूइंग?
3: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
4: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 9054573232। क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कैंडा।
5: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
6: अच्छी, याद है याद है। अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
5: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो।
7: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे choleBhature.ca। कॉल 9054582448।
8: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइनिंग लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन मिसागा एंड 1 बाय वॉन मिल्स। बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर, जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, East or West, Asians is the best.
9: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend escape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
10: गुड आफ्टरनून, शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस।
8: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। एंड द हेडलाइंस आर ब्रॉट टू यू बाय एशियंस, डॉन वैली नॉर्थ हांडे, क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा, काव्या होम यू केयर, मिक्वीन डेंटल केयर, राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। शुरू करते हैं ताजा तरीन हेडलाइंस। फ्रांस में स्कूल अब्यूज स्कैंडल आई सामने, मोर देन 100 केसेस ऑफ अब्यूज रेप कैरीड आउट बाय स्कूल सुपरवाइजर्स विद चिल्ड्रन एज यंग एज 3 to 4 ईयर्स ओल्ड। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार चाइनाज टोटल डेट टू GDP रेशियो हैज टॉप्ड अ वॉपिंग 300%। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ कॉल पर हुई चर्चा के दौरान रशिया के लेवरोव ने कीव से यूएस डिप्लोमेट के इवैक्यूएशन की गुहार लगाई। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने सहमति बनाई है कि एनी फाइनल अग्रीमेंट विद ईरान मस्ट एलिमिनेट न्यूक्लियर थ्रेट इंटायरली। रिपोर्ट के अनुसार ईरानियन प्रेसिडेंट ने इंटरनेशनल इंटरनेट एक्सेस को रीओपन करने का ऑर्डर दिया। रिपोर्ट के अनुसार ईरान यूएस की डील के 30 दिन बाद हॉर्मूज में रीओपन। ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ निगोशिएशंस काफी स्मूथली चल रही हैं, ये पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट वाला मोमेंट साबित हो सकता है। यूके वेलनेस कोच की हुई मौत आफ्टर टेकिंग ड्रग मेड ऑफ टॉक्सिक फ्रॉग सिक्रीशन ड्यूरिंग द क्लेंजिंग रिचुअल। एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भारत दौरे के दौरान ताजमहल को भी विजिट किया। लोकल समाचारों में एक्वाफैक्स के अनुसार ओंटारियो मॉर्गेज डिलिंक्वेंसीज जंप 52%। 2 dozen ओंटारियो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के वर्कर्स अब स्ट्राइक पर हैं। मसाज थेरेपिस्ट को चार्ज किया गया विद सेक्सुअल असॉल्ट एंड वॉर्न पुलिस सस्पेक्ट मोर विक्टिम्स। सिविल सर्वेंट्स यूनियन ने कहा रिमोट वर्क रिक्वेस्ट रिसीविंग ब्लैंकेट रिजेक्शंस फ्रॉम डग फोर्ड। एंड सस्पेक्ट्स ने हैमिल्टन शॉपर्स ड्रग मार्ट लोकेशन में हाई एंड फ्रेग्रेंसेस को टारगेट किया। ईस्ट यॉर्क में 1 मेल डेड आफ्टर मोटरसाइकिल एंड कार कोलिजन। भारतीय समाचारों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर असम की सरकार के साथ मुस्लिम पक्ष करेगा मुलाकात। साथ। डेरा चीफ राम रहीम को फिर से पैरोल मिली 16 टाइम्स सिंस 2017 रेप कन्विक्शन। एंड टीवीके के चीफ मिनिस्टर विजय ने फार्म लोन वेवर्स का ऐलान किया, एक्सटेंडेड स्क्रीनिंग ऑफ मूवीज। सीबीआई ने त्विशा शर्मा डेथ प्रोब को टेक ओवर किया, भोपाल पुलिस से सीबीआई ने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लिए। एविएशन बॉडी ने युगांडा और कांगो एयरलाइंस के लिए इबोला प्रिकॉशन गाइडलाइंस जारी की। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश पोल से पहले कहा डिलेड एक्शन की वजह से कांग्रेस ने दलित सपोर्ट गवाई है। एट 32.4 डिग्री सेल्सियस दिल्ली रिकॉर्ड्स द वार्मेस्ट मे नाइट इन 14 ईयर्स। और गुलमर्ग गंडोला टेक्निकल इशू से हुए पैनिक के बाद 300 टूरिस्ट को रेस्क्यू किया गया। असम असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया फॉर 33% वुमेन्स रिजर्वेशन। और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिस्कल डेफिसिट पर कहा पंजाब एक्सपर्ट है एट क्लियरिंग डेट। प्रीवियस गवर्नमेंट ने 3.5 लाख करोड़ रुपीज का डेफिसिट छोड़ा था, बट वेयर डिड दे स्पेंड दैट 3.5 lakh crore rupees. I am building roads, fixing government schools and giving money to universities. I am clearing the debt of the electricity board as well. और बांग्लादेशी शख्स ने असम की अदालत में सरेंडर किया, प्रोब लॉन्च्ड इनटू इलीगल एंट्री। और सिंगर जुबिन गर्ग की मौत पर फास्ट ट्रैक अदालत ने 4 लोगों पर मर्डर चार्जेस लगाए। पाकिस्तान की खबरों से इंटरनेशनल पीस पर यूएनसी में UNSC डिबेट को अटेंड करने न्यूयॉर्क पहुंचे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डार, बायलैटरल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स में भी हिस्सा लेंगे। स्वाट मोटरवे पर पैसेंजर बस ने पार्क्ड बस को मारी टक्कर, कम से कम 18 लोग मारे गए पुलिस के मुताबिक। क्रैश हैपन नियर सकिंदाबाद खोरो कोटो ब्रिज और KPCM ने भी शोक जताया है। दूसरी ओर ईद उल अदा के मौके पर SSGC ने लोगों के लिए गैस सप्लाई स्केड्यूल का ऐलान किया। कंपनी के अनुसार गैस सप्लाई विल रिमेन अवेलेबल अंटिल 12 AM। पाकिस्तान के फैजल शफी पहले लोकल रनर बने टू अचीव द प्रोविजनल 8th मैराथन स्टार। ऑयल और LNG टैंकर्स ने हॉर्मूज को एग्जिट किया, हेडिंग फॉर पाकिस्तान एंड चाइना। एंड इन्फ्लेशन और हायर टैक्सेस की वजह से पाकिस्तान ईद रिटेल सेल्स प्लंज बाय अप टू 60%। बिजनेस कम्युनिटी वॉज एक्सपेक्टिंग $1.8 billion इन बिजनेस दिस ईद, मगर मार्केट में फुटफॉल की कमी देखी जा रही है। सिंध ने कराची एयरपोर्ट पर इबोला प्रिवेंशन मेजर्स को रैंप अप किया, 24 आवर्स एम्बुलेंस अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाएगी। CDF असीम मुनीर को US ईरान टेंशंस में की मीडिएशन रोल प्ले करने पर खूब तारीफ मिल रही है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिला है फॉर पाकिस्तान डिसिप्लिंड एंड इफेक्टिव डिप्लोमेटिक अप्रोच। और कराची कपल ने फ्री विल मैरिज की शॉट डेड आफ्टर कोर्ट अपियरेंस। एंड स्पोर्ट्स जगत से IPL के क्वालिफायर 1 में RCB और गुजरात टाइटन्स हैं आमने सामने। विराट ऑन द वर्ज ऑफ अल्टीमेट IPL रिकॉर्ड, 43 रन्स अवे फ्रॉम बिकमिंग द फर्स्ट बैटर टू स्कोर 600 प्लस रन्स इन 4 कंसेक्यूटिव IPL सीजन्स। श्रीलंका के कुसल मेंडिस अपकमिंग ODI और T20 वेस्ट इंडीज टूर के लिए कैप्टन होंगे, श्रीलंका के सिलेक्टर्स ने अपना डिसीजन सुनाया। हिस्टोरिक वर्ल्ड कप जीत के बाद हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से नवाजा गया। फॉर्मर कर्नाटका क्रिकेटर डाइज ऑन फील्ड आफ्टर सफरिंग अ हार्ट अटैक। बॉलीवुड खबरों से महानायक अमिताभ बच्चन की ग्रैंड डॉटर नव्या नवेली ने IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएशन कंप्लीट की, शेयर्स हर कैंपस मेमोरीज ऑन सोशल मीडिया। और एक्टर प्रसेंजित को भी पद्मश्री से नवाजा गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अहाना डेओल ब्रेक्स डाउन एज हेमा मालिनी एक्सेप्ट्स धर्मेंद्र's पद्म विभूषण। डॉन 3 एग्जिट के बाद रणवीर सिंह बैंड बाय फिल्म वर्कर्स बॉडी, फरहान अख्तर डिमांड्स 45 करोड़ रुपीज इन डैमेजेस। डायरेक्टर डेविड धवन ने एडमिट किया दैट ही वॉज डिप्रेस्ड आफ्टर सन वरुण धवन's फर्स्ट एवर फ्लॉप एंड दैट वॉज करण जौहर's कलंक। आशुतोष राणा और रेणुका शाहने ने अपनी 25th वेडिंग एनिवर्सरी पर फिर से फेरे लिए और कहा मैरिज इज अ डिवाइन बॉन्ड। और सुनील दत्त की डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें याद करके इमोशनल हुए बेटे संजय दत्त और कहा मिस यू ऑलवेज डैड। ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइन। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। और सुनील दत्त साहब ने जो फिल्म डायरेक्ट की थी वो संजय दत्त की पहली फिल्म भी थी रॉकी इन 1981, एंड उसे प्रोड्यूस भी सुनील दत्त ने किया था। एक और फिल्म थी जो कि अपनी वाइफ नरगिस दत्त के मौत के बाद सुनील दत्त ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी, एंड दैट वाज ऑन कैंसर पेशेंट्स एंड फैमिलीज दैट गो थ्रू कैंसर, दर्द का रिश्ता। दैट वाज आल्सो अमेजिंग फिल्म दैट सुनील दत्त साहब ने अपने करियर में किया। अदर देन दैट ऑल द सोशल वर्क दैट ही डिड ऑल हिज लाइफ, एंड ही वाज नोन फॉर दैट ऑल अक्रॉस इंडिया for what he did. And a great human being, or he probably did not deserve all the misery that Sunil Dutt went through after his wife's death. Jo cancer se Nargis ki death hui thi, and then later on, you know, the drug phase of his son Sanjay Dutt and the Tada case and all that kind of nasty stuff that he had to see in his life. Badi dukh ki baat hai. Par chaliye, that's how life is. Amit Kumar, Anuradha Podwal ki awaaz mein, Tezab film ka geet, ek caller hai, unhe quickly lete hain, phir aage badhte hain. Aap on air hain, please go ahead.
11: Ani, kaise hain aap, theek hain?
8: Ji, ji, theek hain, aap sunaiye.
11: Abhi aapne bataya, Delhi mein badi 34 centigrade chal raha hai temperature.
8: Night time.
11: Night time. So din mein toh bahut bura hal hoga.
8: Din mein it's about 45-46 degrees.
11: Kitne ghante electricity jati hai, power jati
8: hai? Ab itne ghante nahi jati. I think things have really improved from the past. Jab hum bache hua karte the, kai bar ek ek din chale jati thi and all that kind of nasty stuff that we had to see. But luckily ab itna bura hal nahi hai.
11: पाकिस्तान में तो 8-8 घंटे जाती है, 14-14 घंटे. ठीक है. और ये जो डबल फेरे वाली बात की आपने
8: जी,
11: वो जो हस्बैंड और वाइफ ने डबल फिर से फेरे ले लिए
8: जी,
11: तो क्या विश्वास नहीं था कि फिर से फेरे लेने पड़ गए?
8: कई बार ऐसा होता है, मुझे लगता है कि आमतौर पे मैंने इंडिया में ये देखा है कि 25 साल पूरे होने के टाइम पे यू नो दे सॉर्ट ऑफ फेरे को फिर से दोहराया जाता है. एंड आई थिंक इट्स प्रोबेबली द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ. मेरे माता पिता ने भी 25वीं सालगिरह पर लिए थे, सो आई रिमेंबर दैट. आई डोंट नो व्हाई, बट लिए जाते हैं, ये मुझे पता.
11: अच्छा,
8: है
11: एक सवाल जो मैं कर लूँ तो फिर हो सकता है आप ही बताओ.
8: ठीक है जी.
11: क्योंकि मुस्लिम में तो औरत को 3 दफा तलाक तलाक बोला तो उसको हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया. और फिर उसको अगर करनी है फिर रहना है तो फिर उसको हलाला करना पड़ता है, किसी और मर्द के पास जाके रहना पड़ता है.
8: ठीक है जी.
11: फिर वो उसको तलाक दे तो फिर वापस आके ये बंदा उससे शादी कर सकता है. हिंदुओं में क्या करते हैं, क्या कोई है ऐसा?
8: नहीं, ऐसा कुछ तो मैंने नहीं सुना है, ऐसा आई हैव नो आइडिया इन रिगार्ड्स टू दैट. लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा, मैं यहाँ पे ये बता दूँ, पावर आउटेज अफेक्टिंग लार्ज पोर्शन ऑफ डाउनटाउन टोरंटो राइट नाउ. अ लार्ज पोर्शन ऑफ डाउनटाउन टोरंटो इज एक्सपीरियंसिंग पावर आउटेज एंड टोरंटो पुलिस से दे आर अवेयर ऑफ द आउटेज विच इज अफेक्टिंग ट्रैफिक लाइट्स एज वेल. आउटेज इज ऑल्सो अफेक्टिंग ऑल बिल्डिंग्स एट TMU, टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी एंड द ईटन सेंटर. वहां पे OPS की बिल्डिंग भी है, ओंटारियो पब्लिक सर्विस की, दैट इज ऑब्वियसली बीइंग affected also. So yeah, that's what the, agar aap us area mein hai, agar aap koi, aapko koi jankari hai, aap yahan pe call kar sakte hain studio mein update karne ke liye, to 416-593-0055 pe call kare. Tezab film ka geet enjoy kare, brought to you by cholebature.ca. 4 locations se serve karte hain, 2 in Brampton, 1 in Vaughan and 1 in Mississauga.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940. वेलकम बैक फ्रेंड्स. और जितेंद्र गंदम रियल्टर हमारे साथ हैं और एक बहुत ही अमेजिंग मस्कोका में कॉटेज है, इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए जितेंद्र जी का नंबर नोट करें 416-265-2222 416-265-2222. जितेंद्र जी थोड़ा स्वागत है.
1: हेलो सत श्री जोशी भाजी, गुड आफ्टरनून. तो अज आप अपने सोचा लिए मस्कोका के एक कॉटेज लेके आए हैं. यह जी कॉटेज है दो एकड़ के लॉट के बनी हुई है. दो साल तो घट समा हो इस कॉटेज में बने हुए न. तीन बैडरूम ने, तीन वाशरूम ने, प्लस थोड़े को अनफिनिश बेसमेंट है जिद एक्सट्रा बैडरूम बना सकते हो. फुली अपग्रेड प्रॉपर्टी है. यह प्रॉपर्टी एयरबीएनबी से चल रही है पिछले एक डेढ़ साल तो. लास्ट ईयर 2025 के लगभग $100,000 के लग सके एयरबीएनबी का रेवन्यू से. प्लस ओनर आप भी उत्थे जाके रह रहे हैं. जे तुसी इस प्रॉपर्टी लेना चाहते हो इदा की कॉटेज तो सानू एक बार गलबात कर लियो. साडा नंबर 416-265-2222. रियल स्टेट की मार्केट के कोई भी प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो जां सेल करना चाहते हो कॉल 416-265-2222. थैंक यू वेरी मच
0: जी. बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र. 416-265-2222.
2: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th. इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स. डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते. संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो. डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में. विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com. Woodbine or Denison Street. Don Valley North Hyundai. Doing business your way. Member of Wayne's Auto Group.
0: काव्या होम्योकेयर. काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काव्या होम्योकेयर जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940.
1: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे. डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस May 16th तक. Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hai. Talk to Sirat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hai, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
4: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. जेनेसिस मार्कम, डूइंग लग्जरी योर वे. अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप.
5: दूर रहकर भी तेरी फरियाद करते हैं, अपनी तन्हाई से तेरी बात करते हैं. तू भूल जा या खौफे बदनामी से हो जुदा, तू भूल जा या खौफे बदनामी से हो जुदा. हर घड़ी हर पल तुझी को याद करते हैं, हर घड़ी हर पल तुझी को याद करते हैं. वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है. और लिसनर्स को हम 12 से 2 बजे इसी तरह से मंडे टू फ्राइडे याद करते रहते हैं, और आपके मैसेजेस को हम ऑलवेज मेक श्योर करते हैं टू रिप्लाई बैक. एंड दूसरी तरफ जो है हमारे साथ हैं रितेश पुरी जी, ब्रोकर यूनियन से. रितेश पुरी जी, इनकी टीम, अलका जी, कुलविंदर, दे ऑल कम ऑन एयर एवरी ट्यूजडे और लेटेस्ट इंश्योरेंस रिलेटेड अपडेट्स लेकर आते हैं. इंश्योरेंस की कई ऐसी बारीकियां हैं जो हम समझते नहीं हैं या कई बार समझने की कोशिश नहीं करना चाहते, बिकॉज वी थिंक कि एक बार हमने इंश्योरेंस ले ली तो उसका मतलब है कि हम 110% सिक्योर्ड हैं. लेकिन लाइफ इज नॉट दैट सिंपल. एंड लाइफ क्यों नहीं सिंपल है ये रितेश जी बताएंगे. 437-237-8068 इनका नंबर है. सेगमेंट के बाद आप कॉल कर सकते हैं फॉर ऑटो, होम, कमर्शियल, लाइफ इंश्योरेंस. 437-237-8068, खासकर ऑटो, होम की जहां पे हम बात करते हैं. रितेश जी, आपका स्वागत है.
6: गुड आफ्टरनून सनी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़कर.
5: सेम हियर ब्रदर. लोग अक्सर ये कहते हैं कि मेरे पास पूरी कवरेज है, इसका मतलब ये है कि मैं प्रोटेक्टेड हूं नो मैटर व्हाट हैपेंस. बट क्या ये असलियत में, इज इट एक्चुअली ट्रू, ऐसा होता है?
6: बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया आपने सनी जी यहाँ पर. हाँ, लोगों को यही लगता है कि एक बार हमारे पास फुल कवरेज आ चुकी है तो कोई भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो दे आर फुली कवर्ड. बट ऐसा होता नहीं है. क्योंकि अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि अब किसी ने एक ब्रांड न्यू एसयूवी ली और कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि व्हीकल जो है उनकी लाइक चोरी हो गई, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कवरेज होती है, एक डेप्रिसिएशन वेवर कवरेज जिसको कहते हैं. तो हुआ क्या कि चोरी के बाद जो उनको एक्चुअल जो वैल्यू मिली है वो करंट मार्केट वैल्यू मिली है.
5: अच्छा.
6: तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर को लाइक लॉस तो होता ही है, तो फिर उनको तब समझ आता है कि अच्छा मेरी पॉलिसी में ये कवरेज मिसिंग थी. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपनी कवरेज की नॉलेज होनी चाहिए.
5: इसी से मैं एक और सवाल क्विकली पूछता हूं, उसके बाद आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो लिसनर्स की तरफ से आते हैं. ये जिम्मा किसका होना चाहिए रितेश जी? ये जिम्मा मेरा होना चाहिए एज अ क्लाइंट, या मैं अपनी आंखें बंद करके बाद में ये कहूं कि यार ब्रोकर एजेंट ने नहीं मुझे बताया था? आपके हिसाब से हु शुड बी 110% लायबल एंड यू नो रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग लाइक दिस?
6: सर यहाँ पे क्लाइंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब उनको पॉलिसी मिलती है उस टाइम पे उनको क्वेश्चन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. वो ब्रोकर से कनेक्ट करे, उनसे पूछे कि यार जो कवरेजेस इम्पोर्टेंट है क्या वो इंक्लूडेड है. अगर कोई कवरेज उनको नहीं समझ आती है तो उस पर क्वेश्चन करे, उसको समझे. ऐसे आंखें बंद करके अगर आप आज पॉलिसी ले लोगे कि चीप इंश्योरेंस मिल रही है तो उसका फिर बाद में नुकसान ही होता है.
5: गुड टू नो, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट दोस्तों, क्योंकि ये गलतियां तो हम सबसे हो जाती हैं, होनी नहीं चाहिए. बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम रितेश जी को कॉल करें कि भाई ये पॉलिसी कितने की है, रितेश जी कह दें $200 अ मंथ और हम कहें कि चलो भैया इसका मतलब इट्स ऑल गुड. आई थिंक वी नीड टू क्वेश्चन एज मच एज जहाँ पे रितेश जी एक्सप्लेन करेंगे, हमें बताएंगे कि भाई आपकी क्या क्या कवरेज है, वहाँ पर हमें भी क्वेश्चन करना चाहिए. ये नहीं कि सस्ते में मिल गई तो भैया खुश हो गए कि भाई मैं तो अब सिक्योर हूँ, मेरी फैमिली सेफ है. दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी. 4372378068 सवाल पूछे, दैट इज इंपॉर्टेंट. अगला सवाल आपके लिए हमारे एक लिसनर का है, वो पूछते हैं आपसे कि रितेश जी व्हाई क्लेम्स गेट डिनाइड इवन व्हेन पीपल हैव इंश्योरेंस, ऐसा क्यों होता है?
6: ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया है कि होता क्या है कि क्लेम जो डिनाई होते हैं वो सिंपली इसलिए नहीं होते कि इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करना चाहती. होता क्या है कि आपकी कवरेज प्रॉपर है कि नहीं, आपने सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज की है कि नहीं. आप एक एग्जांपल से इसको ले सकते हैं कि अब कई बार क्या होता है कि लोग गलत एड्रेस दे देते हैं कि हमें चीप इंश्योरेंस मिल जाएगी, बट जब इंश्योरेंस कंपनी को ये चीज का पता चलता है तो आपकी आपका क्लेम डिनाई हो जाता है, आपकी पॉलिसी भी कैंसिल हो जाती है और आगे आपको इंश्योरेंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज कीजिए और अपने कवरेज पर भी बहुत ध्यान दीजिए.
5: जी दोस्तों, हम साउथ एशियंस जो हैं, हम सात समुंदर पार अपने अपने देशों से यहाँ पे आते हैं और कई बार हमें यहाँ पे आए हुए 5 साल हुए होते हैं, किसी को 10, 15, 20 जो भी, लेकिन लॉट ऑफ थिंग्स वी आर अनअवेयर ऑफ. लॉट ऑफ थिंग्स हमें ऐसा लगता है, हमें पता होता है, वो जब मुसीबत आती है तब यकीन होता है या पता चलता है कि ओ माय गॉड आई डिड नॉट डू दिस, दिस इज व्हाट आई शुड हैव डन. एंड वी आर ऑल एडल्ट्स, सो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने ब्रोकर से क्वेश्चंस पूछें. रितेश जी का नंबर 4372378068 एंड द गुड थिंग इज रितेश जी इज नॉट हियर टू जस्ट सेल एनीथिंग. ये नहीं है कि मुझसे खरीद लो, इट इज ऑल्सो अबाउट एजुकेटिंग अस अबाउट स्टफ दैट वी आर अनअवेयर ऑफ. मैनी होम ओनर्स बिलीव एवरी थिंग इन साइड देयर होम, रितेश जी, इज ऑटोमेटिकली कवर्ड अंडर द होम इंश्योरेंस पॉलिसी. ये क्या सच बात है या झूठ है?
6: नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं होता क्योंकि बहुत चीजें होती हैं. फॉर एग्जांपल कईयों को लाइक पेंटिंग, स्कल्पचर या फिर एक्सपेंसिव ज्वेलरी उनके पास होती है तो उनको लगता है कि चलो होम इंश्योरेंस मिल गया तो सब कुछ कवर हो गया. बट ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी कोई चोरी वगैरह कुछ भी हो गया तो ये जो एक एक्सपेंसिव आइटम्स है ये ऑटोमेटिकली कवर नहीं होती, आपको एडिशनल यहाँ पर कवरेज चाहिए होता है. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी आप कवरेज को समझिए. अगर आपको कोई आपकी डिफरेंट नीड्स है तो वो एक्सप्लेन कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी होम इंश्योरेंस कवरेज रखिए.
5: मतलब लेट्स से मैं कहीं वेकेशन पे गया, मुझे वहां पे कोई एंटीक पीस पसंद आ गया और मैंने वो एंटीक पीस जो है फर्ज करें $5,000 में बाय कर लिया और समथिंग लाइक दैट, थिंकिंग दैट टुमारो दिस एंटीक पीस विल बी $10,000 और मोर और समथिंग लाइक दैट. It is my duty to call and let you know कि भाई मेरे घर में एक additional antique piece है या एक expensive item है जो अब मेरे घर के अंदर है.
6: बिल्कुल सही बात की है आपने. कुछ भी अगर आपके changes आता है, कोई भी expensive item आपके घर में आ रही है, you should disclose it and get a proper coverage.
5: And उसके लिए दोस्तों आपने रितेश जी, अलका जी, कुलविंदर जी की टीम को कॉल करना है. नंबर है 4372378068. आखिरी सवाल आपके लिए ये है कि रितेश जी, why business interruption insurance is one of the most underestimated coverages? इसके बारे में तो मैं भी जानना चाहूंगा कि हमें थोड़ा बताएं कि how does this work?
6: ये मैं आपको एक example से समझाऊंगा कि suppose आपके पास एक restaurant है, right? वहाँ पे कोई एक बड़ी

0: कि जब भी आप बिजनेस इंश्योरेंस लेना लेते हो तो अपने ब्रोकर से कनेक्ट कीजिए और अपनी पॉलिसी को समझिए और जो भी इम्पोर्टेंट कवरेजेज हैं उसके बारे में बात कीजिए।
1: जी, एंड अंत में दोस्तों इम्पॉर्टेंट यही है कि एक अच्छी टीम के साथ संपर्क करें फॉर ऑटो होम कमर्शियल इंश्योरेंस. एंड रितेश पुरी, कुलविंदर जी, अलका जी, दिस इज़ एन इंटायर बिग टीम जहां पर अमन मेहता जी फाइनेंशियल प्लानर भी हैं, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हैं, और सारी आपकी इंश्योरेंस का टेक केयर किया जाता है एट द ऑफिस. एंड रितेश जी से एक बार संपर्क कर लें इफ़ योर रिन्यूअल इज़ कमिंग अप फॉर ऑटो होम कमर्शियल इंश्योरेंस. टॉक टू रितेश जी, ही विल एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ द स्टफ दैट हम बिल्कुल अनअवेयर होते हैं. और सस्ता जरूरी नहीं है कि जो सस्ते में चीज मिलेगी वो आपके लिए बेस्ट साबित होगी, एंड में वही हो सकता है आपको सबसे ज्यादा ग्रीफ दे. टॉक टू रितेश पुरी 4372378068, 4372378068 इज द नंबर. रितेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते फिर होती है मुलाकात.
0: थैंक यू सो मच सनी जी.
1: थैंक यू ब्रदर. 4372378068 इज द नंबर. एंड एशियंस एक बहुत ही पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग टेक्सटाइल स्टोर है, मार्कम लॉरेंस एवन्यू, मार्कम रोड और लॉरेंस एवन्यू इन स्कारब्रो के पास, 3601 लॉरेंस एवन्यू स्कारब्रो. यहां पर लेटेस्ट 2026 के साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी, गिफ्ट आइटम पहुंच चुके हैं. अब आपने क्या करना है, टेक अ राइट डाउन, गो टू एशियंस और इनकी अमेजिंग डील्स का आपने फायदा लेना है. क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा, सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, ब्रैम्पटन एंड जॉर्ज टाउन. आई एग्जाम्स के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल 7 डेज अ वीक. डॉन वैली नॉर्थ हंडे दे रहे हैं फीफा की टिकटें. बैलेट होगा ड्रॉ इन द मंथ ऑफ जून यानी नेक्स्ट मंथ. ऑफर एंड्स 31 मई. अगर आप हंडे की गाड़ी इनसे खरीदते हैं, टू नेम्स फॉर टू टिकट्स विल बी पुट इन फॉर अ लकी ड्रॉ. इफ यू बाय विंटर टायर्स फ्रॉम देम विद स्टोरेज, वन नेम फॉर वन टिकट. एंड कोई एक्सटेंडेड वारंटी परचेज करते हैं, वन नेम फॉर वन टिकट विल बी पुट इन फॉर अ लकी ड्रॉ. 7537 वुडबाइन एवन्यू इन मार्कम, स्टील्स वुडबाइन वाला मेजर इंटरसेक्शन. क्या आपको लगता है दोस्तों कि धुरंधर फिल्म का एक्शन, दोनों फिल्मों में जो एक्शन दिखाया गया वो जस्टिफाइड है, इतना खतरनाक एक्शन जो दिखाया जा रहा था विद ऑल दैट ब्लड एंड ऑल दैट, क्या कोई इमोशंस को स्क्रीन पर फिल्म में आप तक पहुंचाना या आपके दिल को छूना इमोशंस के जरिए, क्या इतना एक्शन जरूरी होता है, या यू थिंक यू कैन जस्ट यू नो दीज गाइज वेंट ओवरबोर्ड? आई पर्सनली फील धुरंधर एज फिल्म्स जो हैं, ऑब्वियसली आदित्य धौर ने बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, मैं फिल्म की सिर्फ बात कर रहा हूँ, फिल्म मेकिंग की बात कर रहा हूँ. आई डोंट वांट टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स एंड प्रोपेगेंडा ऑफ थिंग्स. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो एक्शन है, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा एक्शन जिस स्तर पर एक्शन को दिखाया गया वो जस्टिफाइड है. ऑब्वियसली पीपल दैट लव्ड धुरंधर और जिन्होंने थिएटर्स में जाके तीन तीन चार चार बार फिल्म को देखा है वो हो सकता है मुझसे अग्री ना करें, बट आई रियली वॉन्ट टू नो कि क्या इंडियन ऑडियंसेस या साउथ एशियन ऑडियंसेस जो हैं इतना वायलेंस देखने के लिए आर दे ओके? आई मीन दे क्या उनको देखने के बाद फिल्म ऐसा नहीं लगा जो मुझे लगा या मेरे परिवार के कुछ मेंबर्स को लगा कि यार व्हाट इज दिस, मतलब व्हाट आर दे दीज गाइज ट्राइंग टू शो, द काइंड ऑफ वायलेंस एंड ब्लड गोरी एवरीथिंग जो दिखा रहे हैं, कि क्या मतलब इतने की जरूरत है, या मतलब उससे 50% आप कम भी दिखा दे तो चलता है? 4165930055 स्टूडियो का नंबर है. ऑल द धुरंधर लवर्स, आई वांट टू रियली हियर फ्रॉम यू, व्हाट इज इट दैट यू लव्ड सो मच अबाउट धुरंधर? अगर धुरंधर आपने देखी नहीं है तो प्लीज कॉल ना करें. आई टेक द फर्स्ट कॉलर. जी आप ऑन एयर हैं.
0: देखिए ये जो फिल्म जो बनी है ना, उसमें इसी को टॉपिक पे बनी है कि वहां गैंगस्टर ये था और ये सब कर रहे थे वो.
1: ठीक है,
0: रियलिटी पता ही क्या है, उस इलाके में जो अपना दुश्मन था, एक उनका था कौन सा लाडला था, उसके उसने अपने एक बंदे को कत्ल किया और उसकी गर्दन काट के उसके सर से फुटबॉल खेलते रहे.
1: विच इज शोड इन द फिल्म ऑल्सो.
0: हाँ,
1: सो यू आर थिंकिंग कि जस्टिफाइड है इतना ज्यादा वायलेंस दिखाना?
0: नहीं, जस्टिफाई की बात यह कि अगर टॉपिक ही ऐसा है तो वो क्या करेगा, अभी वो उसने कमजोरी तो नहीं छोड़ेगा ना. जो लोग उस इलाके को जानते हैं या समझते हैं,
1: हाँ,
0: तो वहां का तो ये था मामला होता रहा है.
1: ठीक है,
0: अभी जो बंदा पाकिस्तान में जिसको पकड़ा था
1: जी,
0: वो फिर पता नहीं इधर उधर हुआ क्या हुआ, पाकिस्तान में तो कानून तो है नहीं।

0: कोई किसी को कोई सजा तो आज तक नहीं मिली है, तो उसको भी ऐसे ही उसने कोई 110 या पता नहीं 150 कत्ल किए, ठीक है।
1: जी देखिए,
0: और
1: सजा
0: उस
1: ऐसी तो बात नहीं है कि पाकिस्तान में सजा नहीं मिलती है। आफ्टर ऑल इमरान खान एक लीडर थे, आज वो जेल में बैठे हुए हैं, तो ये सजा ही है और क्या है।
0: वो यहाँ भुट्टो थे, उनको फांसी पे टांग दिया था, वो सजा जिसको देनी होती ना, इंसाफ ये नहीं होता, इसको नहीं कहो कि सजा मिली। ये जो वायलेंस दिखाया है ना,
1: जी
0: ये वायलेंस है, उधर था किसी वक्त में, ठीक है।
1: ठीक है।
0: और ये बहुत कुछ होता रहा है, अभी तो बहुत उन्होंने लिहाज किया है कि बहुत चीजें बताई नहीं है, और भी बताना चाहिए उनको,
1: ठीक है
0: ताकि
1: जी,
0: पूरी पिक्चर लोगों को क्लियर हो जाती कि वहां होता क्या।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है। एंड हमारे लिसनर को ऐसा लगता है कि धुरंधर में जो एक्शन दिखाया गया है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री जरूर करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि धुरंधर टू का जो शुरुआती सीन है, उस सीन में जो एक्शन है और एंड में जो एक्शन है, उससे 50% कम एक्शन ब्लड दिखा भी देते तो उसमें कुछ गलत नहीं होता। आप ऐसा नहीं है कि इतना ब्लड और इतना एक्शन दिखाकर किसी चीज को बहुत जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि हॉलीवुड ने ये सब चीजें पहले की हुई हैं। एंड देन दे मेक अ फिल्म लाइक एनिमल, जो कि कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले बनी थी रणबीर कपूर की, जिसमें अननेसेसरी टू मच ऑफ क्रेजी एक्शन दिखाया गया था जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है। एंड धुरंधर जस्ट वेंट इन टू 5 times एंड इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। आई हैव अ कॉलर जिन्होंने कॉल नहीं किया, बट ही चोज टू सेंड मी अ टेक्स्ट। शम्मी उनका नाम है और वो कह रहे हैं कि एवरीथिंग दैट इज शोन इन धुरंधर 1 and 2 वॉज वेरी मच लाइक्ड बाई एवरी वन। नहीं, बात ये नहीं है कि हर एक ने उसे पसंद किया या नहीं। देर आर पीपल लाइक मी दैट प्रॉबली लाइक्ड द फिल्म मेकिंग बट डिड नॉट लाइक द क्रेजी एक्शन। अगले कॉलर को लेते हैं, आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड।
2: हेलो फनी जी, क्या हाल है?
1: जी
2: फरजाना
1: जी,
2: बात कर रहे हैं।
1: फरजाना जी, प्लीज गो अहेड। हैव यू वॉच धुरंधर 1 and 2?
2: जी, मैंने देखी थी। और असल बात वही है जो अभी आपने कही कि इतना ज्यादा ब्लड दिखाने की जरूरत थी। मैं आपको बताती हूँ, एक मूवी आई थी मौला जट, पाकिस्तान की पंजाबी मूवी, राइट? वो
1: जी
2: अब तक की पंजाबी मूवीज में सबसे ज्यादा उसने किया।
1: जी
2: तो उसमें क्या था, ये हमारे अम्मी के जमाने की और काफी पुरानी थी, उसको रीमेक किया था। तो उसमें मुझे याद है कि जो पहले भी थे सुल्तान रही और मुस्तफा कुरैशी, उनमें बहुत ज्यादा ना उनके पास गंडासा होता है, गंडासा इज लाइक कुल्हाड़ी, एक्स जो होती है,
1: जी
2: तो वो हर बंदे की गर्दन काटना, ब्लड ब्लड ब्लड। उसके बाद से अब एक मूवी आई थी एनिमल, आपको याद होगी,
1: बिल्कुल
2: रणबीर कपूर
1: बिल्कुल
2: की, राइट?
1: बिल्कुल
2: अच्छा, वो बंदा सूट वाला बंदा सारा कुछ, लेकिन जब उसको कुल्हाड़ी उठानी थी तो उसने धोती और कुर्ता पहना हुआ था। वो
1: हाँ
2: थोड़ी हंसने की बात थी, राइट?
1: बिल्कुल
2: उसको कॉपी
1: बिल्कुल
2: किया गया था ना कि वो बहुत हिट हो गई।
1: बिल्कुल
2: यकीन करें सनी जी, जब मैं इधर ट्रिनिटी में गई थी, सिल्वर सिटी में, सो 20% आप कह सकते हैं कि सिर्फ पाकिस्तानी थे, 80% जो था पंजाबी पर्सन थे वहां पे थे। और इतनी खुशी की बात थी कि उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, राइट? कि पंजाबी मूवीज इवन हॉलीवुड वालों ने भी कहा कि बहुत अच्छी है।
1: जी
2: सो उसके बाद से एक ट्रेंड चल पड़ा कि जी हर मूवी में मार कुटाई और खून खराबा ये सब दिखाना है। नो डाउट कि उसमें सही दिखाया गया है, हमारा बचपन वहां गुजरा है। जो ये बेलियारी में तो नहीं खैर कभी गई, लेकिन मुझे पता है कि वहां पे जब ये बन गई थी, या क्या कहना चाहते हैं, जमात कहते हैं, ये तंजीम बन गई थी, तो बहुत ज्यादा बेचारे जवान जवान लड़कों को लेके ले जाते थे और गायब हो जाते थे, और बहुत ज्यादा उनको मार भी दिया जाता था। तो
1: बट
2: नो
1: जस्ट
2: डाउट कि
1: पर आपके हिसाब से इट्स नॉट जस्टिफाइड इस लेवल का एक्शन दिखाना।
2: जी, और क्या जरूरत है कि हम एक दूसरे के खिलाफ मूवी बनाएं? क्यों क्यों बजाय मोहब्बत बांटने के हम क्यों नफरतें बांट रहे हैं? तो
1: जी
2: ये वाला टॉपिक लाना ही चाहिए।
1: कई
2: नो
1: बार,
2: डाउट
1: कई
2: बहुत
1: बार
2: अच्छी
1: फरजाना
2: चीज
1: जी, नफरत जो है वो ज्यादा बिकती है।
2: बिकती है,
1: प्यार
2: एग्जैक्टली, बात
1: मोहब्बत
2: ये
1: जो
2: है,
1: है वो शायद दम तोड़
2: बहुत
1: देता
2: पुरानी
1: है।
2: हो गई है।
1: या
2: जी
1: इट्स
2: जी जी
1: अनफॉर्चुनेट
2: बिल्कुल,
1: बट इट्स अ फैक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं
2: शादी
1: अगले कॉलर को लेना चाहता हूं और
2: क्यों
1: आपसे आपकी राय
2: गई,
1: लेना चाहता हूं।
2: मोहब्बत
1: आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो
2: बांटते
1: अहेड।
2: हम क्यों नफरतें बांट रहे हैं?
1: आप
2: जो
1: रेडियो पीछे से
2: ये
1: प्लीज
2: जो
1: बंद कर
2: नफरत
1: दें। हेलो,
3: जो है वो ज्यादा बिकती है।
1: ओके, प्लीज कॉल बैक करें। आप जब कॉल करते हैं तो पीछे से रेडियो की वॉल्यूम आप कम कर सकते हैं, दैट वे आपकी आवाज भी सुनाई देगी और मुझे अपनी आवाज फिर से नहीं। ओके, प्लीज कॉल बैक 416-593-0055। आई रियली नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन लोगों ने चार चार पांच पांच बार थिएटर में जाके फिल्म को देखा है, धुरंधर 1, धुरंधर 2 को। एंड हेलो
4: हेलो, हेलो, मैं लाइन पे हूँ।
1: जी जी, आप लाइन पे, प्लीज गो अहेड।
4: मेरा एक ही सवाल है। मैं पुराने जमाने की हूँ, मृणाल सेन के मैंने बहुत सारे मूवीज के बारे में सुना भी है और कुछ एक देखे भी है उस टाइम में। तो उनकी मूवीज में इंडिया के इतने हद से ज्यादा रियलिटी दिखाए थे कि भूखे नंगे लोग हैं इंडिया में, भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, ये वो। उस समय में ऑस्कर तक में, मतलब हॉलीवुड तक में उसकी उसकी चर्चा हुई थी और अप्रिशिएट किया गया था। तो वो रूप दिखाया तो चलेगा, उसमें सबने वाहवाही लूटी, बोला हाँ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। अब धुरंधर ने इंडिया के सिवा दूसरे कंट्री का रियलिटी दिखाया तो सबको मतलब अच्छा नहीं लग रहा।
1: नहीं, बात ये नहीं है,
4: रियलिटी ये है ना, मेरा सवाल यही है। रियलिटी आप दिखा रहे हो, एक तरह की रियलिटी दिखाओ तो अच्छा है, दूसरी तरह की रियलिटी दिखाओ तो अच्छा नहीं है। कि इंडिया में 60s-70s में सब भूखे नंगे थे,
1: नहीं बिल्कुल नहीं थे,
4: खाना नहीं मिलता था, अकाल था।
1: देखिए इसी वजह से
4: दिखाया था।
1: नहीं, इसी
4: सवाल यही है कि रियलिटी, एक तरह की रियलिटी में आपको अच्छा लगता है, दूसरे में आपको अच्छा नहीं लगता है। मतलब रियलिटी अगर अच्छा लगता है तो दोनों देखो।
1: जी जी, नो मैं इसका जवाब दूंगा।
4: मैं किसी के बारे में नहीं बोलती कि धुरंधर अच्छा है कि नहीं अच्छा, मृणाल सेन अच्छे थे या नहीं अच्छे, मुझे कुछ नहीं।
1: जी
4: मैं सिर्फ, और मैंने दोनों फिल्में देखी है।
1: जी जी, नो आई
4: मैं अवॉइड टू सी वायलेंस, पर मैंने बैठ के देखा ही,
1: ठीक है,
4: रियलिटी दिखा रहा था।
1: ठीक है,
4: मेरा इतना ही कहना है।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का, बहुत बहुत शुक्रिया। यू नो व्हाट, पॉइंट ये नहीं है, आई एम नॉट ट्राइंग टू से मैं एप्पल्स एंड एप्पल की कंपैरिजन करना चाहूंगा, एप्पल ऑरेंजेस का नहीं। सलाम बॉम्बे, मीरा नायर ने एक फिल्म बनाई थी। मीरा नायर वो हैं, जस्ट टू लेट पीपल नो जिनको शायद ना पता हो, जो ममदानी अब न्यूयॉर्क के, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर हैं, ये उनकी मॉम हैं। इन्होंने एक फिल्म बनाई थी सलाम बॉम्बे, जैसे बहुत एक रियलिस्टिक ड्रामा कहा जाता है। आई वॉच द फिल्म, ये 1998 की फिल्म थी, और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मीरा नायर या यहाँ पर हमारी दीपा मेहता हैं, ये जो डायरेक्टर्स हैं, ये ज्यादातर जो फिल्में बनाते हैं या बनाते आए हैं, अगर आप इनके रेज्यूमे को देखें, इनका रेज्यूमे ज्यादातर इस चीज पे होता है कि इंडिया में जो गुर्बत है या इंडिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, सोशल इश्यूज को लेकर ये लोग फिल्में आमतौर पे बनाते हैं। नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट द पॉइंट इज कि जैसे कई लोग ये मानते हैं कि भाई हॉलीवुड ज्यादातर जाकर इंडिया में जब कोई फिल्म बनाता है तो इंडिया की रिचनेस के बारे में फिल्म नहीं बनती, वो ज्यादातर गुर्बत के बारे में फिल्म बनती है। गुर्बत तो वैसे न्यूयॉर्क सिटी और टोरंटो की डाउनटाउन में भी कम नहीं है आज की तारीख में। कहने का मतलब है कि यस, हॉलीवुड वॉज फेमस फॉर मेकिंग दोज काइंड ऑफ फिल्म्स, जहां पर सिटी ऑफ जॉय, आप मेरी सिटी कैलकटा से, उन्होंने सिटी ऑफ जॉय वहां पर जाके पैट्रिक स्वेजी ने ओम पुरी के साथ फिल्म की शूटिंग की थी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो कई बार बंदे को लग रहा था यार आप कुछ रिचनेस भी दिखा दो हमारे देश की, आप इसे सिर्फ एक थर्ड वर्ल्ड की तरह पोर्ट्रे करते। सो I was not in favor of, I'm not in always in favor of those kind of films, Slumdog Millionaire and all that kind of films. Jo, kam se kam Slumdog Millionaire mein unhone do alag alag dikhaye hain, jahan pe ek richness bhi dikhai hai aur jahan par poverty ko bhi dikhaya gaya. But Dhurandhar, I don't sort of digest the kind of action वहाँ पे, जो crazy action Ranveer Singh कर रहा है और director उसको दिखा रहा है, even Dhurandhar 2 के फर्स्ट इनिशियल हाफ एन आवर में जो एक्शन देखने को मिलता है इन द एंड ऑफ द फिल्म, थोड़ा सा अवॉइडेबल था, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलिए, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी यारोना वॉज द फिल्म, राजेश रोशन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे, प्यारा सा गीत एंजॉय करें।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940.
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें wayneautogroup.com.

0: जोशी।
1: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 ब्रैम्पटन कोर्ट इन ब्रैम्पटन, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 और acvc.info।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने 2000 से 6000 डॉलर US कमा सकते हैं. Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ minimum 2000 to 6000 डॉलर आप कमा सकते हैं. Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment. Walk in ना करें. 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar and call करके अपनी seat reserve करवा लें. 905-206-1008 905-206-1008. Mittal CPA Professional Corporation for all your tax related matters. 289-748-4040 289-748-4040.
3: वो कल भी भूखा सोया था फुटपाथ में, अचानक खूब पटाके चले रात में, झूमते चिल्लाते नाचते लोगों को देखा तो हर्षाया, पास बैठी ठिठुरती मां के पास आया, बताना माई क्या हुआ है, आखिर क्या बात है. मां बोली, बेटा आज साल की आखिरी रात है, आज साल की आखिरी रात है.
4: कॉन्डो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है. बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे वन से. कॉन्टेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ. 416-666-2745.
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. और हमारे साथ अतीक खान साहब हैं, एज ऑलवेज लोकल डेवलपर एंड बिल्डर एंड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इंगेज्ड हैं सदर्न ओंटारियो सिंस 2000. एंड दिस इज लाइक मेनी अदर थिंग्स, कई बार एक ऐसा होता है, एक बिजनेस कॉन्सेप्ट होता है जो बिजनेस कॉन्सेप्ट सैकड़ों लोगों के लिए बेहतरीन साबित होता है. एंड देन क्योंकि इट्स बिन in the market for such a long time, Atiq bhai has been specialized isme karte hain, unki expertise hai isme, he's been doing it since 2000. So ye kya business concept hai, kis tarah se ye aapke liye faydemand sabit ho sakta hai, because no one wants to hear anything in today's day and time other than faydemand kaise koi cheez hamare liye sabit ho sakti hai. How can we think of growth and nothing but growth. Atiq bhai ka number note karein, 416-666-2745-416-666-2745. बाकी अतीक भाई इसकी देंगे जानकारी. अतीक भाई आपका स्वागत है.
5: थैंक यू सो मच सनी साहब, और आपको और आपके लिसनर्स को गुड आफ्टरनून. कैसे हैं आप?
2: फर्स्ट क्लास अतीक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. जब भी आप आते हैं कुछ हमें नया सुनने को और सीखने को मिलता है, विच इज ऑलवेज अ ग्रेट थिंग. एंड एक मोनोटोनस नहीं है आपका आना ऑन एयर, सो विच इज अनदर थिंग दैट आई ऑलवेज लाइक. आज आप क्या इस पूरी कॉन्सेप्ट को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कोई चीज जो आपके दिमाग में जहन में है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन रिगार्ड्स टू हाउ यू स्टार्टेड एंड वट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू केम अक्रॉस एंड देन एंड रिजल्ट जो है क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज आती है एंड यू वांट टू टॉक अबाउट.
5: 100% बिल्कुल बताऊंगा. लिसनर्स, मैं लैंड डेवलपर हूं, बिल्डर हूं, पिछले 20 सालों से इसी काम में हूं, एक ही काम आता है मुझे. और स्पेशलिटी इस काम की यह है कि आप रॉ लैंड को लेके उसकी जोनिंग को कन्वर्ट कराते हैं. फॉर एग्जाम्पल आज मैं स्पेसिफिक बात करूंगा RM या CM कैटेगरी में. अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, RM और CM. RM का मतलब होता है सनी साहब मल्टीपल रेजिडेंशियल, और CM का मतलब है मल्टीपल कमर्शियल. उसके अंदर हर सिटी की, हर जोन की, हर म्यूनिसपैलिटी की एक लंबी चौड़ी आपको डिटेल मिल जाएगी कि मल्टीपल रेजिडेंशियल में आप क्या कर सकते हो या मल्टीपल कमर्शियल में आप क्या कर सकते हो. उसकी जानकारी मैं और भी दूंगा, बट आपने आपके सवाल को मैं सवाल के साथ टाई अप कर रहा हूं कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो इस चीज के लिए कोई तजर्बा सिखाने के लिए आपका कोई मेंटोर बनने को तैयार नहीं है. नोबडी वांट्स यू टू लर्न द बिजनेस एंड बी देयर कंपटीशन, या कल को आप उनके आगे निकल जाएं. अनफॉर्चुनेट सी बात है, बट वो जमाना अब चेंज होता जा रहा है. अब लोग मोर रिलैक्स हो गए और समझ में आ गया है कि रोजी रोटी ऊपर वाला देता है. मैं आपकी रोजी नहीं छीन सकता, आप मेरी रोजी रोटी नहीं छीन सकते. तो अब लोग मेंटोरशिप में आ गए हैं, लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं. तो मैंने ये बिजनेस सीखा पढ़ पढ़ के, तजर्बे कर करके, एक्सपीरियंस के साथ, गिरते पड़ते, बहुत से पिटफॉल में गिरने के बाद पता चला कि अच्छा सस्ता काम कैसे कराया जा सकता है, सिटी को कन्विंस कैसे करना है, उसकी एक स्टोरी टेलिंग क्या होती है. तो मेरे उस एक्सपीरियंस का आप बेनिफिट ले सकते हो. जो गलतियां मैंने करी, मैं कोशिश करूंगा कि वो गलतियां आप ना कर पाओ. मैं आपको गिरने से पहले ही रोक लूं कि नहीं सनी साहब, आप गलत तरफ जा रहे हो, यहां गए तो ये खाई में गिरने वाले हो आप. तो ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है. कमिंग बैक टू आरएम या सीएम का, जब से कैनेडियन गवर्नमेंट ने नया पैसा लगाना शुरू किया है, गवर्नमेंट ने नया इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाना शुरू किया है, सिटी और म्युनिसिपैलिटी को पैसे देने शुरू किए हैं. आपकी शायद नॉलेज में नहीं होगा, जस्ट बिकॉज आई एम इन दिस फील्ड, मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है. सिटी को इंसेंटिव देने शुरू किए हैं कि अगर आपने इतना टारगेट मीट कर लिया तो गवर्नमेंट सिटी को पैसे देती है फॉर देयर एफिशिएंसी. आप उसको एफिशिएंसी कह लें, एक रिपोर्ट कार्ड कह लें. तो मिलियंस ऑफ डॉलर गवर्नमेंट देना चाह रही है सिटीज और म्युनिसिपैलिटीज को कि वो लोगों में आगे जाके हेल्प करें और रेड टेप को कट कर रहे हैं. तो मैं क्या करता हूं, एक सस्ती लैंड खरीदी, उसको कन्वर्ट कराया. ये तकरीबन कोई 18 मंथ का से 20 महीने का टाइम लगता है. उस 18 महीने में अप्रूवल करा के या तो उस लैंड को हमने सेल कर दिया टू अर्न 30-40% रिटर्न, और अगर मार्केट चेंज हो गई, हालात अच्छे हो गए, तो उसको जाके एक्चुअल में बिल्ड करते हैं और वहां पे कमर्शियल प्लाजा, इंडस्ट्रियल स्पेस, कोई स्कूल है, कोई डे केयर है, कोई होटल है, गैस स्टेशन है, वी डू ऑल ऑफ दैट. तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, कॉल मिलाइए 416-666-2745. हाफ एन आवर टू 45 मिनट आप मेरे साथ बैठेंगे. वो एक पास्ट का, जैसे सनी साहब ने भी बोला कि जरा कुछ एक्सप्लेन कर दें कि पास्ट में आप क्या करते आए, कैसे करते आए, आप वो एक हिस्ट्री भी देख लेंगे, करंट प्रोजेक्ट भी देख लेंगे और फ्यूचर में आने वाले प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, कैसे होता है, सिक्योरिटी क्या है, रिटर्न्स कैसे मिलते हैं, उसका टैक्स कैसे पे करना है, टैक्स कैसे बचाना है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, कॉरपोरेशन को आप ट्रस्ट में लेंगे, अपने नाम पे लें, बच्चों के नाम पे करें, वो आपकी पूरी एक घंटे की एक समझ लीजिए एक फाइनेंशियल चेकअप हो जाएगा. और अगर हम दोनों एक दूसरे को समझ में आ गए, सो रेस्ट इज ऑल पेपर वर्क. सनी साहब 416-666-2745.
2: जी दोस्तों, 416-666-2745. अतीक खान साहब से एक बार मुलाकात कर लें. मैं ऑलवेज ये कहता हूं, दीज मीटिंग्स आर, ये बिना किसी ऑब्लिगेशन के होती है. आप जब तक कन्विंस नहीं होते तब तक जो है आप उस मीटिंग में क्वेश्चंस पूछें, बिकॉज इट इज़ योर मनी एंड यू हैव द फुल राइट टू. एक्चुअली जहां पे हम ग्रोथ की बात करते हैं, अतीक खान साहब तो सक्सेसफुली ये चीज़ कर रहे हैं. हमारे लिए दिस इज़ रॉकेट साइंस. सो रॉकेट साइंस को समझने के लिए जो है टाइम वक्त भी लगता है, एंड निटी ग्रिटीज़ को समझने के लिए अगर एक्सपर्ट सामने हो तो फिर मज़ा ही कुछ और होता है. अतीक भाई का नंबर नोट कर लीजिए, 416-666-2745, 416-666-2745. अतीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक इन एडवांस.
5: आपको भी, आपके लिसनर्स को भी ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया इतना टाइम देने का.
2: थैंक यू ब्रदर. 416-666-2745, 416-666-2745 अतीक खान साहब का नंबर है जिस पर आप उनसे कर सकते हैं संपर्क. और सोनू निगम साधना सरगम की आवाज में, जतिन ललित का म्यूजिक, प्रसून जोशी के लिरिक्स एंड सैफ अली खान एंड रानी मुखर्जी की फिल्म थी हम तुम, जिसका गीत है चक दे. एंड दिस वाज एक्चुअली द टाइम जब शाहरुख खान की स्वदेश रिलीज हुई थी, आशुतोष ग्वारिकर की डायरेक्टेड स्वदेश, राइट आफ्टर लगान. आई थॉट इट इज शाहरुख खान वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स जो शाहरुख खान ने अपने करियर में की है. लेकिन जरूरी नहीं होता कि जो बेस्ट फिल्म आप करते हैं वो फिल्म हिट हो जाए, लेकिन वो याद जरूर रखी जाती है. क्यों मैं कनेक्ट कर रहा हूं हम तुम और स्वदेश को, बिकॉज दिस वॉज द टाइम व्हेन शर्मिला टैगोर वॉज वो प्रेसिडेंट थी सेंसर बोर्ड की और सम सॉर्ट ऑफ यू नो अथॉरिटी वाली पोजिशन में. एंड बेस्ट एक्टर का जो नेशनल अवार्ड है वो हम तुम के लिए सैफ अली को मिला इंस्टेड ऑफ शाहरुख इन स्वदेश. ऐसा भी होता है, बड़े से बड़ों के साथ ऐसा हो जाता है. दिस इज एग्जैक्टली व्हेन कुमार सानू ने पांच साल उनका रिकॉर्ड है फिल्म फेयर बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीता. एंड द सिक्स्थ ईयर ही डिड नॉट गेट द बेस्ट सिंगर फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे तुझे देखा तो ये जाना सनम. इंस्टेड डोली सजा के रखना उदित नारायण को दे दिया गया जस्ट बिकॉज फिल्म फेयर एंड हुएवर दोज पीपल वर डिड नॉट वॉन्ट टू गिव कुमार सानू फॉर द सिक्स्थ कंसेक्यूटिव ईयर बेस्ट सिंगर अवार्ड. ऐसा बड़े बड़ों के साथ होता है, फिर हम क्या चीज है. एंजॉय.

0: इमिग्रेशन
1: कम्युनिटी का जाना बजाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040 दैट इज 416-451-0040 और विजिट skylakeimmigration.com।
2: Skylake Immigration।
3: रियल एस्टेट इज नॉट इजी बिजनेस और जो इजी नहीं उसे इजी बनाते हैं रियल्टर राज जोशी फ्रॉम रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली। घर खरीदना या फिर घर बेचना, फर्स्ट टाइम होम बायर्स या फिर इन्वेस्टर्स, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल। ये है राज जोशी, रियल्टर बेमिसाल। कॉल राज जोशी फ्रॉम रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली रियल्टी 647-866-1086 647-866-1086। राज जोशी, सिर्फ नाम ही काफी है। बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट, एशियंस इज द बेस्ट।
4: जेनेसिस मार्कम, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। जेनेसिस मार्कम, डूइंग लग्जरी योर वे, अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
3: This segment is brought to you by Clear Optical by Varun Karna, जो कि दो location से आपको serve करते हैं, Brampton and Georgetown. Exams के लिए doctors available 7 days a week, 905-457-3232. For name brand sunglasses, always remember Clear Optical by Varun Karna. The segment is also brought to you by Home Life Miracle के superstar realtors Sarabjit Gill, CP Chatwal for real estate buying, selling, investments. एक बार इनसे जरूर संपर्क करें, some amazing properties that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 या 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, जो कि 30+ locations से serve करते हैं 100% pure vegetarian food, जबरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम Rajdhani Sweets and Restaurant.
5: अक्सर घर खरीदे में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है, ऐसा क्यों?
6: नया इलाका और नया घर, अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं। घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान। फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com. प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन।
4: टाउन वैली नॉर्थ हंडे आपको दे रहा है मौका फीफा वर्ल्ड कप 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज, विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी ले और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीते। विजिट donvalleynorthhyundai.com टुडे, अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
7: You're listening to the Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940.
1: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अनादी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना. इस च साथ देण के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा. ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप. अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी.
2: Hi अंजू, कैसी हो? How's your son doing?
3: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है. आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल.
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल.
4: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज. विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन, 9054573232. Clear Optical by Varun Kanda.
5: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से. अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें. कॉल करें रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन. 6478661086, 6478661086. राज जोशी, नाम ही काफी.
6: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन लिमिटेड रेडियो पर. रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली के बहुत ही नॉलेजेबल रियल्टर राज जोशी जी हमारे साथ हैं. राज जी से करते हैं बातचीत. राज जी, आपका स्वागत है.
7: सर जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आपको और प्यारे लिसनर्स को, वेरी गुड आफ्टरनून
6: जी आपको भी.
7: सर जी, आज मैं जो शेयर करने जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम होम बायर हूँ, इन्वेस्टर हूँ, या कोई भी भाई बहन जो एक घर की तलाश में, उनके लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, मौके का फायदा उठा सकते हैं. सिर्फ 540,000 से आपको ब्रांड न्यू होम विदाउट द कंस्ट्रक्शन वेट मिल सकता है. 1615 स्क्वायर फुट का ब्रांड न्यू टाउन होम, टू स्टोरी विद वन कार गैराज, वन कार इन द ड्राइववे, कॉर्नर यूनिट, और इसके साथ एक बहुत जबरदस्त स्पेशल पैकेज हमारी टीम की ओर से. ऑल दिस इन शेलबर्न, बहुत ही जबरदस्त लोकेशन है ये, फोर्थ लाइन और हाईवे 89 से जस्ट नॉर्थ. एक्सलेंट एक्सलेंट लोकेशन, ऑल अमेनिटीज आर अराउंड, स्कूल्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, शॉपिंग, डाइनिंग, कम्युनिटी सेंटर, सब कुछ अवेलेबल है. और प्राइस अनबिलीवेबल, 560,000, 548,000 में आपको ऐसे यूनिट्स मिल सकते हैं. 1530 स्क्वायर फुट का यूनिट 548, 1650 का यूनिट 570, और 1530 का अनदर सेंटर यूनिट फॉर 561. फाइव यूनिट्स यहां पर रेडी टू मूव इन है. और अगर शेलबर्न को आप अपना एड्रेस बनाना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर लें. डोंट मिस आउट, मूव इन होम्स की ये अपॉर्चुनिटी है. और साथ ही साथ फ्री होल्ड ट्रेडिशनल टाउन होम्स अब अवेलेबल हैं फ्रॉम द हाई 500, जिसमें फ्री होल्ड ओनरशिप, मॉडर्न फैमिली फ्रेंडली लेआउट, प्राइम नायग्रा की लोकेशन है, और ऑफकोर्स एक्सेप्शनल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम हाई 500s. लवली फोर बेडरूम का ऑप्शन भी है. कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं आप हमसे पा सकते हैं. नंबर एक ही है जो सनी जी हमेशा शेयर करते हैं
6: जी.
7: और हमारी कम्युनिटी जिनसे हम कनेक्ट करते हैं थ्रू साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो इस प्लेटफॉर्म, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
6: जी,
7: विशिंग एवरीवन अ वंडरफुल आफ्टरनून सनी जी.
6: जी बहुत बहुत शुक्रिया राज जी. 6478661086 राज जोशी जी का नंबर है. खासकर अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, एक बार राज जी से जरूर संपर्क करें और आपको पता चलेगा कि भाई नॉलेज और एक्सपीरियंस का जो फायदा होता है जब रियल्टर आपके साथ में होता है, बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए आप के थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर की बचत कर सकते हैं, करवा सकते हैं. राज जोशी, रॉयल पेज क्रेडिट वैली, 6478661086. बहुत बहुत शुक्रिया राज जी.
7: थैंक यू
6: सनी जी. थैंक यू जी. 6478661086. आगे चलकर ब्रैम्पटन टीवी अप्लायंसेस सुल्तान जी भी हमारे साथ होंगे. बाहर का तापमान हो चुका है 27 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 29 डिग्री सेल्सियस. चलिए छोटी सी ब्रेक लेते हैं, गीत संगीत का कारवां चलेगा 2 बजे तक.
8: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट Woodbine Avenue एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे. A proud member of Wayne's Auto Group.
6: मॉर्गेज का कोई भी काम, याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी. फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक. बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी. 6478631940, 6478631940. काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 Cotral Boulevard, Unit 104 in Brampton, 6477602779, 6477602779.
9: सुनदे हो, मेरे प्रादिया च फ्लाइट है इंडिया तो.
10: ओ याद है पर उनू कहीं कि आउंदा होया एक प्लेट छोले भटूरिया दी फड़ लियावे.
9: इंडियन स्वाद वाले छोले भटूरे खान ले इंडिया दे सुपने ना देखो, choleBhature.ca ते चलो.
11: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट ब्रैम्पटन. छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे ते होर भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड ले पहुंचो. choleBhature.ca, कॉल 9054582448.
12: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga and 1 by Vaughan Mills.
13: At Wayne's Auto Group, aap hum par rely kar sakte hain. For everything automotive, chahe ho daily commute ya weekend scape, hamara promise will always remain the same. Har journey ko banaye khas. Wayne's Auto Group, hamesha aapke saath. Over 1400 dedicated associates jo bolte hain aapki language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit kare waynesautogroup.com.
14: You're listening to The Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. ब्रैंटन टीवी एंड अप्लायंसेस से सुल्तान जी हमारे साथ हैं. 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिकूसी इन ब्रैंटन. 905-450-2828 इज द नंबर. ओपन 7 डेज अ वीक, 11 AM to 7 PM. BramptonAppliances.com पर जाकर आप अमेजिंग डील्स को चेकआउट कर सकते हैं. बाकी की सारी डील्स सुल्तान जी से लेते हैं. सबसे पहले टीवी सेक्शन की ओर करेंगे रुख. सुल्तान जी, आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर.
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया
0: सुल्तान जी. सबसे पहले द अमेजिंग टीवी सेक्शन पर थोड़ी सी रोशनी डालें.
1: डेफिनेटली जी, बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है और उसके साथ साथ रैप्टर्स की गेम चल रही है, साथ में ब्लू जेस की गेम चल रही है, तो जो भी स्पोर्ट्स के शौकीन कस्टमर हैं वो तो डेफिनेटली बिग स्क्रीन पे फुली इंजॉय करते हैं. और अगर बिग स्क्रीन डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है जी. तो ये जो भी कस्टमर इस वक्त 85 इंच QLED लेना चाहते हैं, क्वांटम डॉट क्वांटम प्रोसेसर के साथ QLED सैमसंग का 85 इंच $2000 वाला सिर्फ $1299 में मिलेगा. $700 आप 85 इंच QLED पे सेव करेंगे. ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस बोवेड एंड चिंकूजी वाली लोकेशन पे जी. इसी तरह 65 इंच सिर्फ $699 में मिल जाएगा और 55 इंच सिर्फ $399 में ले सकेंगे. पेमेंट आपने 6 महीने में करनी है जी, कोई इंटरेस्ट नहीं है. फ्री होम डिलीवरी होगी. आपको आना है 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है जी. BramptonAppliances.com हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं. और जब बिग स्क्रीन की बात करें तो 98 इंच को मिस ना करें, क्योंकि 98 इंच सिर्फ 3 TV इन स्टॉक रह गए हैं. $3500 से सेल प्राइस $2799 का था, लेकिन $1999 में 3 lucky कस्टमर कैन गेट इट. 6 month नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान के साथ 98 इंच सैमसंग टीवी 1999 का. 905-450-2828, 905-450-2828 जी.
0: 905-450-2828, ब्रैंटन टीवी एंड अप्लायंसेस. सुल्तान जी, अप्लायंस एंड लॉन्ड्री की सेक्शन पर भी क्या अमेजिंग डील्स चल रही है, उस पर भी प्लीज डाले रोशनी. कुछ बंडल पैकेजेस भी मैं चाहूंगा कि आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाएं.
1: बिल्कुल जी, 40% का डिस्काउंट अप्लायंसेस इंडस्ट्री में नहीं मिलता. हाईएस्ट वॉल्यूम डीलर होने की वजह से 40% का डिस्काउंट जो है हम अपने कस्टमर्स के लिए लेके आए हैं जी. अगर तो बिल्ट इन किचन लेना है तो ह्यूज सेविंग है, क्योंकि बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वॉल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवाशर और बिल्ट इन काउंटर टॉप फ्रिज जो पूरे का पूरा बिल्ट हो जाएगा आपके किचन कैबिनेट्स में, और आइस एंड वाटर डिस्पेंसर के साथ होगा ये आपको $12,000 वाला बिल्ट इन किचन सिर्फ $6,900 में मिलेगा जी. ह्यूज सेविंग है, 40% की सेविंग करवा रहे हैं. फ्री होम डिलीवरी होगी. 6 month में आप पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है. इंडिविजुअल भी अगर आप लेना चाहते हैं, सिंगल फ्रिज आपको $2500 वाला $1799 में मिलेगा, और इसमें भी आप $700 एक फ्रिज खरीदने पे सेव करेंगे. स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव $1300-1400 वाला $799 में मिलेगा सिर्फ, इसमें भी $500 की सेविंग है. टॉल टब की डिशवाशर जो है $1000 वाली, ये तो मोर देन 40% डिस्काउंट है, क्योंकि $1000 से सिर्फ $499 में ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे डिशवाशर ले सकेंगे स्टेनलेस स्टील की $499 फ्री होम डिलीवरी के साथ. फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर की बात करें जी तो $2200 वाला फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर $1499 में, और टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर की अगर बात करें तो $1700 वाला टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर सिर्फ $1099 का पेयर मिलेगा. वॉशर ड्रायर दोनों ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस बोवेड एंड चिंकूजी वाली लोकेशन पे आना है. हमारा मैसेज जरूर पास ऑन करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव को. ह्यूज सेविंग्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस एंड लॉन्ड्री सेक्शन में मिलेंगी. 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है जी. ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828, 905-450-2828 जी.
0: जी, 905-450-2828, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस. He's breaking through the midfield.
2: टाउन वैली नॉर्थ हंडे आपको दे रहा है मौका फीफा वर्ल्ड कप 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज, विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी ले और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री. आज ड्राइव करें, कल जीते. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
3: ये वो जगह है जहाँ हर धर्म को बराबर रखा जाता है, हमारी सद्भावनाओं का सम्मान किया जाता है और हमारी जनरेशन के लिए भी पुरानी कलाकृतियों को संभाला जाता है. ये है इंडिया सजावट एंड पूजा हट, धर्म, संस्कृति और कला का सुमेल. 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808.
0: जी हाँ दोस्तों, यहां पे लेते हैं आपसे इजाजत. अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे ऑन CMR 101.3 FM. शो के बाद बातचीत करनी है, नंबर एक ही है 6478631940. टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
3: Attention please, Sean Express, Masiki Rail Gari, CMRK Station, 101.3 FM par aa chuki hai.
4: Jal mein sunane aayi, subah manane aayi, chatpate gossip ke saath masti lutane aayi. Aayi Sean Express, masti ki rail gari, aayi Sean Express, masti ki rail gari.
5: Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी,
6: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आप ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव. Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी.
5: शालिनी ब्रॉट टू यू बाय Sean Media.
7: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ शालिनी और आप लोगों का वेलकम करती हूँ मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3. आज है दोस्तों ट्यूसडे, मई 26, और आज बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं ईद का त्यौहार मना रहे हैं, तो आप सभी को हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो. कहते हैं कि ईद का चांद सिर्फ आसमान में नहीं, आज हर चेहरे की मुस्कान में चमक रहा है. ईद का चांद सिर्फ आसमान में नहीं, आज हर चेहरे की मुस्कान में चमक रहा है. कोई गले मिल रहा है, कोई दुआओं में याद कर रहा है, और कोई दूर होकर भी दिल के सबसे पास नजर आ रहा है. रौनक सी है हवाओं में, मीठी सी मुस्कान हर बात में, लगता है फिर से खुशियां उतरी हैं इस खूबसूरत ईद की रात में. और नए कपड़ों की खुशबू, सेवइयों का स्वाद, अपनों का प्यार, दुआओं की बरसात, यही तो है दोस्तों ईद की असली बात. तो Sean Express मस्ती की रेलगाड़ी पर आप सभी को दिल से ईद मुबारक. आज का शो होगा खुशियों का, गानों का और ढेर सारी मुस्कुराहटों का. स्टूडियो में दीजिएगा हमारा साथ एक बार फिर से 416-593-0055. गुड आफ्टरनून.

0: मुबारक, ईद मुबारक। और कहते हैं कि ये जो त्योहार होते हैं ना, एक बहाना होते हैं जिंदगी को एंजॉय करने के लिए, ताकि एक दूसरे का साथ मिले, हम थोड़ा आपस में बात करें और एक दूसरे को वक्त दें, एक दूसरे को कुछ बनाकर खिलाएं, प्यार की जफ़ी दें और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएं। कहते हैं बस यूं ही हंसते रहिए, अपनों के साथ खुशियां बांटते रहिए, क्योंकि ईद सिर्फ एक त्यौहार नहीं, दिलों को करीब लाने का एक खूबसूरत एहसास है। एक बार फिर से आप सभी लिसनर्स को शालिनी की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ईद की रोशनी हो, चांद की रोशनी हो, दुआओं का असर हो। चांद की रोशनी हो, दुआओं का असर हो, हर दिल में मोहब्बत और हर घर में सब्र हो। ईद का ये प्यारा त्योहार आपकी जिंदगी में हर खुशियों का सफर हो, ऐसी ही ऊपर वाले से दुआ करते हैं। ट्यूसडे May 26 है आज की तारीख और मौसम आज का जो है बिल्कुल परफेक्ट हॉलिडे और वेदर है। कई लोगों ने ऑलरेडी हॉलिडे ले ली है, लेकिन हमने बिल्कुल नहीं लिए, क्योंकि हमें आपको एंटरटेन जो करना है और बताना है कि आज का मौसम कैसा है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड और सनशाइन है, थोड़े बहुत बादल भी है। फील्स लाइक 29 डिग्रीज और आज जो है हाईएस्ट टेम्परेचर जब छोड़े जाएंगे आपको शाम के 4 बजे, तब जा सकता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ओवरनाइट लो भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोगों को आज बेसमेंट्स में सोना होगा, बिकॉज बेसमेंट्स आर यूजुअली कूलर देन अपस्टेयर्स। तो वेल दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा सा दिन लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हुए हैं और आपका हम करते हैं एक बार फिर से स्वागत। और सबसे पहले आज बता दूं आपको कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और आज का टॉपिक ये कहता है, क्योंकि सॉरी डे है आज, ऑलराइट, आज है सॉरी डे, तो सॉरी से जुड़ा हुआ टॉपिक होगा। और कहते हैं, कभी नोटिस किया है कि सॉरी सिर्फ एक वर्ड नहीं होता, कई बार ये टूटे रिश्ते जोड़ देता है, कई बार ईगो की वजह से लोग सालों तक एक दूसरे से दूर रह जाते हैं। तो चलिए आपसे पूछते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं, क्या आप तुरंत सॉरी बोल देते हैं या आपका ईगो बहुत स्ट्रांग है? ओपनली हमें बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या आपकी जिंदगी में सॉरी बोलने से आपने अपना कोई रिश्ता बचाया है? ये आपसे हमारा सवाल है। स्टूडियो के नंबर 4165930055। एक छोटा सा टाइनी सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, स्पॉन्सर्स के मैसेजेस लेते हैं, उसके बाद वापस लौटते हैं आज के अगले गाने के साथ। स्टे ट्यून्ड। शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी, स्टेशन CMR 101.3 FM पर आ चुकी है। Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Shaun Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@shaunmedia.com, shonmedia.com.
1: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200. 905-362-2200.
2: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
1: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
0: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स?
3: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
0: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
3: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन।
0: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल।
4: वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट। स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का। फ्राइडे सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26। 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली वड़ा, स्पाइसी अरोमेटिक करीज एंड मोर। अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे। डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर। मद्रास रेस्टोरेंट, 905-789-6600। That's 905-789-6600.

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekin aaye hain. First time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates. Unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
2: पुराना गाना बनाए दीवाना, शोर एक्सप्रेस पर खोले यादों का पिटारा। This segment is sponsored by Madras Restaurant, bringing you authentic South Indian flavors with their unlimited thali. 20 plus delicious dishes, fresh and unlimited, starting at just 20-26, Friday to Sunday, only at Madras Restaurant.
3: दोस्तों, आपका शालिनी स्वागत करती है फिर से CMR FM 101.3 पर शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी के साथ। इट्स 2:16 राइट नाउ। और मैंने आपसे पूछा था एक सवाल कि आपने आज, क्योंकि नेशनल सॉरी डे है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी चीजें हैं आज के दिन में, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नेशनल सॉरी डे। एक जो सॉरी है ना, वो बहुत कुछ कर सकता है। एक प्यारी सी स्माइल लाइए या चेहरे पे थोड़ा सा सैडनेस ले आइए, सॉरी बोल दीजिए, तो बस फिर फॉरएवर के लिए आपका रिश्ता जो है एकदम सेट हो जाता है। तो आपसे मेरा सवाल ये था कि क्या सॉरी कहकर आपने अपना रिश्ता कभी बचाया है, या ये भी आप ऑनेस्टली बता सकते हैं कि क्या आपके अंदर बड़ा ईगो है और आप आसानी से सॉरी नहीं कहते। अगर कोई सॉरी नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन अच्छा नहीं है, वो पर्सन अच्छा हो सकता है, लेकिन ईगो जैसी एक चीज़ है उसके अंदर, ईगो जैसा कीड़ा है जो उसको आगे कहने ही नहीं देता सॉरी, उसको गलती मानने ही नहीं देता। तो अब ये मुझे आपसे पूछना है कि ऑनेस्ट कन्फेशंस आज होंगे शो में, कि आप में से कौन हमारे साथ आके बता सकता है कि आप में ईगो है और आप सॉरी नहीं बोल सकते, या आपने सॉरी बोलकर अपना कोई रिश्ता बचाया है। ये है आपसे मेरा सवाल। कई लोग ऐसे भी होते हैं, क्या आप उनमें से ऐसे हैं जो जरा फनी तरीके से सॉरी कहते हैं, बस खाना लेकर आ जाएंगे या मीम्स भेजना शुरू कर देंगे। कुछ लोगों की एक बड़ी क्लासिक लाइन होती है, तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी। तो आज का सवाल ये भी है आपसे कि सबसे मुश्किल सॉरी आपकी कौन सी थी जिंदगी में, जो आप बड़ी मुश्किल से आपने बोली और बोलकर आपको बड़ा अच्छा लगा। जरूर हमारे साथ शेयर करें ऑन एयर। 4165930055, दैट्स 4165930055। और कहते हैं कि कुछ लोग इतने प्यारे होते हैं कि उनसे लड़ाई भी हो जाए ना, तो दिल खुद कह उठता है अच्छा जी मैं हारू, चलो मान जाओ ना। और नाराज़गी भी उन्हीं से होती है जो दिल के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, वरना ग्यारहों को मनाने की कोशिश कौन करता है। तो नेशनल सॉरी डे पर अगर आज आपसे कोई रूठा हुआ है, कोई दोस्त, कोई आपका अपना, कोई स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ, ईगो को थोड़ा साइड में रखिए और भेज दीजिए ये प्यारा सा गाना उनको। फिल्म का नाम है काला पानी और मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ है। बहुत प्यारा सा गीत, डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू ऑन शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। गुड आफ्टरनून।

0: छोड़ो,
1: देखा दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहे ना किसी के।

दोस्तों, अगर कह दिया जाए किसी को कि भाई चलो मैंने हार मान ली है, अब मान जाओ, तो भाई मान तो लेना चाहिए. सॉरी, लेकिन किसी को अगर आपने कह दिया है तो बस फिर सारा कुछ खत्म हो जाना चाहिए. उसके बाद ज्यादा लंबा ड्रैग नहीं होना चाहिए कोई इश्यू ना, क्योंकि एक सॉरी एक बड़ी छोटी सी चीज है, लेकिन इसके सामने बहुत भारी भरकम ईगो सामने आ जाता है. तो ये मेरा आपसे सवाल है कि सबसे मुश्किल सॉरी आपकी जिंदगी की कौन सी थी जो आपने बोली है, या आप एक्सेप्ट करेंगे कि आप में इतना ईगो है कि आप सॉरी नहीं बोल सकते. यू आर अ नाइस पर्सन, लेकिन आपके अंदर ईगो है. ये मुझे आपसे पूछना है. आई नो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर यू टू कम ऑन एयर एंड से थिंग्स अबाउट सॉरी, बट लेट्स हियर इट फ्रॉम यू. 416-593-0055. फिलहाल बता दें, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स अगर आपको चाहिए रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ऑन्टारियो. खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और इनकी जो एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम है खुद ही इंस्टॉल करती है. यानी नो मिडल मैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपकी प्रॉपर्टी तक. स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, एवरीथिंग टुगेदर, और प्राइस ऐसी जो आपके पॉकेट का सूट करे. इसके अलावा दोस्तों, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है. अगर आप फ्रेंचाइज इनकी लेना चाहते हैं तो ज़रूर एक फास्ट ग्रोइंग टीम का हिस्सा आप बन सकते हैं. यश विंडोज एंड डोर्स, धर्म जी से आज ही बात करें. 416-732-3600, that's 416-732-3600. और इसके साथ साथ दोस्तों, आपको मैं बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अजीम जी का नंबर जरूर आप लिखें, क्योंकि वो बड़े एक्सेप्शनली गुड कॉन्ट्रैक्टर हैं. और घर में छोटा मोटा कोई भी काम कराना हो, होम रिपेयर्स हो आपके, आपकी इंस्टॉलेशन का मसला हो, इंटीरियर और साथ ही एक्सटीरियर भी, किचन में, बाथरूम्स में, बेसमेंट्स में, और रूफ का कुछ काम कराना हो, डेक्स का कोई काम कराना हो, दरवाजे, खिड़कियां, अप्लायंसेस, ड्राई वॉल, फ्लोरिंग का काम करना हो, पेंटिंग, फिनिशिंग करानी हो, तो अजीम गेट्स इट डन राइट द फर्स्ट टाइम. वेरी वेरी गुड रिव्यूज हैं इनके. ऑनेस्ट, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी नाम है अजीम, जो डिलीवर करते हैं क्वालिटी वर्क That is guaranteed. आज ही बात करें अजीम जी से. 647-280-8806, 647-280-8806. और हमारे पास आ चुके हैं देओल ट्रैवल की लेटेस्ट डील्स. अगर आप दुनिया भर में कहीं भी जाना चाहते हैं, देओल ट्रैवल से जरूर बात करें. और लेटेस्ट इनकी डील्स हमारे पास आ चुकी हैं दिल्ली से टोरंटो. सबसे पहले जून में जा सकते हैं वन वे 799 में. यू हर्ड मी राइट. नाउ दिल्ली बॉम्बे टू टोरंटो आना चाहें, जून से अगस्त तक राउंड ट्रिप लगा है स्पेशल फेयर $1,369. नाउ टोरंटो से अमृतसर या टोरंटो से दिल्ली सितंबर टू अक्टूबर राउंड ट्रिप लगा है $1,699 टू बैग्स के साथ. टू लोकेशंस टू सर्व यू, इटोबिको एंड ब्रैम्पटन. देओल ट्रैवल 905-588-5100 and 905-588-4200, 588-5100 and 588-4200. आप है मस्ती की रेलगाड़ी पर शालिनी के साथ सवार ऑन CMR FM 101.3. कोई भी गाना आप सुनना चाहें, किसी को कोई गाना डेडिकेट करना चाहें, और इसके साथ साथ आप अगर चाहते हैं अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाना, तो आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं आफ्टर द शो. 416-569-7812, 416-569-7812. एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बाजीगर. इस फिल्म का एक बहुत ही अमेजिंग सा गाना है, और काजोल की आंखों को बड़ा अच्छा माना जाता है, तो काजोल की आंखों पर पिक्चराइज्ड है ये गाना. ये काली काली आंखें और बिल्कुल 90s की फील है, और जिस तरह से गाना स्टार्ट होता है, दैट इज एब्सोल्यूट बैम बैम. 1993 की फिल्म थी, फिल्म का नाम था बाजीगर. कुमार सानू है सिंगर, अनु मलिक हैं कंपोजर, देव कोहली के बोल हैं, और आपकी नजर करते हैं ये बहुत खूबसूरत सा गाना, ये काली काली आंखें. शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMR FM 101.3. एंजॉय द ट्रैक, और फिर चलते हैं आज की ताजा हेडलाइंस की तरफ. स्टे ट्यून्ड.

0: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस। शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया। न्यूज हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय अंजुम कुरैशी। फॉर ऑल काइंड ऑफ कार एक्सीडेंट क्लेम्स कॉल 416-570-0157। That's 416-570-0157।
1: नमस्कार, शॉन एक्सप्रेस बस्ती की रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं आप और ये है न्यूज जंक्शन। पहले जान लेते हैं हेडलाइंस। पाकिस्तान ने इसराइल से दोस्ती करने और उसे देश की मान्यता देने से इनकार कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक खत्म। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने हॉर्मूज का मुद्दा उठाया। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी MQ-9B ड्रोन को मार गिराया है और ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसे एक लड़ाकू विमान पर भी फायरिंग की। भारत में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ चुके हैं। पंजाब में 8 नगर निगम, 75 नगर कौंसिल और 20 नगर पंचायतों के लिए आज वोटिंग हुई। केंद्र सरकार ने देश की आबादी में हो रहे असामान्य बदलाव की स्टडी के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया। उधर बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह पहुंचे मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर, यहां पर की विशेष पूजा अर्चना। ये कदम उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद उठाया है जो उनके खिलाफ दर्ज कांतारा फिल्म के देवा सीन की मिमिक्री केस में दिया गया था।
2: और दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज की टॉप लोकल हेडलाइंस की तरफ। सबसे पहले टॉप स्टोरी की फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता जा रहा है कैनेडियंस के ऊपर। कनाडा में फाइनेंशियल स्ट्रेस के बढ़ते हुए आसार तो पहले ही नजर आ रहे थे, अब फाइनेंशियल स्ट्रेस लोगों में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इक्विफैक्स कनाडा की रिपोर्ट के मुताबिक इंसॉल्वेंसी केसेस 2009 के बाद इस वक्त हैं हाईएस्ट लेवल पर। 18.8% का जंप हुआ है ईयर ओवर ईयर। एक्सपर्ट्स के अनुसार हाई इंटरेस्ट रेट्स और मॉर्गेज रिन्यूअल्स लोगों पर हैवी प्रेशर डाल रहे हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज, डाउनटाउन टोरंटो पावर आउटेज के चलते कि टोरंटो हाइड्रो जो है रिस्टोरेशन पर काम कर रही है। यूनिवर्सिटी एवेन्यू से यंग स्ट्रीट तक एक बड़ा एरिया इफेक्ट हुआ है। होम्स और बिजनेसेस दोनों इंपैक्ट हुए हैं और टोरंटो हाइड्रो ने कहा है वी सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द डिस्ट्रप्शन। एक मिसिंग टीन केस इंटेंसिफाई हुआ है और 14 साल की एस्थर, जिसे प्यार से एसटी कहा जाता था, अभी भी लापता है। पिछली बार इन्हें देखा गया बाथर्स स्ट्रीट एंड हॉटस्पर रोड पर। और एक केस में बड़ा अपडेट सामने आया है, $25,000 का रिवॉर्ड अनाउंस किया गया है और फैमिली ने अपील की है पब्लिक से हेल्प के लिए। और मिसिंग पोस्टर्स को वैंडलाइज किया जा रहा है, फैमिली ने इसे काफी हार्ड ब्रेकिंग बताया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कोई भी इंफॉर्मेशन एक बड़ा डिफरेंस ला सकती है। एक कंज्यूमर अलर्ट बता दें, एक पुरानी टिकट को लाइटली लेने पर क्या हो सकता है। ऑन्टेरियो के ड्राइवर हैं जियोफ क्लेंडेनिंग, इनका शॉकिंग केस सामने आया है। 1996 में जारी हुआ $32 का पार्किंग टिकट, इनको 30 साल बाद इनका लाइसेंस सस्पेंशन हुआ है। लेसन है, टिकट्स को इग्नोर ना करो। अगली खबर स्पेंडिंग ट्रेंड्स को लेते हुए, कैनेडियंस जो है कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। टीडी बैंक का सर्वे आया है कि 35% लोग इन समर कम खर्च करेंगे, 61% लोग अपनी ट्रैवल कॉस्ट को कट कर रहे हैं, 62% लोग जो है एसेंशियल्स पर फोकस कर रहे हैं। गुड न्यूज है कि 79% कैनेडियन लोकल बिजनेसेस सपोर्ट कर रहे हैं। उधर एक लेटेस्ट अपडेट में वाटर फ्रंट फेस्टिवल को कैंसिल कर दिया गया है। टोरंटो वाटर फ्रंट फेस्टिवल 2026 यानी इस साल कैंसिल हुआ है। फंडिंग इश्यूज प्लस फीफा प्रेशर बताया जा रहा है और आइकॉनिक ममा डक भी इस साल नहीं आएगी। चलते हैं आज के वेदर अपडेट की तरफ। हीट अलर्ट स्टाइल है वेदर, हाई ऑफ 29 डिग्री सेंटीग्रेड, ह्यूमिडेक्स के साथ आपको महसूस हो सकता है 32 डिग्रीज, और आज रात का ओवरनाइट लो जा सकता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रॉपर समर फील, स्टे हाइड्रेटेड। न्यूज हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय अंजुम कुरैशी। फॉर ऑल काइंड ऑफ कार एक्सीडेंट क्लेम्स कॉल 416-570-0157. That's 416-570-0157. आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
5: Ja.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest fee installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, debt solutions specialist and insolvency counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ
3: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ
4: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263 ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦਾ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ
5: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekin. I have first-time home buyers clear an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First-time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates. Unlocking home ownership for the first-time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
6: Shagan ka din chadhega, sajna ghar aayenge, toli lekar jayenge, सजेगी शहनाई भी बजेगी लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी शादी हो या थीम शो कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए लम्हा इवेंट्स हर पल मुस्कुराइए जिंदगी मनाइए कॉल 416-522-0543

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं, लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार, स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है, या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए 5th जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 4378296023, इट्स 4378296023, मास्टर धनिक महाराज।
2: बॉलीवुड में रोजाना बदले जमाना, शॉन एक्सप्रेस पर ये रहा लेटेस्ट गाना।
3: और वेल दोस्तों, आपका वेलकम करती है शालिनी सीएमआर एफएम 101.3 पर मस्ती की रेलगाड़ी के साथ। डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 4165697812, 4165697812। और लेटेस्ट गाने में आज जैसे शामिल कर रहे हैं कॉकटेल 2, ये लेटेस्ट फिल्म है और ये एक जो है स्पिरिचुअल सीक्वल है। दैट्स अमेजिंग, आई नेवर हर्ड दिस नेम बिफोर, स्पिरिचुअल सीक्वल to the hit of 2012, same film Cocktail। और इसमें होमी अराजानिया का डायरेक्शन है और इसमें है शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदाना, एंड दिस इज गोइंग टू रिलीज ऑन 19th of June। और इस फिल्म से लिया गया एक बहुत प्यारा सा गाना है आपकी नजर करेंगे। और इससे पहले बता दें कि आज के दिन में क्या खास होने जा रहा है, व्हाट इज गोइंग टू बी सो स्पेशल इन टुडेज डे। और आज का दिन थोड़ा नॉस्टैल्जिक है, थोड़ा स्वीट है, थोड़ा इमोशनल भी है। सबसे पहले आज का दिन है नेशनल पेपर एयरप्लेन डे। और यू नो, बचपन में हम पेपर प्लेन्स बनाकर उड़ाते थे, सिंपल सी खुशी है बट फुल ऑन हैप्पीनेस होती थी। कहते हैं कि कभी कभी छोटी छोटी चीजें ही जिंदगी जीने का मकसद बन जाती हैं, मेमोरीज बन जाती हैं, दो स्मॉल स्मॉल हैप्पीनेस, यू नो, उनको संजो कर रखें और उसके साथ अपनी जिंदगी आप जिएं। और खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें, वैसे आज है नेशनल ब्लूबेरी चीज़ केक डे। अगर आप खाना चाहते हैं क्रीमी चीज़ केक विद द ब्लूबेरी टॉपिंग, देन यमी, सुनते ही एक क्रेविंग स्टार्ट होती है और स्वीटनेस डबल हो जाती है, क्योंकि आज है नेशनल चेरी डिजर्ट डे। और चेरी पाइज, केक्स, डिजर्ट्स, आज चीट डे ऑफिशियली अलाउड है, जरूर खाइएगा। और इसके साथ साथ आज है बहुत प्यारा सा दिन, नेशनल सॉरी डे। कभी कभी एक सिंपल सी सॉरी अपने रिश्तों को बचा सकती है। और आई एम नॉट सरप्राइज कि आप में से किसी ने भी मुझे ऑन एयर आकर ये नहीं कहा कि आपने किसी को सॉरी बोला है अब तक, या आपने ये भी नहीं कहा कि आपके अंदर ईगो है। लेकिन आपके जब कॉल्स नहीं आए हैं तो मैं समझ गई हूँ कि क्या मुसीबत है आपकी ज़िंदगी में। एक तो आप ओपनली आके कहना नहीं चाहते और दूसरी बात है आपके अंदर शायद ईगो हो सकता है, राइट, वन ऑफ दोज टू थिंग्स। तो डेफिनेटली अगर आप खुल के बोल सकते हैं, आप डेफिनेटली, आप में हिम्मत है, आप बता सकते हैं मुझे, तो ज़रूर बताइएगा कि क्या कभी आपने जिंदगी में सॉरी बोलकर अपना रिश्ता बचाया है, या सॉरी बोलने में क्या आपको तकलीफ होती है, क्या आपका ईगो बीच में आता है सॉरी बोलते बोलते। आपको अगर एक चांस दिया जाए तो आप किसे सॉरी बोलना चाहेंगे, चलिए ये भी बता दीजिए। आई मेक इट सिंपल फॉर यू कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी को सॉरी बोलना चाहें, कौन होगा वो पर्सन, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई कैब ली और गलती से आपका मूड खराब था और आपने कुछ यू नो ऊंची आवाज़ में बात कर ली किसी के साथ, तो ये कह सकते हैं कि मैंने किसी से ऊंची आवाज़ में बात की थी, आई वॉज इन अ कैब एंड आई रियली वॉन्टेड टू मीट दैट पर्सन एंड से सॉरी। किसी बच्चे को कुछ कह दिया गुस्से में बच्चों पे तो मतलब हम सोचते हैं कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बच्चों को कुछ भी कह सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं। तो भाई बच्चों को अपनी ये सारी प्रॉब्लम से जरा साइड रखें। इफ यू आर हैविंग अ मेस इन योर लाइफ, आपका मैस आपके बच्चों पर नहीं जाना चाहिए। आई एम प्रीटी क्लियर अबाउट दैट। तो अगर आपने कभी ऐसा कह दिया तो डेफिनेटली बच्चों के सामने तो क्या ईगो, उनको जाकर सबसे पहले आप सॉरी बोले। तो एक सिंपल सा सॉरी जो है रिश्तों को बचा सकता है। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम यू। ओपनली आइए और बताइए मुझे कि आप सॉरी वर्ड को कैसे अपने जिंदगी में इस्तेमाल किया है, सबसे अच्छा सॉरी क्या रहा है जिसने आपके रिश्तों को बचाया है, या आपके अंदर ईगो है और आप सॉरी नहीं कह पाते। से इट टू अस ऑन एयर 416-593-0055। और फिलहाल चलते हैं एक बहुत प्यारे से गाने की तरफ। फिल्म का नाम है कॉकटेल 2। ये लेटेस्ट गाना है, आज से हमारे शो में एंट्री कर रहा है। मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMRFM 101.3 स्टूडियो का नंबर जिस पर आप कॉल करेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे अपने व्यूज के साथ, अपने कमेंट्स के साथ। 416-593-0055, दैट्स 416-593-0055। गुड आफ्टरनून।

0: त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलिनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 9054586808
1: और विजिट pujahut.com।
0: जय श्री राम। वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट। स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का। फ्राइडे, सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली, स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26। 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली, वड़ा, स्पाइसी अरोमेटिक करीज एंड मोर। अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे। डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर। मद्रास रेस्टोरेंट, 9057896600। That's 9057896600। इस तेज रफ्तार जिंदगी में लीजिए एक लवली ब्रेक। चाहे बैक होम जाना हो या करनी हो दुनिया भर की सैर, अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बनाइए लवली विद लवली फेयर्स। वेकेशन पैकेजेस, टूर्स या फ्लाइट्स, लवली ट्रैवल्स इज ऑलवेज रेडी टू मेक योर ट्रिप मेमोरेबल एंड अफोर्डेबल। कहीं और से टिकट बुक करने से पहले एक बार लवली फेयर जरूर चेक करें। लवली ट्रैवल्स, 80 मैरिटाइम बुलेवार्ड, यूनिट नंबर 54 इन ब्रैम्पटन। कॉल 9054585300, 9054585300।
2: वीरे, वधिया फर्नीचर ली किथे जावा?
3: भाई, चार लोकेशन तो देर से वावा, बस ऐसे करके ही मैं ता मिड्डा फर्नीचर ते ही जावा।
4: लेटेस्ट डिजाइन एंड हाई एंड फर्नीचर विद बेस्ट सर्विसेज, मार्केट दे प्राइस नालों 10-30% सस्ती प्राइस दा दावा कर देने।
5: मिड्डा फर्नीचर आओ, घर दफ्तर नु सजाओ। ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, मिसी सागा ते कैम्ब्रिज लोकेशन ते आओ ता सही,
4: आजमाओ ता सही, अपना बनाओ ता सही। मिड्डा फर्नीचर, कॉल करो 416-901-2810, 416-901-2810, मिड्डा फर्नीचर।
0: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस, इम्प्रेस, इम्प्रेस।
6: शॉन एक्सप्रेस, सिंपली गोल्ड, रेट्रो स्टाइल, ओल्ड

0: अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
2: Shagan ka din chadhega, sajna ghar aayenge, toli lekar jayenge, सजेगी शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
3: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165. Hum honge aapke
1: saath hamesha. आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3. शॉन एक्सप्रेस म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस इम्प्रेस इम्प्रेस. शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया. This part of the show is sponsored by Win Lifetime. क्या आप भी चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम? तो Win Lifetime लेकर आए हैं ट्रेडिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, बस 90 मिनट रोजाना. फ्री सेमिनार एवरी सैटरडे एट 1 PM इन मिसिसागा. लिमिटेड सीट्स बट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज. कॉल 905-206-1008 और विजिट winlifetime.com. मद्रास रेस्टोरेंट, स्वाद स्वैग और साउथ का तड़का. फ्राइडे सैटरडे और संडे एंजॉय करें ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट ओनली 20-26. एंड KCDL कंस्ट्रक्शन ग्रुप, लीगल बेसमेंट कंस्ट्रक्शन से लेकर फुल होम रेनोवेशन, सेपरेट साइड एंट्रेंस, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एस्फाल्ट पेविंग, रीसर्फेसिंग कॉन्क्रीट, इंटरलॉकिंग एंड मच मोर. कॉल 647-766-4335, 647-766-4335.

0: आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे, जितने इस पेड़ के फल थे पसे दीवार गिरे। मुझको गिरना है तो मैं अपने ही कदमों में गिरूं, जिस तरह साया ये दीवार पे दीवार गिरे। इन्हीं अशार के साथ आगाज कर रहे हैं आज के इस खास सेगमेंट का, और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। पाकिस्तान ने इसराइल से दोस्ती करने और उसे देश की मान्यता देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी मौलिक विचारधारा से समझौता नहीं कर सकता। आसिफ ने कहा, हम उन लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं जिनकी बात पर एक दिन के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान दुनिया का शायद इकलौता देश है जिसके पासपोर्ट पर लिखा होता है कि ये इसराइल के लिए मान्य नहीं है। इससे पाकिस्तान का रुख पूरी तरह साफ है और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। देश की राजधानी दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक खत्म हो गई है। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने हॉर्मूज का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा, ईरान की तरफ से हॉर्मूज स्ट्रेट बंद किए जाने का असर अब तेल और ऊर्जा सप्लाई पर दिखने लगा है। क्वाड देशों का कहना है कि समुद्री रास्ते खुले रहना जरूरी है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी MQ-9B ड्रोन को मार गिराया और ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसे एक लड़ाकू विमान पर भी फायरिंग की। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स यानी IRGC ने कहा कि ईरानी फोर्स ने कारकी-4 ड्रोन और घुसपैठ करने वाले F-35 लड़ाकू विमान पर कार्रवाई की। चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका युद्ध विराम का उल्लंघन करता है तो ईरान की जवाबी कार्रवाई करने का ईरान को हक है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया की ताकतें अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए ढाल नहीं बनेंगी और अमेरिका के पास इस क्षेत्र में अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं रहेगा। तो अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार होंगी भारत से जुड़ी हुई खबरें।
1: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: जी दोस्तों 905-206-1008 ये नंबर है विन लाइफ टाइम का और ये नंबर सही मायने में आपकी जिंदगी बदल सकता है. कैसे जाने के लिए यहां से एक्सपीरियंस ट्रेडर एंड ट्रेनर राफे जी हमारे साथ जुड़ेंगे. राफे जी आपका स्वागत है मस्ती की रेलगाड़ी पर. कैसे हैं आप?
2: ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच. गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स.
1: गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे राफी जी. और बहुत सारे लोग जो आपके सेमिनार्स में जाते हैं उस हवाले से भी बात करेंगे. बड़े हैप्पी होकर आते हैं और बड़े अच्छे उनके बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं विन लाइफ टाइम के लिए. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेडिंग करी हुई है और उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा ट्रेडिंग करने से. तो मैं चाहूंगी कि आज हम उन लोगों को बताएं कि क्या गलती करी, क्या उन्होंने नहीं किया जिस वजह से ट्रेडिंग उनके लिए अच्छी नहीं साबित हुई और डेफिनेटली उन्होंने विन लाइफ टाइम का रुख नहीं किया है अभी. तो मैं चाहूंगी कि बताएं कि क्या गलती हम कर देते हैं कभी कभी ट्रेडिंग में.
2: प्राइमरली दो मेन चीजें हमने देखी हैं जो कुछ स्टूडेंट्स आते हैं किसी और तरफ से जिनका थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था. एक तो होता है कि सीख उनसे रहे होते हैं जो प्रोफेशनली ये काम नहीं करते. तो हमारे एक कहावत होती है कि नीम हकीम खतरा जान, के आपको कुछ आधा पता होता है आधा नहीं पता. आपको ट्रेडिंग में किसी ने डाल दिया, आपको पता ही नहीं था कि हुआ क्या और आपका नुकसान हो गया. नंबर टू, आपने ट्रेडिंग अकेले की, किसी सुपरविजन के बैठ के नहीं की. हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, दो ऑफिसेज हैं, 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट हैं. आज भी सुबह 9:35 पे सेशन शुरू हुआ और 9:45 पे हमारे सीईओ ने कहा कि आप लोग सारे घर जा सकते हैं और टारगेट पूरा हो गया है.
1: अच्छा.
2: तो हम लोग इसलिए बकायदा प्रोफेशनल तरीके से करते हैं. ऐसे नहीं है कि कहीं आपको किसी रेस्टोरेंट में बैठ के ट्रेडिंग सिखाएंगे. बकायदा क्लासेस होती हैं, बकायदा सॉफ्टवेयर है. तो इट्स नॉट ए वन मैन शो. तो ये दो गलतियां मोस्टली करते हैं कि सुने सुनाए किसी ने कहा ट्रेडिंग में पैसे डाल दें, ऐसे नहीं होता. नंबर टू, ट्रेडिंग में हम लोग कहते हैं अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करते.
1: वाओ, क्या बात है. तो अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करने, आर देयर सम कंपनीज हु आर हेल्पिंग अस ग्रो आवर बिजनेस?
2: जी एब्सोल्युटली. बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पास बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो हाफ अ मिलियन डॉलर नॉर्मली अवेलेबल पड़ा होता है. वो कोई रिस्क नहीं है सारे का, सिर्फ उनको ट्रेडर्स चाहिए जो सॉफ्टवेयर जानते हो. तो वो सारे का सारा रिस्क वो लेंगे और आप रिवॉर्ड आपको देंगे.
1: दैट्स अमेजिंग. तो राफी जी, जो आपका सेमिनार हो रहा है बिल्कुल फ्री सेमिनार दिस सैटरडे, उस हवाले से बताए हमारे लिसनर्स को कौन कौन इसमें आ सकता है और अभी कितनी सीट्स अवेलेबल है हमारे लिसनर्स के लिए.
2: लेकिन लास्ट टाइम सेमिनार किया था दूसरी लोकेशन में, तो हमने कहा था अपने पिकनिक चेयर रखे हैं साथ गाड़ी में, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी उस वक्त भी. तो सेम हो जाता है, ओवरफ्लो ओवर क्राउड हो जाता है. लेकिन हम हर सैटरडे को सेमिनार करते हैं, तो कोई भी आ सकता है किसी भी बैकग्राउंड से. You're never too, young to start, never too early to start. कभी भी आएं, आपको ऐसी opportunity हर हफ्ते सेमिनार के साथ मिलती रहेगी.
1: Wonderful. तो दोस्तों 10 नंबर के फासले पर है ये opportunity. 905-206-1008, that's 905-206-1008, winlifetime.com. Right away call करिए और Saturday के सेमिनार के लिए अपनी सीट बुक करें. Thank you, Rafi जी. फिर आपसे जुड़ेंगे. All the best and take care.
2: Thank you. Take care.
3: Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media.
4: वेलकम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. और अब जान लेते हैं भारत से जुड़ी हुई खबरें. केंद्र सरकार ने देश की आबादी में हो रहे असामान्य बदलाव की स्टडी के हाई लेवल कमेटी का गठन किया है. ये कमेटी जो है इस बदलाव पर अध्ययन करेगी. जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्सपोस्ट में कहा, ये कमेटी अवैध घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे जनसंख्या में बदलाव का आकलन करेगी, साथ ही धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य बदलाव के पैटर्न की स्टडी करके समाधान भी पेश करेगी. उन्होंने लिखा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाला असामान्य जनसंख्या बदलाव किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए बड़ी चुनौती है. डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गए. वे 30 दिन की पैरोल पर आज शाम 6:30 बजे रोहतक की सुनारिया जेल से निकले और करीब 9:15 बजे सिरसा डेरे पहुंचे। उनके काफिले में टोयोटा लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर लेजेंडर जैसी 8 महंगी गाड़ियां शामिल थीं। साध्वियों के यौन उत्पीड़न में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम की ये 16वीं पैरोल या फरलो है। इस साल के पहले 5 महीनों में ही वे दूसरी बार जेल से बाहर आए हैं। जनवरी 2026 में उन्हें 40 दिन की पैरोल मिली थी और फरवरी में ही वापस जेल लौटे थे। वर्ष 2017 में सजा होने के बाद डेरा प्रमुख को इससे पहले 16 बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। भारत के उत्तर पश्चिम में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर में दिल्ली, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में उड़ीसा और तेलंगाना भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र और सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में से लगे हुए हिस्से, छत्तीसगढ़ में गर्मी का सबसे खतरनाक दौर चल रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के बांदा और विदर्भ का ब्रह्मपुरी जो है वो सबसे ज्यादा गर्म रह रहा है। यहाँ तापमान लगातार 46 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। छतरपुर का मध्य प्रदेश में जो आता है खजुराहो 47 डिग्री के साथ तीसरे नंबर पर और नौगांव जो है चौथा सबसे गर्म शहर रहा है। और बेसब्र होकर मैदानी इलाकों में भारत इंतजार कर रहा है मॉनसून की फुहारों का। पंजाब में 8 नगर निगम, 75 नगर कौंसिल और 20 नगर पंचायतों के लिए मंगलवार को वोटिंग हुई। सुबह 8 बजे शुरू हुई वोटिंग, शाम 5 बजे तक चली। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक 5 बजे तक 61% वोटिंग हुई थी। हालांकि अभी आंकड़े में बदलाव हो सकता है। वोटिंग ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से हुई। अब 29 मई को रिजल्ट्स आएंगे। वोटिंग के दौरान कई जगह हिंसक झड़पें हुई। पटियाला के समाना में पुलिस और भीड़ में पथराव हो गया। पुलिस ने भी भीड़ पर पत्थर मारकर लाठीचार्ज किया। हवाई फायरिंग की भी खबर है। इस दौरान एक युवक को करंट भी लग गया। लुधियाना के रायकोट में कांग्रेस कैंडिडेट के हाथ पैर तोड़ दिए गए। बठिंडा में हवाई फायरिंग की गई। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और समुद्री जहाजों की सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप हो गई है। इसका सीधा और बड़ा असर अजमेर की प्रसिद्ध बकरा मंडी पर पड़ा है। इस तनाव की वजह से अजमेर के जो खाड़ी देशों में होने वाला बकरों का एक्सपोर्ट था वो पूरी तरह से रुक गया है। नतीजतन बकरीद के पहले जो बकरे दुबई, ईरान और मस्कट जैसे देश के बाजारों में 4 लाख रुपए तक की भारी भरकम कीमत पर बिकते थे, उनकी कीमत अब गिरकर महज 1.5 लाख रुपए तक रह गई है। विदेशी खरीदार न मिलने से स्थानीय व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अजमेर मंडी के कारोबारियों के मुताबिक बकरीद के सीजन के दौरान यहाँ महज 15 दिनों के भीतर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर होता था, लेकिन इस बार युद्ध के हालात की वजह से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का सीधा नुकसान हो चुका है। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने आज सुबह मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। ये कदम उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद उठाया है जो उनके खिलाफ दर्ज कांतारा फिल्म के एक सीन की मिमिक्री केस में दिया गया था। कोर्ट ने अप्रैल में उन्हें 4 हफ्ते के भीतर मंदिर जाकर दर्शन करने का आदेश दिया था। रणवीर सिंह का ये मंदिर दौरा ऐसे समय में हुआ है जब एक दिन पहले ही फिल्म फेडरेशन ने फिल्म डॉन 3 को छोड़ने के कारण उनके खिलाफ असहयोग निर्देश जारी कर उन्हें बैन कर दिया था। रणवीर सिंह आज सुबह ही मैसूर पहुंचे। इससे पहले सुबह जल्दी उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेता ने किसी वीआईपी सुविधा का इस्तेमाल नहीं किया। वो एक आम श्रद्धालु की तरह कतार में खड़े हुए और देवी चामुंडेश्वरी के दर्शन किए। तो देखिए, सितारे जब गर्दिश में होते हैं तो ये हालात बनते हैं जिस हालात से इन दिनों रणवीर सिंह गुजर रहे हैं। तो शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक।
3: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
5: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Farq aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
3: 2970 Drew Road, Suite
5: 214B,
3: Mississauga.
5: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
6: Sanjeev Puri of Star Life Insurance and Investment Inc. एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. He can shop around for you for the best plans of insurance that will suit your budget and needs. Sanjeev Puri insurance plans में तो माहिर है ही, लेकिन high risk insurance plans के best rates दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को blood pressure, diabetes, heart attack, bypass surgery, liver या kidney के issues हो या insurance company ने आपकी insurance decline की है, तो Sanjeev Puri को आप call करेंगे free quote के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप insurance policy के बहुत high premium pay कर रहे हैं, तो policy review करवाने के लिए भी संजीव पुरी
7: 416-922-5263
3: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3. शॉन एक्सप्रेस म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस.
1: बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारा साथ देने के लिए एक बार फिर से दिस आफ्टरनून ऑन शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी CMR FM 101.3. अ बिग हेलो टू आवर सोशल मीडिया फैंस एज वेल. कहते हैं दोस्तों कुछ मुलाकातें बस मुलाकात नहीं होती, कुछ मुलाकातें बस मुलाकात नहीं होती, वो दिल की कहानी बन जाती हैं. और कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पहली नज़र में ही दिल में उतर जाते हैं. फिर से बताती हूँ, कुछ मुलाकातें बस मुलाकातें नहीं होती, वो दिल की कहानी बन जाती हैं. और कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पहली नज़र में ही दिल में उतर जाते हैं. दोस्तों अब वक्त है उस गाने का जिसने प्यार को एक बड़ा ड्रीमी सा एहसास दिया. फिल्म रेस का सुपर हिट ट्रैक आ रहा है मस्ती की रेलगाड़ी पर पहली नज़र में. और इस गाने को अपनी खूबसूरत सोलफुल आवाज दी थी आतिफ असलम ने. और स्क्रीन पर दिखी थी केमिस्ट्री ऑफ सैफ अली खान एंड बिपाशा बासु. कहते हैं दोस्तों कि पहली नज़र का प्यार अक्सर खास होता है. पहली नज़र का प्यार अक्सर खास होता है. दिल चुप रहता है मगर एहसास बोलता है. कभी एक मुस्कान, कभी एक नज़र और इंसान पूरी जिंदगी के लिए किसी का हो जाता है. तो आइए दोस्तों साथ मिलकर इंजॉय करते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक मस्ती की रेलगाड़ी पर.

0: एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: जी दोस्तों, आपको ऐसा ही साथ चाहिए किसी हमसफ़र का जो हमेशा हमेशा आपका साथ निभाए। और जब बात आती है डेट्स की, तो डेट आपका साथ ना निभाए, इसीलिए आपको एक टीम चाहिए जो आपका साथ निभाए। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। डेट आपको बिल्कुल नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। बड़ा छोटा सफ़र होना चाहिए आपका और डेट का साथ साथ। मैक्सिमम डेट रिलीफ की जब हम बात करते हैं, जब कर्जे के बोझ की बात करते हैं, तो उसके बाद होती है हमारी एक नई फाइनेंशियल स्टार्ट। हमारे साथ जुड़ने लगी हैं आयशा मुनव्वर, जो रिनाउंड इंसॉल्वेंसी एंड क्रेडिट काउंसलर हैं, और आपको बताएंगी कि कैसे सही प्लानिंग और लीगल ऑप्शंस के थ्रू आपको मिल सकता है मैक्सिमम डेट रिलीफ एंड अ पीस ऑफ माइंड। नंबर नोट करें 416-428-2165। आयशा जी, वेलकम टू द शो।
3: थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी ऑन एयर। सबसे पहले तो मैं अपनी सर्विसेज के बारे में बता दूं कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो कंज्यूमर प्रपोजल्स, लमसम प्रपोजल्स, इंसॉल्वेंसी काउंसलिंग, क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज, इसके अलावा जो है बैंक्रप्सी में भी हम हेल्प आउट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बैंक्रप्सी जो है वो आपकी फर्स्ट ऑप्शन हो, दैट कैन बी ऑलवेज अ लास्ट ऑप्शन। देर आर ऑप्शन जिसमें आपको बैंक्रप्सी नहीं करनी पड़ती और क्रेडिट भी जल्दी इस्टेब्लिश हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रिव्यू करते हैं, असेस करते हैं, देखते हैं आपकी एलिजिबिलिटी किस चीज में है, कौन सी चीज का आपको फायदा हो रहा है, क्योंकि हर पर्सन की ऑप्शन जो है वो सारी नहीं हो सकती। सो डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंसेस, डिपेंडिंग ऑन योर एसेट्स एंड एवरीथिंग, वी हैव टू फर्स्ट रिव्यू एंड सी एंड वी हैव टू एडवाइज यू। और उसके बाद फिर हमें वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी होती हैं। हम वन एंड वन आपके बिहाफ पर जो है वो बैंक्स के साथ नेगोशिएट करते हैं, सेटल करते हैं आपके लिए मैक्सिमम डेट रिलीफ। और उसमें यह है कि आपके जो एसेट्स हैं उनको भी लीगली प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आपका घर हो गया, गाड़ियों हो गई बल्कि कारोबार हो गया, इसके अलावा RRSP, RESPs हो गए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सेव रहती हैं। और एक ऐसी ऑफर बैंक्स को ऑफर की जाती है जो कि इजीली वो एक्सेप्ट भी कर लें और आपके एसेट्स को टच ना करें। और उसमें कलेक्शन कॉल्स रुक जाती हैं, इंटरेस्ट रुक जाता है, छोटी पेमेंट्स बन जाती हैं मैक्सिमम टाइम पीरियड की, तो आप इजीली उसको जो है वो मैनेज कर लेते हैं। और इसके अलावा जो है अपॉइंटमेंट्स आर ऑल फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल, व्हाट यू कैन डू, आप कॉल करके अपॉइंटमेंट मेरे साथ रख सकते हैं। वेरियस लोकेशंस हैं, ईजी टाइमिंग्स हैं हमारी, लाइक फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, लेट इवनिंग अपॉइंटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, वीकेंड की भी अवेलेबल हैं, बट बाय अपॉइंटमेंट ओनली। और उसमें यह कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट पर्सन और राइट पीपल जो है उससे एडवाइस ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप गलत हाथों में अपने फाइनेंसेस दे देते हैं तो कई दफ़ा इजी सिचुएशन जो होती है उसको भी कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, और वो फिर कई दफ़ा जो है बैंक्स जो है उनके अप्रूवल्स जो हैं वो मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए डोंट फॉरगेट, यू नो द बैंक्स हैज़ टू गिव एन अप्रूवल एंड इट हैज़ टू बी अ फेयर और जो कहते हैं लिजिमेट जो आपकी होनी चाहिए ऑफर, के जिसको वो एक्सेप्ट कर लें और प्रॉब्लम ना बनाए। बट एनीवेज, फॉर मैक्सिमम डेट रिलीफ यू कैन गिव अस अ कॉल। माय फोन नंबर इज जी 416-428-2165, दैट इज 416-428-2165। थैंक यू वेरी मच।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जी हमसे जुड़ने के लिए। 416-428-2165, 416-428-2165 ये है नंबर जिस पर आप बात करेंगे और सही गाइडेंस लेंगे डेट को अपने जिंदगी से बाहर करने के लिए। आयशा मुनव्वर, आप हैं शालिनी के साथ ऑन CMRFM 101.3 शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। और आज का टॉपिक मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और टॉपिक ये कहता है कि आज है नेशनल सॉरी डे, और आपसे मेरा सवाल ये था कि आप लोगों ने क्या किसी अपने को सॉरी बोलकर अपना रिश्ता बचाया है अपनी ज़िंदगी में। दिस वॉज माई क्वेश्चन। या ये भी आप खुलकर बता दीजिए कि क्या सॉरी बोलने में आपका ईगो बीच में आता है कि नहीं। आप इतना ओपनली बता सकते हैं कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट ट्राई कीजिएगा। अगर आप खुले मंच पर आकर अपने व्यूज दे सकते हैं सॉरी वर्ड के हवाले से, कि सॉरी वर्ड कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में. व्हेन वी से सॉरी, डू वी मीन इट और नॉट, ये बहुत बड़ी बात है. कभी हम सॉरी कह देते हैं, वी डोंट मीन इट. कुछ लोग इनडायरेक्टली सॉरी कहते हैं, किसी की मदद कर देंगे, किसी को आपने भला बुरा कह दिया हो, भला बुरा कह दिया हो, उसके बाद उसकी मदद करने पहुंच जाएंगे, उसको आप सॉरी नहीं कहेंगे, इनडायरेक्टली उसके लिए कोई चीज़ बाय करके ले जाएंगे. और क्या हम ये पूछ लेंगे उससे कि अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी, डेफिनेटली उसको बुरा लगा होगा अगर आपने उससे ऊंची आवाज़ में बात की है. तो इस हवाले से जरूर बताइएगा अपने थॉट्स 416-593-0055. और कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी का जो क्विज है स्पॉन्सर कर रहे हैं, और जो विनर है, एक विनर हम निकालेंगे, उनको $100 का गिफ्ट मिलेगा कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी की तरफ से. तो आइए आपको इस हवाले से भी अपडेट दे दें. कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी आपके घर या बिजनेस के लिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी, रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स आप ले सकते हैं. फ्री बारबेक्यू है विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल. 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन में लोकेटेड है. टॉप क्वालिटी मटेरियल, स्टाइलिश डिजाइन, कंपेटिटिव प्राइसिंग है. नंबर नोट करें 416-831-4790. दैट्स 416-831-4790. देओल ट्रैवल की लेटेस्ट डील्स आपको बता दें, दिल्ली से टोरंटो जा सकते हैं द मंथ ऑफ जून वन वे 799 में. दिल्ली से दिल्ली या मुंबई से आप टोरंटो आ सकते हैं जून से अगस्त तक, राउंड ट्रिप लगा है 1369. सितंबर से अक्टूबर राउंड ट्रिप लगा हुआ है टोरंटो टू अमृतसर या टोरंटो टू दिल्ली, और ये जो राउंड ट्रिप है दिस इज फॉर 1699. सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, ब्रैम्पटन एंड इटोबिको. देओल ट्रैवल 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 एंड 588-4200. अगले गाने की तरफ आपको लिए चलते हैं, और ये गाना आप तक पहुंचा रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स. आप वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स यहां से ले सकते हैं. और विंडोज एंड डोर्स की हम बात करें तो इतनी अमेजिंग विंडोज एंड डोर्स हैं, जहां पर सिक्योरिटी भी है, लुक्स भी हैं, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, एवरीथिंग टुगेदर. फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है. ऑल ओवर ऑन्टेरियो सप्लाई करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और इंस्टॉलेशन भी इनकी खुद की टीम करती है. फ्रेंचाइज ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. यश विंडोज एंड डोर्स में बात करें इस नंबर पर 416-732-3600. दैट्स 416-732-3600. आई गेस वी हैव अ फ्यू कॉलर्स विद अस, और उनसे करते हैं बातचीत सॉरी वर्ड के बारे में. जी आपका स्वागत है, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं?
4: रिकेया.
2: ओके बताइए क्या कहना चाहती हैं.
4: तो आपका टॉपिक अभी आया था सॉरी के ऊपर, कि हम तो सॉरी कहते हैं लेकिन कभी कभी होता है कि हम तो सॉरी कह रहे हैं, वी मीन इट, वी जेन्युइन, हम चेंज भी हो रहे हैं. लेकिन दूसरा वाला अगर कोई सॉरी कह रहा है, देयर जस्ट डूइंग अ टच अप जॉब, कि बस आगे बढ़ो, कोई इसमें रेजोल्यूशन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, बिहेवियर चेंज नहीं है. सो देन यू आर स्टक बीइंग जेन्युइन ऑन वन साइड एंड नॉट जेन्युइन ऑन द अदर साइड. सो समटाइम्स इट्स फ्रस्ट्रेटिंग, हम इस तक आ गए कि वी जस्ट फील लाइक इट्स नॉट इवन यूजफुल एनीमोर.
2: ओके सो यू फील दैट इफ वी डोंट मीन इट वी शुडंट से सॉरी, वी शुड से सॉरी ओनली इफ इट इज अ जेन्युइन सॉरी. Is that right?
4: Absolutely. And it should be both ways. It shouldn't be just for a patch-up job. Yes. It should be genuinely, you recognize what mistake you've made. You've made efforts to change it and improve it and then resolve the issue and then mean it.
2: Wonderful. And have you ever saved any relationship in your life by saying sorry?
4: Yes, I have, for sure. Definitely.
2: Yeah? Okay. Wonderful. Thank you so much for joining us.
4: Thank you.
2: So nice to have you. You're most welcome. जी 416-593-0055. सॉरी लव्स कितना इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में और इसने क्या क्या मैजिक किए हुए हैं आपकी लाइफ में. लेट्स हियर इट फ्रॉम यू. नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे. वेलकम, कौन है हमारे साथ? जी 416-593-0055. योर ऑन एयर, गो हेड प्लीज. जी आप लोग कॉल कर सकते हैं अगर कोई भी आपके कमेंट्स आप देना चाहें 416-593-0055। और हम चल रहे थे एक बहुत ही प्यारे से गाने की तरफ, और गाना हमने लिया है इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। बहुत प्यारा सा गाना है। कहते हैं कि कुछ रिश्ते बादलों जैसे होते हैं, कुछ रिश्ते बादलों जैसे होते हैं, पास होकर भी नहीं ठहरते, और कुछ प्यार ऐसे जो दिल में तो बस जाते हैं लेकिन किस्मत में नहीं होते। दोस्तों एक ऐसे ही नगमे का वक्त है जिसकी मिठास आज भी दिलों को छू जाती है। तलत महमूद और लता मंगेशकर की सोलफुल आवाज में सजा ये टाइमलेस क्लासिक इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा। आपकी नजर करेंगे फिल्म का नाम है छाया, जिसने मोहब्बत को एक अलग ही अंदाज में बयां किया। मस्ती की रेलगाड़ी पर

0: अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812। वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट। स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का। फ्राइडे सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26। 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली वड़ा, स्पाइसी अरोमेटिक करीज एंड मोर। अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे। डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर। मद्रास रेस्टोरेंट, 905-789-6600। दैट्स 905-789-6600।
1: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
2: मस्ती की रेलगाड़ी पर एक बार फिर से आपका वेलकम है ऑन CMRFM 101.3। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और अपॉर्चुनिटी ये है कि यूनिक ग्लोबल एडवाइजरी इंक आपके लिए लेकर आई है सुनहरा मौका। सरकार जो है आपके स्टडी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है और साथ ही रहने के खर्च के लिए हर साल लगभग 30,000 से 100,000 तक की फंडिंग देती है और इसका एक जो बड़ा हिस्सा होता है नॉन रिफंडेबल ग्रांट होता है, ऐसा पैसा जो आपको वापस नहीं करना पड़ता। तो चलिए हम अपने अगले मेहमान को आप तक पहुंचाते हैं। नागपाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे फ्रॉम यूनिक ग्लोबल एडवाइजरी इंक। नंबर सबसे पहले नोट कर लें, 437-264-3175। नागपाल जी आपका स्वागत है शो पर।
3: रिमत जी, ये मेहमान आपको सेविंग नहीं कराएगा, ये मेहमान आपको आपके अकाउंट में फंडिंग दिलवाएगा 30,000 से 100,000 की, तो ध्यान से सुने।
2: क्या बात है, अमेजिंग। तो चलिए नागपाल जी, सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी बता दें कि कौन कौन से लोग इन ग्रांट्स और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए एलिजिबल हैं।
3: हाँ जी, सो इसमें आपके पास, आप ओंटारियो में रहते हैं, चाहे स्कारबरो रहते हैं, चाहे आप नायगरा रहते हैं, आप ओंटारियो के रेजिडेंट हैं, पीआर है, सिटीजन है, या आपका स्टेटस प्रोटेक्टेड पर्सन है, मीनिंग आपका रिफ्यूजी का जो केस है वो पास हो गया है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑफ ईयर भी और ऑन ईयर भी, अगर आपकी इनकम 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे लेस कम $70,000 से कम है तो ही आपको इसका एडवांटेज है जी। अगर आपको ज्यादा इनकम है तो आपको बेनिफिट नहीं है, ऑन ईयर भी और ऑफ ईयर भी। एंड अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, हाउसवाइफ, अनएम्प्लॉयड, सिंगल मदर, आपको अच्छा बेनिफिट है और देयर इज नो एज लिमिट इन दिस। 40, 50, 60, 70 साल के आप हैं, आप स्किल डेवलप करें, गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स करें, गवर्नमेंट फीस पे करिए डायरेक्ट टू द कॉलेज। ऑन अदर हैंड, आपको लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए 30,000 से 100,000 की फंडिंग देती है, जिसका आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली हाफ पोर्शन क्या है, नॉन रिफंडेबल, टैक्स फ्री ग्रांट्स जो वापस नहीं करना होता, रेस्ट क्या है, ऑप्शनल लोन एट 0%।
2: क्या बात है, अमेजिंग। तो नंबर यहां पर फिर से बता दूं, 437-264-3175। अब नागपाल जी बताएं हमें कि ग्रांट जो पैसा वापस नहीं करना पड़ता वो कितना हो जाता है और टोटल फंडिंग कितनी बन जाती है उन फैमिलीज के लिए जो एलिजिबल है।
3: हाँ जी, सो इसमें अगर हम केस लेके चलते हैं फैमिली ऑफ फाइव का, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, फुली ऑनलाइन इजी कोर्स करते हैं, 1 ईयर का कोर्स है, असाइनमेंट्स है, एग्जामिनेशन नहीं है, अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है और इजी टू पास है। अब इसमें इन दोनों को अप टू $100,000 की फंडिंग मिलती है, फैमिली ऑफ फाइव, मतलब तीन बच्चे आपके चाहे छोटे हैं चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं, दे आर काउंटेड एज डिपेंडेंट। तो अब 100,000 जो आपको मिला आपके खातों में, इसमें वाइफ के खाते में जो गया ये वाला पैसा, इसमें से $50,000 आज की डेट में ग्रांट्स है, जो रेस्ट 50,000 है वो ऑप्शनल लोन है, 0% है। और आपने एक साल का कोर्स है तो 1.5 साल बाद उठाना स्टार्ट करना है, उस टाइम पे ब्याज दर क्या है, सिर्फ 2.5% पूरे साल का। तो आप अगर 4 किस्तों की 1 किस्त बना रहे हैं, हमारे पास ही आ जाए, ग्रांट ले जाए, क्यों आपने बाकी सारा काम, आप स्किल भी डेवलप कर रहे हैं, नया करियर भी आपको मिलता है, नया करियर भी मिलता है ना, और कोई कैच नहीं है इसके अंदर।
2: वंडरफुल। तो अब ये बताएं नागपाल जी कि आपकी फीस कितनी होती है, कब देनी होती है, क्लासेस के हवाले से क्या क्लासेस फुली ऑनलाइन होती हैं, कोर्स में कोई फेल होता है कि नहीं, इजी टू पास होते हैं कोर्सेज।
3: हाँ जी, इजी है कोर्स है, हम उन्हीं कोर्सेज में डील करते हैं, लाइक टोटल 8-10 कोर्सेज हम डील करते हैं जो आसान है. अगर आप हमने आपको वही ऑप्शन देने हैं, साथ में हमारे पास ऑप्शन वो भी हैं जो मुश्किल कोर्स है, सच एज HVAC प्लम्बिंग, वो भी गवर्नमेंट फंडेड है. पर ज्यादातर क्लाइंट्स चूज करते हैं वो कोर्सेज जो फुली ऑनलाइन है, ईजी है, 2-3 घंटे वो क्लासेस लगा रहे हैं. कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो सेल्फ स्टडी, जिसमें टीचर नहीं होता, वो और भी ईजी हो जाते हैं. तो आप गवर्नमेंट की फीस पे करते हैं कोर्स की, और साथ में आपको फंडिंग आपके अकाउंट में देती है, एज लिमिट कुछ है नहीं, क्रेडिट चेक गवर्नमेंट करती नहीं है इस चीज में. ये जो आपको फंडिंग मिल रही है कोलैटरल फ्री सिक्योरिटी फ्री फंडिंग होती है $30,000 to $100,000 की, और इसमें से मेजर पोर्शन आज की डेट में नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स है. 2 महीने बाद 1 अगस्त के बाद सारा का सारा गवर्नमेंट लोन करने जा रही है. मतलब ग्रांट नहीं मिलेगी तो अभी एनरोल करें, इतने लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आप पीछे ना रहें. आप अपने 5 दोस्तों को फोन लगाओ, 3 ने करवा लिया होगा, अपने स्किल डेवलप कर रहे होंगे, एडमिशन कर रहे होंगे, फंडिंग भी आ गई होगी, और 3 में से 2 ने हमसे कराया होगा.
2: ओके, वंडरफुल. अब ये बताएं इसका प्रोसेस क्या होता है, क्विकली बता दें, और गवर्नमेंट फंडिंग क्लाइंट के अकाउंट में कितने समय में डाल देती है?
3: आज आपने कोर्स ज्वाइन करा तो आपके अकाउंट में कल फंडिंग नहीं आएगी. आपको पेशेंस होना चाहिए 30-90 days का. और लाइक इसमें डॉक्यूमेंट्स भी क्या लगते हैं, नोटिस ऑफ असेसमेंट, मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट. क्यों? जितनी इनकम कम है, जितनी फैमिली साइज ज्यादा है, उतनी ज्यादा फंडिंग आती है. किसके अकाउंट? मेरे अकाउंट में नहीं, आपके अकाउंट में डायरेक्ट फंडिंग आती है जी. इट्स ट्रांसपेरेंट थिंग. जैसे गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ वहां लगा देती है, एरोप्लेन में लेना हो चाहे एरोप्लेन लेना हो, चाहे यूक्रेन को सबसे ज्यादा फॉरन एड देनी हो, रेफ्यूजीज पे लगाना हो, जो गवर्नमेंट सिटीजन पे खर्च करती है, हमें लगता है यहाँ कुछ कैच होगा, वहां कुछ कैच होगा. देयर इज नो कैच इन इट. हमारी फीस काम होने के बाद, शुरू में नहीं लेते हम कोई पैसा, काम होने के बाद फंडिंग आपके अकाउंट में आती, मेरे में नहीं आती. आपने अपनी ईमानदारी से हमारी फीस देनी है $199 to $499, नो कैच, नो कमीशन, नो परसेंटेज. और उसमें आपने आज लास्ट वीक हमारे 34 फंडिंग उनके अकाउंट में गिरी थी, और अब 29 ने पैसे दे दिए हमारी छोटी सी फीस. अभी हम 4-5 के पीछे भाग रहे हैं, अब फोन नहीं उठाएंगे हमारा. एवरी वीक ऐसे ही रहता है. तो लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन, हमने किसी के पैसा नहीं रखा. तो इसलिए हमें कॉल करें, हम 7 years से बिजनेस में हैं, बहुतों को असिस्ट कर चुके हैं. नंबर हमारा नोट करें आप, ऑफिस हमारा 200 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे है, हरिटारी डेयरी पे, आप आ सकते हैं कभी भी. नंबर 4372643175. नंबर अगेन 4372643175. अभी कॉल करें आप हमें 4372643175. 437-264-3175.
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया नागपाल जी हमसे जुड़ने के लिए. फिर आपसे हम मिलेंगे बहुत जल्दी. ऑल द बेस्ट, टेक केयर.
3: थैंक यू
2: जी. इट्स 3:44 राइट नाउ. दोस्तों, फिल्म का नाम है कसूर, एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपकी नजर करेंगे. आफताब शिव दसानी और लीसा रे पर पिक्चराइज्ड, कितनी बेचैन होकर, शॉन एक्सप्रेस पर.

0: one-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined mortgage for self-employed, quick closing in 48 hours, or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry, Mukesh Chauhan hai.
2: वेल दोस्तों, मुकेश चौहान हैं आपके ट्रस्टेड मॉर्गेज ब्रोकर फ्रॉम मॉर्गेज डिलिजेंट. 20 सालों से ज्यादा के एक्सपीरियंस है इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, फॉर्मर बैंकर भी रह चुके हैं. ऐसे सॉल्यूशंस लाते हैं जिन पर आप एक्चुअली डिपेंड कर सकते हैं. अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड डेट से, सेकेंड मॉर्गेज से, इमिडिएट फंड चाहिए, तो मुकेश आपकी मदद कर सकते हैं विदाउट अप्रेजल. यू हर्ड मी राइट. एंड इन सम केसेस अप टू 85% लोन टू वैल्यू. रीफाइनेंसिंग में मदद करते हैं, डेट कंसोलिडेशन में भी मदद करते हैं. 55 एंड अबव हैं और अफोर्ड नहीं कर पा रहे मॉर्गेज, तो रिवर्स मॉर्गेज का सहारा आप ले सकते हैं. इसके अलावा आपको अगर बिजनेस लोन्स चाहिए और कैश फ्लो की दिक्कत आ रही है, वर्किंग कैपिटल अप टू $1 million की मिल जाएगी. नंबर 6475127000. मुकेश जी, वेरी वार्म वेलकम. हाउ आर यू?
3: ग्रेट ग्रेट शालिनी जी, आप कैसी हैं, आपकी टीम कैसी है? और इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्यूसडे आफ्टरनून, बिल्कुल समर का सीन है और ख्याल आप नेक हैं और जो एंजॉय कर रहे हैं, वेदर भी, आपके म्यूजिक भी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. आई एम हियर टू गिव यू मोर ऑफ मॉर्गेज अपडेट्स.
2: वंडरफुल मुकेश जी, और सवालों की झड़ी आपके लिए मेरी तैयार है. आप अभी तैयार हैं तो मैं शुरू करूं?
3: बिल्कुल, हम तैयार हैं, हथियार लेके तैयार.
2: वंडरफुल वंडरफुल. तो पहला आपसे सवाल ये है कि कैन अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बाय द हाउस विद 10% डाउन पेमेंट? ये क्या बात सही है, ये या अजूबा है या पॉसिबल है?
3: बिल्कुल, ये आपने जिस तरह से पूछा है बिल्कुल सही है फिर तो, क्योंकि अक्सर लोगों सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए डाउट होता है कि 20% डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, विच इज समहाउ राइट. बट I come across with one program जहाँ पर क्लाइंट होम ऑनर 10% से भी अपना फर्स्ट टाइम होम बाय कर सकता है, या अपना घर अपग्रेड कराना चाहे, छोटे घर से कॉन्डो से टाउन में जाना चाहते हैं, या टाउन से सेमी जाना चाहते हैं, सेमी से डिटैच या डिटैच हाउस से बड़े घर में जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दे कैन गो विद द 10% डाउन पेमेंट. अच्छा, करना 20 है मगर ये 10% क्लाइंट करेगा, बाकी 10% कोई सेकेंड मॉर्गेज नहीं है, बैंक वो आपको खुद लैंड करेंगी, कोई इसकी एक्स्ट्रा पेमेंट्स नहीं है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको होम अपग्रेड के लिए भी अप टू $100,000 तक की फाइनेंसिंग मिलेगी. घर अपग्रेड करना है, होम अपग्रेड करना है, या सेकेंड यूनिट बनाना है आपको, है ना, तो वो सारे फाइनेंसिंग मिलेगी. और सबसे बस एक दो रिक्वायरमेंट है, पहली चीज आपका क्रेडिट स्कोर 680 एंड अबव होना चाहिए, दूसरा ये कि ये मैक्स अमाउंट 1.5 मिलियन है, राइट. सो अगर ये कंडीशन फुलफिल है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, पैसे बनाते हैं, इनकम कम डिक्लेयर करते हैं, गिव मी अ कॉल, आई एम हियर टू हेल्प यू विद द 10% डाउन पेमेंट टू गेट द फाइनेंसिंग.
2: क्या बात है, अमेजिंग. 6475127000. अच्छा, अब दूसरा सवाल मेरे आपसे ये है कि घर खरीदने से पहले डू यू एडवाइस की प्री अप्रूवल लेना चाहिए?
3: बिल्कुल, आपने कहते हैं शादी से पहले कार्ड छपते हैं, राइट, तो पहले कार्ड छपते हैं, ठीक है ना, अनाउंसमेंट होती है, राइट, तो ऐसे कार्ड छपवाइए अपना. पहले प्री अप्रूवल लेटर लें मॉर्गेज ब्रोकर से, मेरी तरह किसी भी प्रोफेशनल को अप्रोच करें, लेटर लें, कंफर्म करें कितनी अमाउंट के लिए क्वालिफाई करते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, आप सिचुएशन में हैं, पता नहीं है, घर में एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड है, पता नहीं कितनी अमाउंट के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो डेफिनेटली आप किसी भी प्रोफेशनल को रीच आउट करें. मिस्टेक मत करें, जो 21-22 में काफी लोगों ने गलतियां की, ऐसी मत करें, और आप कंफर्म करें, आपका क्रेडिट चेक करवाइए, कितने इश्यूज हैं, कोई कार लोन तो नहीं है, कोई स्टूडेंट लोन तो नहीं है, कोई मल्टीपल डेट्स तो नहीं है, ये सारी चीजें मैटर करती है. घर लेना मुश्किल नहीं है, उसको बाद में रखना और उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं. तो फाइनेंस को बहुत बारीकी से लेके चलें. बीइंग माईसेल्फ आई विल हेल्प यू, तो कितनी अमाउंट के लिए आप क्वालिफाई होते हैं आप मुझे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर, नंबर 6475127000. 6475127000.
2: क्या बात है. तो मुकेश जी, अब जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की बात हो रही है और ये भी सुना है कि दे डू नॉट गेट अप्रूव फॉर द मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग अगर उनका क्रेडिट लो है या क्रेडिट उनका बैड है, तो हाउ यू कैन हेल्प इन सच अ सिचुएशन?
3: देखें, अगर हम बैंक की जो रिक्वायरमेंट देखें 680 एंड अबव क्रेडिट स्कोर की होती है, राइट, बट बी लैंड जिसमें हम बोलते हैं बी लैंडिंग बोलते हैं, क्रेडिट यूनियन बोलते हैं,
2: राइट,
3: जिसके अंदर क्लाइंट का अगर स्कोर कम भी है, लो क्रेडिट है, बैड क्रेडिट है, कंज्यूमर प्रपोजल या बैंकरप्सी है, फिर भी क्लाइंट की मॉर्गेज अप्रूव हो सकती है, राइट. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके मल्टीपल डेट्स भी हो जाएंगे, क्रेडिट का डेट्स भी हो जाएंगे, आपके पास सीआरए के ड्यूज नहीं पे किया, कोई भी आपकी एक्विटी निकालनी है घर बनाने के लिए, बेसमेंट बनाने के लिए, कोई भी पर्पज है, वो सारे काम पॉसिबल. अगर स्पेशली आपने जो सवाल किया है बैड क्रेडिट के लिए मॉर्गेज मिल सकती है, आंसर इज यस.
2: ओह नाइस, वाओ, दैट्स ग्रेट.
3: सो गिव मी अ कॉल, आई एम हियर इन
2: मिसेस मुकेश जी. इफ यू आर देयर मुकेश जी, नो तो डिक्शनरी में है ही नहीं, तो मेरे ख्याल से ये जो भी आप जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केसेस होंगे उसका आपका जवाब यस होगा.
3: डेफिनेटली बॉय, यस, मॉर्गेज अब आसान है, डोंट वरी, मुकेश चौहान है.
2: That's right. तो आप तो बिल्कुल परफेक्ट मूड में है मुकेश जी, इंजॉय योर डे. और बिल्कुल आपका नंबर यहाँ पर बता दूं दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी इंजॉय करना चाहते हैं मुकेश जी जैसे, तो अपने फाइनेंसेस को बिल्कुल परफेक्ट शेप में ले आइए, तो मॉर्गेज से बहुत कुछ हो सकता है. नंबर नोट करें 6475127000. ऑल द वेरी बेस्ट मुकेश जी, विल टॉक टू यू सून अगेन.
3: थैंक यू सो मच.
2: वेल दोस्तों, इट्स 3:52 राइट नाउ, और एक बहुत प्यारा सा गीत आपकी नजर करेंगे बहुत जल्दी. एक छोटा सा टाइनी सा स्पॉन्सर्स के मैसेजेस लेते हैं, उसके बाद वापस लौटते हैं. डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416-569-7812. गुड आफ्टरनून. आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी. अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812.
4: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी.
5: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है.
4: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपर वीजा इज डिक्लाइंड.
5: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232, 890-3232.

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
2: वेल दोस्तों, आज की जर्नी का आखिरी गाना हम तक पहुंचाया जा रहा है अजीम जी की तरफ से, और कहते हैं कि कोई भी अगर आपके घर में होम रिपेयर्स कराने हो, इंस्टॉलेशन कराने हो, इंटीरियर या एक्सटीरियर, इसके साथ किचन, बाथरूम, बेसमेंट्स में कोई काम हो, रूफ में कोई काम कराना हो, और साइडिंग्स, डेक्स, अप्लाइंसेस, किसी भी तरह की ड्राईवॉल, फ्लोर वर्क कराना हो, पेंटिंग हो, फिनिशिंग हो, अजीम जी गेट्स इट डन राइट द फर्स्ट टाइम। वेरी वेरी गुड रिव्यूज एंड ऑनेस्ट, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी हैं, और क्वालिटी वर्क डिलीवर करते हैं, दैट इज 100% गारंटीड। आपके घर जो है उसको एक सेफ हैंड्स में होना चाहिए, सो डोंट वेल, कॉल अजीम टुडे 6472808806। और चलते हैं दोस्तों एक बहुत प्यारे से गाने की तरफ। उनका नाम है वॉर, जय जय शिव शंकर, प्रभु नाम लेते हैं, और आपको आज के लिए यहीं पर अलविदा कहते हैं। कल होगी फिर से मुलाकात आपकी और शालिनी की 2 से 4 मस्ती की रेलगाड़ी पर CMR FM 101.3। और अपने बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को हजारों लाखों लोगों तक कर पहुंचाना चाहते हैं, डू गिव अस अ कॉल आफ्टर द शो, या आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं 416-569-7812। कल तक के लिए शालिनी को दें इजाजत, नमस्कार।

सुन रहे थे शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी विद शालिनी ऑन CMR FM 101.3. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल अस ऑन 416-569-7812, 416-569-7812, और ईमेल अस एट info@shawnmedia.com. Shawn Express, a Shawn Media presentation.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
3: जो हो आपके दिल के करीब,
2: जो मनाए आपके त्योहार,
3: रखे चुटकुले तैयार,
2: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
3: जहाँ मचे शायरी की धूम,
2: जो दे खबरें अप टू डेट
3: और दे ढेरों इनाम,
2: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
3: जतिन के संग
2: ऑन CMR 101.3 FM. ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.FM.
4: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
5: हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। मित्र भाइयों, स्वास्थ्य ही धन है, सेहत ही धन है। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है और जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है वही जीवन का आनंद लेता है। सेहत ही सबसे बड़ा धन है, बाकी सब तो माया है। रोग से बचने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। हर सुबह एक नई शुरुआत स्वस्थ जीवन का आधार है। अपने शरीर को मंदिर समझो और उसकी देखभाल करो। हाँ जीवेंद्र भाइयों, सेहत है तो सब कुछ है, वरना अगर सब कुछ है और सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वेंद्र भाइयों, सेहत अच्छी रखिएगा। ये हिट वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
1: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
1: डॉक्टर नील गज्जर, 735 ट्वीन एवेन्यू स्वीट 16 मिसिसागा, कॉल 289-401-0009।

0: anyone at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: घर कहीं भी लेना हो

0: Mom, Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
4: हाँ जी मित्र भाइयों, रेडियो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। ईद मुबारक फ्रॉम रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट। मित्र भाइयों, रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट पर धुरंधर सेल लगी है आप ही के लिए। जरूर पहुंचेगा 5200 डिक्सी रोड यूनिट नंबर 53 इन मिसिसागा। कॉल भी कर सकते हैं 647-765-7657। रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट .ca है वेबसाइट। सीधे चलते हिमानी जी के पास और जैसा कि हमेशा रोहित जी कहते हैं, वी डोंट मैच द प्राइस, वी बीट इट। आइए जानते हैं डिटेल में हिमानी जी से। हिमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है और ओवर टू यू। हमारे श्रोताओं को प्रमोशंस के बारे में बताते हुए आपका कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस भी जरूर बताइएगा।
5: जी, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले रेडियो सुनने वाले सभी लिसनर्स को रिच फर्नीचर की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और इसी के साथ सभी को एडवांस में ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, क्योंकि ईद का ये स्पेशल फेस्टिवल जो होता है सबके लिए बहुत खुशियों भरा त्यौहार होता है। और उसी खुशी में हमने भी कोशिश की है छोटी सी कि ईद स्पेशल, जैसे कहते हैं ना, गिफ्ट्स के फॉर्म में हमने प्राइसेस कम, जो डिस्काउंट बेसिकली लगाया है, ताकि जिसको भी ईद सेलिब्रेट करने के लिए फर्नीचर की जरूरत है या कुछ किसी को गिफ्ट करना है, वो कहते हैं ना ईदी देनी है, मुझे वैसे ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए अगर आपको कुछ चाहिए, कोई भी आइटम, पूरे स्टोर की कोई भी आइटम आप लेते हैं तो उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। एंड रोहित द यस मैन, जो हमेशा ही एक जैकपॉट लेके आते हैं डिस्काउंट्स का, तो उनके पास तो स्पेशल प्राइसिंग हमेशा ही रहती है। एंड ही इज ऑलवेज इन द स्टोर फ्रॉम 10 AM टू 8 PM। आप विजिट कीजिए। और ईद बल्कि कल है, लेकिन हम सिर्फ कल का दिन ही नहीं, हम पूरा संडे इवनिंग तक ये ईद स्पेशल डिस्काउंट्स कंटिन्यू करने वाले हैं। सो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ कल का दिन ईद है और आपको, वी अंडरस्टैंड आपको सेलिब्रेट करना है और आप कल बिजी होंगे, तो इसलिए हमने ये पूरा वीक ईद सेलिब्रेट करनी है, वीकेंड तक, संडे इवनिंग तक। और आइए आप हमारे साथ चाय और समोसे इंजॉय कीजिए और साथ में फर्नीचर की डील्स गर्मा गर्म आपको देंगे, और जिसमें आप ले सकते हैं एशले के सॉलिड वुड बेडरूम सेट्स, सोफा सेट्स, डाइनिंग टेबल्स, कॉफी टेबल्स, मैट्रेसेस, एक्स एंड चेयर्स, जो कहते हैं कंसोल टेबल्स, और भी बहुत सारी चीजें। और सोफाज में हम एक्सपर्टीज हैं, जिसमें आप सोफाज कस्टमाइज करवा सकते हैं और अपनी मनपसंद फैब्रिक या लेदर चूज करके, और साथ में अगर सेक्शनल्स आपको चाहिए, जिनको हम एल शेप सोफाज भी कह देते हैं, आप वो भी बनवा सकते हैं। और आप हमारे सेल्स रेप से बात कीजिए, वो आपको हर तरह से सेटिस्फाई कराएंगे। लेकिन ये सारी चीजें देखने के लिए आपने हमारा फ्लायर देखना है, और फ्लायर देखने के लिए आपने हमारी वेबसाइट नोट करनी है, विच इज रिट्ज फर्नीचर प्लैनेट .ca, RITZ फर्नीचर प्लैनेट .ca पे जाके आपने हमारा करंट फ्लायर सेक्शन बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि उसी में छुपी हुई है ये ढेर सारी अमेजिंग डील्स, और साथ में जो डिस्काउंट है वो तो होगा ही होगा। एंड वन मेन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी परचेज, मतलब आपको गिफ्ट मिलना ही मिलना है, कोई कुछ भी आप परचेज करते हैं उसके साथ एक गिफ्ट रिच फर्नीचर की तरफ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच। एड्रेस प्लीज नोट कर लीजिए, 5200 डिक्सी रोड मिसिसागा। फोन नंबर है 9052327489। थैंक यू जी।
4: वंडरफुल बेंद्र भाइयो, अब आपकी बारी, जरूर पहुंचेगा 5200 डिक्सी रोड यूनिट नंबर 53 इन मिसिसागा। रिट्ज फर्नीचर प्लैनेट .ca है वेबसाइट। ईद मुबारक, ईद मुबारक की जबरदस्त सेल, 647-765-7657। ये हिट वॉइस, हम है आपके दोस्त जतीन।
6: रिट्ज फर्नीचर दा मैसेज जरा ध्यान।

0: டாக்டர் நீல் கஜ்ஜர் அசோசியேட்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட்ஸ் ஃபேமிலி டென்டிஸ்ட் கேரிங் ஃபார் ஆல் யோர் டென்டல் நீட்ஸ் எக்ஸப்ட் கர் ரே ஹே பேஷன்ஸ் ஜின்கே பாஸ் CDCP யானி கி கனடியன் டென்டல் கேர் பிளான் ஹே அகர் ஆப்னே யே பிளான் ரிசீவ் நஹி கியா ஹே ஆர் ஆப் எலிஜிபிள் ஹே தோ இஸ் பிளான் மே என்ரோல் ஹோனே கே லியே விசிட் கரே CDCP வெப்சைட் CDCP கி வெப்சைட் விசிட் கர்கே என்ரோல் ஹோ ஜாயியே और कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का। बेंद्र भाइयों आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021 905-564-2021 डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स आपके फैमिली डेंटिस्ट।
1: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Jo specialized hai in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
4: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम
5: संजीव। शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है। इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232.
6: वक्त जो है वो बदल चुका था। रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना, पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था। ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे, पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं। और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का तांता शुरू हुआ, उससे पूरे FM रेडियो का समीकरण ही बदल गया। एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।
0: हाँ जी बेंद्र भाइयों, ये द वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। 30 साल पुराने पार्किंग टिकट के चक्कर में सस्पेंड हुआ ड्राइविंग लाइसेंस, हैरान करने वाली खबर। हाँ जी बेंद्र भाइयों, आज की एक ऐसी अजीबोगरीब खबर जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि सरकारी सिस्टम की सुई कब और कहाँ घूम जाए। ओंटारियो में रहने वाले एक शख्स को उस वक्त गहरा झटका लगा जब उन्हें पता चला कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस किसी हालिया गलती की वजह से नहीं, बल्कि 30 साल पुराने एक पार्किंग टिकट की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। यह मामला है हैमिल्टन के रहने वाले डेविड जी का। हाल ही में जब वे अपने लाइसेंस को रिन्यू कराने सर्विस ओंटारियो पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनका लाइसेंस सस्पेंड है। वजह जानकर वो दंग रह गए। मामला 1996 का है, यानी आज से पूरे 30 साल पहले का, जब कम्बरलैंड टोरंटो में रहते थे। अधिकारियों के मुताबिक उस वक्त का $30 का एक पार्किंग टिकट अनपेड रह गया था। हैरानी की बात यह है कि पिछले 30 सालों में कम्बरलैंड ने कई बार अपना लाइसेंस रिन्यू कराया, लेकिन कभी किसी सिस्टम ने इस बकाया टिकट का जिक्र नहीं किया। लेकिन अब 3 दशक के बाद सरकार की नई कंप्यूटरकृत प्रणाली कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ने इस पुराने रिकॉर्ड को ढूंढ निकाला।
4: डेविड कम्बरलैंड का कहना है कि उन्हें इस टिकट के बारे में कभी कोई नोटिस नहीं मिला। अब इस $30 के टिकट को क्लियर करने और लाइसेंस को बहाल करने के लिए उन्हें $160 का भुगतान करना पड़ा है। यह घटना ओंटारियो के उन लाखों ड्राइवरों के लिए एक चेतावनी है जिनके पुराने रिकॉर्ड्स अब डिजिटल सिस्टम के जरिए बाहर आ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि सिस्टम के अपग्रेड होने से ऐसे कई और मामले सामने आ सकते हैं। अपनी जेब टटोलिएगा, रद्दी टटोलिएगा, देख लीजिएगा कोई पार्किंग टिकट बाकी तो नहीं है, वरना लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। ये हेड वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5-10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12-3, डिनर 5-10। वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं। कॉल करें 9057952299 या विजिट करें गुरुलक्ष्मी.com। गुरुलक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर। एडवर्टाइजिंग, इंटरव्यूज, टॉक शोज, इन तीन स्तंभों के लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।
4: हाँ जी बिंदर भाइयों, जी वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। बिंदर भाइयों, सही डेंटल केयर से ही आती है कॉन्फिडेंस वाली स्माइल, और ऐसी हमारी स्माइल हमेशा बनी रहे इसलिए डॉक्टर भीष्मा जी आते हैं हमारे साथ और देते हमें बेहतरीन गाइडेंस। बिंदर भाइयों, आप भी जरूर विजिट कीजिएगा उनकी क्लिनिक 735 ट्वीन एवेन्यू, यूनिट नंबर 16 इन मिसिसागा, डॉक्टर नील गज्जर एंड एसोसिएट्स। बिंदर भाइयों, नंबर भी डायल करें अपॉइंटमेंट बनाने के लिए 905-564-2021। वेबसाइट विजिट कीजिएगा drgajjar.com। आइए चलते हैं डॉक्टर भीष्मा जी के पास। डॉक्टर भीष्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और प्लीज बताएं आज हमारे श्रोताओं को किस टॉपिक पर एजुकेट करना चाहेंगे। ओवर टू यू डॉक्टर भीष्मा जी।
5: थैंक यू सो मच जतिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमने लास्ट वीक बात की थी इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिंग और बायोफिल्म के बारे में, उसमें हमने ये बताया था कि कैसे बायोफिल्म बनती है, वो कैसे हार्ड हो जाती है और वो बैठे बैठे फिर बोन लॉस करती है और फिर दांतों के बीच में जगह हो जाती है, दांत हिलने लगते हैं। एंड देन इफ यू रिमेम्बर वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग, आइडियल फ्रीक्वेंसी विच इज नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स चीज नहीं है और कौन से फैक्टर्स उसको डिफाइन करते हैं। तो उसमें से एक और फैक्टर के बारे में आज हम बात करेंगे विच इज मेडिकल रिस्क फैक्टर्स। आज हम डायबिटीज के बारे में बात करते हैं। बेसिकली पेशेंट्स जिनको डायबिटीज होता है वो उनमें ये गम इश्यूज और गम इन्फ्लेमेशन बहुत इजीली हो जाते हैं, गम ब्लीडिंग ज्यादा होता है, ड्राई माउथ होता है, इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है। इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से उनकी हीलिंग भी डिलेड होती है और ये सारी चीजों की वजह से जिंजिवाइटिस, जैसे कि हमने लास्ट वीक बात की थी हाउ जिंजिवाइटिस कन्वर्ट्स इंटू पेरियोडोंटाइटिस, तो जिंजिवाइटिस बड़ी आसानी से आराम से वो पेरियोडोंटाइटिस में बदल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। और ब्लड शुगर इज हार्डर टू कंट्रोल एज इट इज, और जैसे आपको अगर याद है तो स्कूल के टाइम में हम एक्सपेरिमेंट्स करते थे तो उसमें मीडियम आता था जिसके ऊपर हम बैक्टीरिया ग्रो करते थे लैब में, तो बेस्ट मीडियम वॉज शुगर वाटर। अगर आपका शुगर हाई है तो आप यू आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, हीलिंग इज डिलेड, ये सारी चीज़ों की वजह से। हीलिंग डिलेड होना एक और चीज की वजह से है विच इज प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम विच इज कोलाजनेज। ये एंजाइम क्या करता है कि जो कोलाजन फाइबर्स आपकी बॉडी बनाता है इसको ये ब्रेक डाउन करता रहता है, और ये चीज आपके गम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए डायबिटीज में बड़ी आसानी से पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है क्योंकि ये कोलाजनेज ये मसले को और प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम बढ़ा देती है बेसिकली। और इसीलिए क्लीनिंग इसमें हमको कैसे करना चाहिए, बेसिकली रेगुलर क्लीनिंग प्लैक और कैलकुलस को रिड्यूस करती है, गम इन्फ्लेमेशन को कम करती है, इट प्रिवेंट्स प्रोग्रेशन फ्रॉम जिंजिवाइटिस टू पेरियोडोंटाइटिस बाय रिमूविंग द स्टिम्युलस, रिमूविंग द इरिटेंट, रिमूविंग द पैथोलॉजिकल स्टिम्युलस, राइट। सो अर्ली डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शन भी होता है इससे। आप रेगुलरली क्लीनिंग में आते हो, अगर हमको कुछ भी 19-20 दिखे तो हम आपको इत्तला कर देते हैं कि ये इधर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ये टूथ थोड़ा सा और ज्यादा लूज होने लगा है, आपका ड्राई माउथ थोड़ा सा एक्ट अप कर रहा है, या फिर यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है, यहाँ पे आपको अल्सर हुआ था वो अब तक हील नहीं हुआ, इसके बारे में हमको क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं। और इसमें मेन चीज ये है कि अगर आपके गम्स इन्फ्लेम्ड है डायबिटीज में, तो एवरी 3-4 मंथ्स हम इनिशियली आपको बुलाते हैं, एंड एज सून एज एवरीथिंग स्टेबलाइजेस वी रिड्यूस इट टू 6 मंथ्स. व्हाट डू आई मीन बाय स्टेबलाइजिंग? लास्टली आखिर में मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेबलाइजिंग नॉट जस्ट योर गम्स, आपका ब्लड शुगर. क्योंकि अगर आपका ब्लड शुगर हाई है तभी, और इन्फ्लेमेशन है, दोनों चीजें हैं, तभी हम आपको बोलते हैं कि कंप्लीट कम एवरी 3-4 मंथ्स. जिंजिवाइटिस इन्फ्लेमेशन जनरली भी ज्यादा है तो इनिशियली भी से 3-4 मंथ्स, बट से आपका जिंजिवाइटिस कम हो गया बट आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो इन्फ्लेमेशन वापस बढ़ जाएगा. सो वो आपको ये भी ख्याल रखना है कि थोड़ी सी लाइफ स्टाइल चेंजेस के साथ आप डायबिटीज को ऐसे कंट्रोल में रखें. इसके साथ मैं हमारा एड्रेस बता देता हूँ, 735 ट्विन एवेन्यू, यूनिट नंबर 16, एट द इंटरसेक्शन ऑफ नेविस एंड ट्विन, नॉर्थ ऑफ दिल्ली. और हमारा फोन नंबर है 905-564-2021.
4: डॉक्टर भीष्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बंदर भाइयों, अब आपकी बारी, जरूर पहुंचिए 735 ट्वेन एवेन्यू, यूनिट नंबर 16 इन मिसिसागा. 905-564-2021 इज नंबर टू कॉल, 905-564-2021. वेबसाइट विजिट कीजिए डिटेल जानकारी के लिए, drgajjar.com. भीष्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया.

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
5: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232.
6: नॉर्थ अमेरिका का सब तो बड़ा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
7: यहाँ से आपको ढाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा. 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 & 10, ब्रैम्पटन. टेलीफोन 9057999400.

0: वक्त जो है वो बदल चुका था। रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना, पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था। ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे, पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं। और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ, उससे पूरे FM रेडियो का समीकरण ही बदल गया। एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।
1: जी मित्र भाइयों, जी वॉइस, और हम हैं आपके दोस्त जतीन। मित्र भाइयों, कनाडा में रह रहे मकान मालिकों और आम जनता पर आर्थिक बोझ इस कदर बढ़ गया है कि देश में दिवालियापन यानी इंसॉल्वेंसी के मामले साल 2009 की वैश्विक मंदी के बाद अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। क्रेडिट रिपोर्टिंग कंपनी इक्विफैक्स कनाडा की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की पहली तिमाही में दिवालियापन के मामलों में सालाना आधार पर 18.8% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि लोग आर्थिक रूप से अनुशासित रहने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बढ़ती ब्याज दर और महंगाई के सामने उनके सब्र का बंध अब टूट रहा है। सबसे ज्यादा मार मकान मालिक होम ओनर्स पर पड़ रही है। पिछली तिमाही के मुकाबले मकान मालिकों के दिवालिया होने के मामले 11% से ज्यादा बढ़े हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 90% से अधिक लोग खुद को पूरी तरह बैंकरप्ट घोषित करने के बजाय कंज्यूमर प्रपोजल यानी कि कर्ज चुकाने के लिए एक समझौते का रास्ता चुन रहे हैं। आज मित्र भाइयों, अगर प्रॉपर्टी मार्केट की बात करें तो महंगे इलाकों में हालात और भी गंभीर है। ओंटारियो में मॉर्गेज डिफॉल्ट के मामलों में 52% और ब्रिटिश कोलंबिया में 36% का जबरदस्त उछाल आया है। इसके साथ ही दिवालिया हो चुके मकान मालिकों पर होम लोन के अलावा अन्य बकाए का औसत कर्ज बढ़कर 82,400 तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 के अंत तक मॉर्गेज रिन्यूअल की वेव भले ही थोड़ी धीमी हो जाए, लेकिन ऊंची ब्याज दरें कनाडाई नागरिकों की जेब पर दबाव बनाना जारी रखेगी। संभल कर रहिएगा, ये हिट वॉइस, हम हैं आप ही के दोस्त जतीन। दुनिया भर की खबरें weeklyvoice.com पर।

0: वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
1: हाँ जी मित्र भाइयों, अजीब दास्तां है बॉलीवुड की। आज अजीब दास्तान में याद करते हैं सुनील दत्त जी को। मित्र भाइयों, 25 मई को सुनील दत्त जी ने इस दुनिया में आखिरी सांस ली थी। उनका जन्म हुआ June 6, 1929 और आखिरी सांस ली May 25, 2005। सुनील दत्त की जिंदगी की अजीब दास्तान, यह किस्सा 1957 का है, जब मशहूर फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी। फिल्म में सुनील दत्त नरगिस के बेटे बिरजू का किरदार निभा रहे थे। आपने सुना ही होगा कि एक सीन की शूटिंग के दौरान सेट पर चारों तरफ सूखी घास में आग लग गई थी। अचानक हवा का रुख बदला और आग बेकाबू हो गई। नरगिस उस आग के घेरे में बीचों बीच फंस गई। अपनी सह कलाकार को मुसीबत में देख सुनील दत्त एक बल भी नहीं सोचा। वे अपनी जान की परवाह किए बिना कंबल लेकर धगधगती आग में कूद गए और नरगिस को सुरक्षित बाहर निकाल लाए। इस हादसे में सुनील दत्त खुद काफी झुलस गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। लेकिन क्या आग सिर्फ एक बहाना था मोहब्बत का? अक्सर लोग मानते हैं कि इसी आग ने दोनों के दिलों में प्यार जगाया, लेकिन खुद सुनील दत्त ने एक इंटरव्यू में इसका असली सच बताया था तब पता चला। करे ये तो अजीब दास्तां है। सुनील दत्त ने हंसते हंसते कहा कि अगर आग बुझाने से ही प्यार हो जाता तो मैंने कई हीरोनों को बचाया है। असल बात यह थी कि नरगिस दिल की बहुत साफ और परवाह करने वाली इंसान थी। दरअसल जब सुनील दत्त अस्पताल में थे और बाद में उनकी बहन बीमार हुई, तब नरगिस जी ने बिना किसी स्वार्थ के उनके परिवार की और उनकी बहन की सेवा की। नरगिस का अपने परिवार के प्रति ये समर्पण और प्यार देखकर सुनील दत्त दंग रह गए। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि वे नरगिस से ही शादी करेंगे। और 1958 में सुनील दत्त और नरगिस जी की शादी हुई। मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग, आग से बचाना और हॉस्पिटल में सेवा करना, इन सब वजह से दोनों एक दूजे के हो गए। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि सुनील दत्त जब मुंबई आए तो उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद बेस्ट यानी कि मुंबई की सिटी बसेस में कंडक्टर की नौकरी की और फिर टिकट चेकर की भी नौकरी की। उसके बाद रेडियो सीलोन के बेहद लोकप्रिय हिंदी अनाउंसर बने। वहां पर उन्होंने नरगिस का इंटरव्यू भी लिया। बेंद्र भाइयों, सुनील दत्त ने अपनी करियर में लगभग 20 फिल्मों में डाकू का किरदार निभाया, जैसे कि मुझे जीने दो। और इसी वजह से सुनील दत्त को बॉलीवुड का डाकू किंग भी कहा जाने लगा मोहब्बत से। है ना सुनील दत्त की अजीब दास्तान। ये हिट वॉइस हम है आपके दोस्त जतीन। दुनिया भर की खबरें weeklyvoice.com पर।

0: जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु,
3: बड़ी तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या

0: जीवन की आशा पढ़ले मेरे नैनों की भाषा मुझे मन में बसा ले पल पल पल पलकों में छुपा ले तू चटपट आकर झट
1: टेस्टी डोसा खाने का मन है हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना यूनिट 44-50 7070 सेंट बार्बरा बुलेवार्ड मिसिसागा मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5-10 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12-3 डिनर 5-10 वेडनेसडे को बंद मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com गुरुलक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का असली तड़का
2: रिट्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान ना सुनो सस्ता

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi. High end the saman mile sasta.
2: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
3: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009.
3: Dr. Neil Gajar, 735 Tween Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009.
4: Pratishtha, Parampara aur Anushasan, in teen stambon ke alawa रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर।
5: एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 416-660-8545।
6: जी मित्र भाइयों, ये वही समय आपके दोस्त यतीन। आइए नजर करते हैं अराउंड द बॉलीवुड। डॉन 3 विवाद में फंसे रणवीर सिंह, FWIC ने जारी किया निर्देश। फिल्म डॉन 3 से बाहर होने के बाद रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच का विवाद गहरा गया है। वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन निर्देश जारी किया है। वहीं इस बैन के बीच रणवीर सिंह मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दिए। जोया अख्तर के प्रोडक्शन हाउस में बड़ी चोरी, 66 हार्ड डिस्क गायब हुई। ट्रेडिशनल और OTT डेटा को लेकर एक हैरान करने वाली खबर है। बांद्रा में जोया अख्तर और रीमा कागती के प्रोडक्शन हाउस से फिल्मों और सीरीज के अनरिलीज्ड डेटा वाले 66 हार्ड डिस्क चोरी हो गए। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गोलमाल 5 पर तुषार कपूर का बड़ा अपडेट, अक्षय कुमार की एंट्री। कॉमेडी के दीवानों के लिए अच्छी खबर है, तुषार कपूर ने कंफर्म किया है कि रोहित शेट्टी की गोलमाल 5 की 80-90% शूटिंग पूरी हो चुकी है। इस बार फिल्म में अजय देवगन के साथ अक्षय कुमार भी एक बेहद दिलचस्प किरदार में नजर आने वाले हैं। फना के 20 साल, काजोल ने याद की पोलैंड की हार्ड कंपाने वाली ठंड। आमिर खान और काजोल स्टारर सुपरहिट फिल्म फना ने अपनी रिलीज के 20 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर काजोल ने सोशल मीडिया पर यादें ताजा करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने पोलैंड में -27 डिग्री के कड़ाके की ठंड में एक पतली सी सलवार कमीज पहनकर गाने की शूटिंग की थी। और बहन भाइयों, आशुतोष राणा और रेणुका शाहणे ने शादी की 25वीं सालगिरह पर दोबारा लिए फेरे। समारोह पारंपरिक रूप से हुआ और शादी की कस्मों को फिर से दोहराया गया। ये थी बॉलीवुड की बात, ये वॉइस, हम हैं आपके दोस्त यतीन। एंटरटेनमेंट की हर खबर weeklyvoice.com पर।

0: contributors. Its sole purpose is to provide information and entertainment.
1: काम से दिन भर थके यार, करना नहीं और काम।

Genesis Markham. यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.

ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना। अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स, तो कितना अच्छा हो, है ना। यानी कि रेट्स भी सही मिल जाएं, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888। दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
5: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353। And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
6: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही विजिट करें waynesautogroup.com.
7: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
8: यहाँ से आपको ढाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 और 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 9057999400।
9: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
0: गेट ऑन योर फीट विद पेपी नुक्कड़ बीट्स।

एंड अ क्विक रिमाइंडर कि आज हमारे पास तीन सेगमेंट्स हैं आपके लिए खास. पहले तो अमित खुराना जी जुड़ेंगे. मॉर्गेज की जो भी बात है आपके पास करने के लिए आप उनसे जुड़ सकते हैं राइट इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. पहले अमित जी जुड़ेंगे और स्टूडियो का नंबर आपके क्वेश्चंस के लिए रहेगा 4165930055. उसके बाद सौरभ सुपरवाल जी जुड़ेंगे. रियल स्टेट का सेगमेंट रहता है गेट स्मार्ट विद सौरभ सुपरवाल. अगेन आपके क्वेश्चंस के लिए नंबर स्टूडियो का रहेगा 4165930055. और उसके बाद 6:15 के करीब हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट अनुज ओबेरॉय जी. और आप फटाफट अपने सवाल पूछ सकते हैं. बस अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है और अपना क्वेश्चन और वो आपको जवाब देते चले जाएंगे. स्टूडियो का नंबर रहेगा वही 4165930055.

0: It's Toyota Red Tag Days at Martville Toyota. 2026 Prius Plug-in Hybrid. Ghar le jaane ka perfect time. Receive kare up to $7,500 off. Current Toyota owners ke liye up to 1% rate reduction. Toyota Tundra finance kare as low as 3.99% for up to 36 months. Aapke trade ke liye hum dete hain top dollar. Visit Martville.com. Ya jaye 5362 Highway 7, Markham Bay. Markville Toyota, Wayne's Auto Group ka proud member.
1: बस एक कप कॉफी या मित के साथ और मॉर्गेज होगी आपके हाथ. योर मॉर्गेज मंत्रा विद अमित खुराना. ऑलराइट, फिल्मी नुक्कड़ पर सीएमआर 101.3 एफएम है ये. आप हैं स्वाति और पायस्विनी के साथ और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित जी. मैं हमेशा बताती हूँ, मॉर्गेज की जब भी बात आती है उससे आजू बाजू वाले जितने भी कन्फ्यूजन्स या सवाल आपके मन में होते हैं ये सेगमेंट सुना करें ध्यान से, और नहीं सुन पा रहे हैं तो बाद में या उसके बाद भी कुछ रह गया है तो अमित जी को कॉल कर सकते हैं. 6473412785 उनका नंबर है. 6473412785 रेट्स तो हमेशा बताते हैं, वो आज भी पूछूंगी, पर आप सबके सवाल जो मुझ तक पहुंचते हैं वो सवाल भी मैं पूछूंगी. और मुझे पता है एक के सवाल से बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं, पर अमित जी से आप बात जरूर करिएगा आफ्टर दिस सेगमेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंसर्न रिलेटेड टू योर मॉर्गेज. अमित जी वेलकम.
2: कैसे हैं स्वाति जी आप?
1: बिल्कुल ठीक है अमित जी. और फाइनली समर्स लुक्स लाइक के आ ही गए, अभी तो यही लग रहा है आज से.
2: बिल्कुल सही स्वाति जी, कल से वेदर बहुत ही बढ़िया हो रखा है. आई नो सैटरडे तो बहुत ज्यादा बारिश थी, बट संडे बेटर था. कल तो बहुत ब्यूटीफुल वेदर था, परफेक्ट पैटियो वेदर.
1: हाँ.
2: आज भी पूरा कमिंग वीक भी बहुत बहुत ही अच्छा वेदर है
1: जी. बस
2: तो एंजॉय करें जितना
1: मैं यही बोलती थी कि मौसम इतना अच्छा होता है, और कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसी होता है कि सब चीजें अच्छी चल रही होती हैं, हमें पता ही नहीं चलता कब एक दिन वो धूप गायब हो गई या बारिश हो गई और ठंड पड़ गई. समर्स में भी तो ऐसी लाइफ में होता है, कई बार सब चीज स्मूथ चल रही होती है और अचानक से हम अपने फाइनेंसिस देखते हैं तो देखते हैं अरे यार ये तो बहुत लंबा चौड़ा ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड्स का बिल पाइल अप हो चुका है, हमने लाइन ऑफ क्रेडिट से बहुत उठा रखा है, या फिर डेट जो है वो बहुत भारी भरकम हमने चढ़ा रखा है. तो ऐसे लोगों को आप क्या रिकमेंड करेंगे, क्योंकि मॉर्गेज भी अपने आप में कहीं ना कहीं हम कुछ लेके चुका रहे होते हैं, तो हाउ वुड यू व्हाट वुड यू रिकमेंड टू दोस पीपल?
2: श्योर स्वाति जी, सबसे पहले तो सब लिसनर्स को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड आफ्टरनून
1: जी.
2: और जो आपका क्वेश्चन है उससे पहले जैसे हम कह रहे थे वेदर को लेकर के, तो सब लिसनर्स को यही है कि इस मौसम को जितना एंजॉय कर सकते हैं करें. वी ऑल नो दैट फिर कब विंटर्स आ जाएंगी, कब हो जाएगा देन. Yes, so enjoy with family as much as you can. And everybody knows that Canada's summers are the best summers.
1: Yes.
2: You do not have to feel like going outside. Enjoy the summers. अब हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पर. Yes. कभी कभार situations ऐसी होती हैं हमारे साथ कि हमारे ऊपर debts बहुत हो जाते हैं. Multiple reasons हैं. बच्चों की पढ़ाई होगी, आपने बच्चों को overseas पढ़ाई के लिए भेजा हुआ है, किसी को law के लिए आपने London भेजा हुआ है, किसी को डॉक्टरी के लिए आपने यूएस भेजा हुआ है, या कभी आपको पेरेंट्स को इंडिया में पाकिस्तान में बैक होम जरूरत पड़ गई, आपने उनको पैसे ट्रांसफर किए. मल्टीपल रीजन होते हैं, कभी कभार हमारे ऊपर डेट्स बहुत ज्यादा चढ़ जाते हैं. और ओवर द टाइम पीरियड वी ऑल नो दैट हमारी इनकम इतनी इंक्रीज नहीं हुई है जितने हमारे खर्चे बढ़े हैं. तो इन चीजों को देखते हुए कभी कभार हमारे डेट्स इतने ज्यादा कि हम क्रेडिट कार्ड कंपनीज को मिनिमम पेमेंट्स कर रहे होते हैं, या लाइन ऑफ क्रेडिट में हम सिर्फ इंटरेस्ट ही पे कर रहे होते हैं, प्रिंसिपल नहीं पे कर पाते. And sometimes you realize ki what's going on, man. मैं जितना कमा रहा हूँ अच्छा कमा रहा हूँ, आई एम मेकिंग गुड मनी, स्टिल मेरे सारे जो इनकम है मैं सेविंग नहीं कर पा रहा और वो मेरे डेट्स में जा रहे हैं
1: जी.
2: तो जो भी लिस्टनर इस समय डेट्स को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, दे हैव टू थैंक टू वन थिंग कि आपका जो घर है वो एक आपके लिए इक्विटी की तरह है. It is like a life-saving oxygen for you. वो एक ऑक्सीजन का काम करता है जो आपकी घर की इक्विटी है. हम कभी कभार रियलाइज नहीं करते इस चीज को कि हमने जो घर 2010 में लिया, 2012 में लिया, 2015 में लिया, उस घर में इतनी इक्विटी बनी हुई है. क्योंकि अभी ऑल अराउंड द कॉर्नर बड़ी नेगेटिव न्यूज चल रही है, वो जी घरों के प्राइस नीचे गिर गए, इक्विटी अप्रेजल्स नहीं आ रही, ये नहीं आ रही. स्वाति जी हमको ये देखना पड़ेगा, ये जो घरों के प्राइस वाला जो ये चीज है ये उन लिस्टनर्स के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होता है जिन्होंने कोविड टाइम पे घर लिया था, व्हेन द प्राइसेस वर लाइक रॉकेट हाई.
1: यस.
2: बट जिन लिस्टनर्स ने 2010 में, 2011 में या कोविड से पहले कह लें 2018 में, 2019 में घर लिए थे, those people are still sitting with a good amount of equity in their property. तो अगर कोई भी listener इस समय किसी भी reason से debts में फंसा हुआ है, समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूं, और everywhere is negative news going around, हमारा दिमाग भी खराब हो जाता है negative negative सुन करके, तो don't worry about that. Pick up a phone and call me. 647-341-2785. यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है और उसको लेट सपोज करिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसकी घर में इक्विटी नहीं है, बट बीइंग इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड देयर आर लॉट ऑफ बैंक्स जो आजकल बिजनेस ओनर्स को हेल्प कर रहे हैं इन गिविंग देम अ काइंड ऑफ अ बिजनेस लोन. I did not provide business loan, but मेरी जो brokerage की team है, they do help clients on a business loan also.
1: तो
2: अगर किसी को लगता है कि भाई मेरे घर से नहीं निकल सकता पैसा, but they are having a business, they are into trucking industry, they are having it into a grocery, like a retail sales industry, they can also call me. I can help them in getting a business loan, which will help them in running their business and which will help them in taking their debts paid out also. बहुत सारे options हैं, बहुत सारी चीजें हैं. The only thing, you have to talk to a professional. Professional से बात करेंगे, आपके solution निकलेंगे और आपको एक genuine advice मिलेगी. Because being a licensed mortgage agent and being a licensed professional, we are there to guide you. हम आपको guide करेंगे, हम आपको educate करेंगे, हम आपको information देंगे और हम आपको इन चीजों से बाहर निकालेंगे. तो again, 647-341-2785. अगर आप किसी भी debts की problem से चल रहे हैं, तो पिक अप अ फोन एंड कॉल मी, मे बी आई कैन एबल टू हेल्प यू इन गिविंग टेकिंग आउट फ्रॉम दिस स्ट्रेस. ये स्वाति जी,
1: चलें, बहुत अच्छी सी आपने गाइडेंस इस वक्त दी है कि अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या नहीं भी हैं, दोनों केसेस में मार्केट जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है उससे नेगेटिव ना होए. आपके लिए कुछ ना कुछ राइट इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो क्लैरिटी बेटर होगी, क्लैरिटी बेटर होगी तो डिसीजन बेटर होंगे और जिस भी परिस्थिति में आप हैं उसमें आप ठीक से मैनूवर कर पाएंगे. अमित जी आपकी मदद कर सकते हैं एक राइट एडवाइस के लिए और उनको आप कॉल कर सकते हैं 647-341-2785. उनका इतना लंबा अनुभव है उसका फायदा आप जरूर उठाएं. अमित जी जाते जाते प्लीज रेट्स इस वक्त क्या है आपके पास वो जरूर बताएं.
2: sure, मैं रेट्स भी अनाउंस करता हूं और बाकी एक चीज यहां पे मैं कहना चाहूंगा, परमात्मा ने इस धरती पे सब लोगों के लिए सॉल्यूशन रखे हुए हैं. यू हैव टू कीप काम, यू हैव टू कीप पेशेंस. चीजें निकलेंगी, रस्ते निकलते हैं, सॉल्यूशन निकलते हैं. द ओनली थिंग, यू हैव टू कीप पेशेंस. परमात्मा ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा हुआ है. पेशेंस रखने की जरूरत है. कभी कभार हम पेशेंस लूज कर जाते हैं, हम रेस्टलेस हो जाते हैं एंड उस चक्कर में हम गलत स्टेप्स ले लेते हैं. बट अगेन कॉल मी, मैं हेल्प करूंगा. इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस, ये जो मैं रेट अनाउंस करने जा रहा हूँ ये उन लिसनर्स के लिए जिनकी रिन्यूअल्स आ रही हैं या जिनकी मॉर्गेजेस जो अपने लिए घर खरीद रहे हैं एज अ इन्वेस्ट, एज अ प्रिंसिपल प्रॉपर्टी. रीफाइनेंसिंग के रेट्स नहीं है जो मैं अनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि रीफाइनेंसिंग के रेट्स इट्स ऑन अ केस टू केस बेसिस. बट फॉर द पीपल हु आर बाइंग और जिनकी रिन्यूअल्स आ रही हैं, वेरिएबल रेट इज प्राइम माइनस 0.90 विच इज 3.55. आज की डेट में लॉट ऑफ मेजर बैंक्स आर नॉट गिविंग दिस रेट 3.55. इट्स प्राइम माइनस 0.90. फिक्स रेट 3 साल का और 5 साल का, इट्स बिटवीन 3.89 टू 3.99 डिपेंडिंग ऑन द लोन टू वैल्यू, कितनी घर में इक्विटी है, कितनी आपकी इनकम है. तो फिक्स रेट 3 साल का 5 साल का बिटवीन 3.89 टू 3.99. 5 ईयर्स का वेरिएबल इज प्राइम माइनस 0.90 विच इज 3.55. यस स्वाति जी,
1: परफेक्ट. तो ये रेट्स हमें पता चले हैं. आप एक बार और कॉल करें और फिर जो भी आपकी सिचुएशन है वो ठीक से डिस्कस करें अमित जी के साथ. आपको राइट एडवाइस राइट रेट के साथ जरूर मिलेगी. 647-341-2785. थैंक यू अमित जी, फिर करते हैं आपसे बात.
2: थैंक यू स्वाति जी, टेक केयर, एंजॉय दिस वेदर विद द फैमिली एज मच एज यू कैन. थैंक यू, गॉड ब्लेस.
1: थैंक यू, गॉड ब्लेस.

0: advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time. इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
1: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माई रियल्टो के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी,
0: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में।
1: बिल्कुल, लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट फ्रॉम 0.99%। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल्टो। कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट इवैल्यूएशन एट 416-843-7600।
0: My property, my choice. My Realco, the real estate company. Or visit myrealco.com. Not intended to solicit buyers and sellers already under contract.
2: Don Valley North Hyundai pe ho rahi hai. Zabardast Hyundai Sunday ki ultimate saving sale on May 24th. Inventory par huge bonus offers. Deals itni zabardast ki miss nahi kar sakte. Sunday, May 24th ko apne calendar mein mark kar do. Don Valley North Hyundai par hamari team baat karti hai Hindi, Urdu, Punjabi aur Tamil mein. Visit kariye donvalleynorthhyundai.com. Woodbine Ave or Denison Street,
3: Don Valley North Hyundai, doing business your way.
2: Member of Wayne's Auto Group.

0: ஃபார் எனி இன்ஃபர்மேஷன் கால் சரப் சபர்வால் 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: Get smart with Saurav Sabharwal on Filmy Nukkad. All right, welcome back. आप सुन रहे हैं CMR 101.3 FM फिल्मी नुकर पर. आप हैं पायस्विनी और स्वाति के साथ, और हर ट्यूसडे की तरह इस बार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ सबरवाल जी फ्रॉम टीम सबरवाल. बहुत सारी बातें करनी है उनसे, मुझे पता है हम सबको. पर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एट दिस मोमेंट, स्टूडियो का नंबर रहेगा 416-593-0055. और शुरुआत कर देते हैं सेगमेंट की. हेलो सर, सौरभ जी कैसे हैं?
4: जी बढ़िया, थैंक यू वेरी मच स्वाति जी. और ट्यूजडे इज समथिंग आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू. और हमारी चर्चा बड़ी अच्छी होती है, लॉट्स ऑफ टॉपिक्स हमने डिस्कस करे हैं. और देयर इज अ वेरी बिग वन जो पूरी नेशनल इंटरेस्ट में भी है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डिस्कसिंग दैट टुडे.
3: यस, आई गेस यू आर टॉकिंग अबाउट दैट अल्बर्टास अपकमिंग रेफरेंडम, है ना? क्वेश्चंस, इट्स मेकिंग हेडलाइंस. या
4: हाँ, तो लेट्स गेट इन टू दैट. क्योंकि देखिए, दिस समथिंग लाइक दिस इज हैपन विद क्यूबेक मेनी मेनी इयर्स अगो. तो बेसिकली क्या है कि इट्स बीन मेनी, यू नो, मेनी इयर्स फॉर डेकेड्स बेसिकली अल्बर्टा ने हमेशा शिकायत करी कि ऑटावा बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स एनर्जी वेल्थ, बट इट लिमिट्स एक किस्म से उनकी इकोनॉमिक फ्यूचर को, वो लिमिटेशन कर देता
3: है. राइट.
4: तो एंड दिस इज नथिंग न्यू क्वाइट ऑनेस्टली. तो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज, फ्रस्ट्रेशन इज. और यू नो, इट्स नॉट द सेपरेशन टॉक बेसिकली इज नो लॉन्गर अबाउट, मेरे हिसाब से एक पॉलिटिकल चार्टर नहीं है सिर्फ, क्योंकि ये यू नो, जो राइजिंग टेंशन हमें देखने को मिल रही हैं, वो एक क्लाइमेट पॉलिसी की वजह से है, इक्वलाइजेशन की वजह से है. पाइपलाइन इज अ ह्यूज रीजन जो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा. पाइपलाइन इज अ ह्यूज रीजन एक्चुअली. और एक फेडरल रेगुलेशन भी है कि यू नो, एंड विच फोर्सेज एक किस्म से अल्बर्टा को यू नो, it forces it to reconsider its place in this country. I'm not siding with them. It's obviously koi bhi nahi chahta ki
3: desh toote,
4: kisi bhi kisi koi bhi desh toote, magar at the end of the day wo kuch had tak wo bhi theek hai, kyunki at the end of the day economic prosperity lies with the federal government. Aur jab hamare paas resources hain, उनको क्यों नहीं एक्सप्लोर किया जा रहा?
3: राइट.
4: तो दैट इज व्हाट द फ्रस्ट्रेशन है.
3: तो मुझे एक तो पहले, बहुत सारे लोगों को बहुत आसान तरीके से नहीं पता होता, आई एम श्योर हमारे लिसनर्स में हर तरह की लिसनरशिप होती है, एक तो शॉर्ट में मुझे ये बताएं एग्जैक्टली व्हाट इज द कंप्लेन, जैसे जो अल्बर्टा रेफरेंडम की बात हो रही है, और इसके लिए जो कहा जा रहा है, जो कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो अपना पक्ष क्या कह के रख रहे हैं. तो दोनों पक्ष का अगर आप बात रखेंगे तो मेरे ख्याल से किसी को समझने में बहुत आसानी रहेगी कि मुद्दा है क्या.
4: बिल्कुल, एट इट्स कोर अल्बर्टन्स जो हैं वो उनका कहना ये है कि अल्बर्टा कंट्रीब्यूट्स मोर मनी टू कैनेडा देन इट गेट्स बैक, व्हिच इज ट्रू टू अ सर्टेन एक्सटेंट. ऑटवा वो बोलते हैं कि ऑटवा ने ऐसी पॉलिसीज बनाई हुई हैं या बनाता है जहां पर अल्बर्टा की ऑयल और गैस इंडस्ट्री को यू नो हर्ट पहुंच, इट्स नॉट वेरी फीजिबल फॉर देम टू कंडक्ट बिजनेस. और अल्बर्टा हैज लेस कंट्रोल ओवर इट्स इकोनॉमिक फ्यूचर. दैट्स व्हाट दे से, दैट्स व्हाट देयर साइड ऑफ थिंग्स आर.
3: क्या आप हमसे फायदा तो उठा रहे हो पर हमें वो चीजें ना देने के लिए उतना अच्छा हमें फैसिलिटेट कर रहे हो, ना उससे हमें कुछ मिल रहा है, यहाँ पर हम सिर्फ देश को फायदा उठाने दे रहे हैं. तो उसमें क्या होता है कि हमारी प्रोविंस को कुछ नहीं ठीक से मिल रहा है, ना सपोर्ट मिल रहा है, ना उसमें बैक में मिल रहा है
4: जी. और फ्रस्ट्रेशन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, फ्रस्ट्रेशन बेसिकली ये है कि ऑयल और गैस की रेगुलेशंस के ऊपर है, कार्बन टैक्सेस के ऊपर है, पाइपलाइन रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर है, और इन्फ्लुएंस जो फेडरल गवर्नमेंट करती है प्रोविंशियल अफेयर्स में, उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन काफी है प्रोविंस की. सो दैट इज बेसिकली व्हाट द झमेला पूरा ये है एक
3: किस्म। अच्छा, और मैं देख रही थी इसमें बहुत सारे जो सर्वे इस बीच आए हैं सामने कई कई तरीके के, वो अधिकतर लोग जो कैनेडियंस हैं वो नहीं चाहते कि ये हो, चाहे वहाँ के भी हैं वो नहीं चाहते ये हो सेपरेशन। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल एंगल नहीं है इसमें?
4: देखिए, मेरे हिसाब से दिस इज रियली अ शॉर्ट आंसर, मेरे हिसाब से ये है कि अल्बर्टा विल नॉट बी सेपरेटिंग एनी टाइम सून।
3: चले, ओके,
4: तो वो मेरा मानना है। और ऊपर से जो दो वे आई लुक एट इट इज एक किस्म से पॉलिटिकल प्रेशर है ऑटवा के ऊपर, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक आप बोल सकते हो, और एक किस्म से इट्स अ वे ऑफ गेनिंग मोर ऑटोनॉमी।
3: ओके,
4: यू नो, बट फ्रस्ट्रेशन जो है दैट इज दैट रियली डज एग्जिस्ट, और एक किस्म से इशू को फोरफ्रंट में लाने का तरीका एक किस्म से अच्छा है, क्योंकि आई डोंट रियली थिंक दिस इज गोइंग टू फॉल थ्रू। अभी पीछे स्टेटिस्टिक्स भी आते कि 60% ऑफ अल्बर्टन्स डोंट रियली वांट टू लीव कनाडा।
3: यस यस,
4: सो एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, देखिए कनाडा इज अ प्लेस वेयर द लैंड इज नॉट टेक्निकली आवर्स, तो वी हम कुछ भी बोलते रहे, हाथ पैर मारते रहे, वट एवर वी डू, इट बिलोंग्स टू इंडिजिनस पीपल। तो वो बोलते हैं कि, एंड पीछे देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस एज वेल व्हेन वन ऑफ द एल्डर्स इन वन ऑफ द कम्युनिटीज, इंडिजिनस कम्युनिटी सेज, उन्होंने बोला था कि भैया आप बात कर रहे हो सेपरेट होने की, व्हाई डोंट यू लीव, डू कीप इन माइंड यू आर इन ऑन आवर लैंड, वी हैव ट्रीटीज साइंड, दैट डज नॉट मीन यू कॉल द शॉट्स, यू आर गोना यू नो ब्रेक आउट ब्रेक अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। So that's what it is, and that opens up a whole new can of worms.
3: मैं देख रही थी वो Angus Reid Institute की जो पोल आई है उसमें जैसे आपने बताया कि 60% respondent तो नो ही कह रहे हैं, जो ऑफिशियल अक्टूबर क्वेश्चन की बात हो रही है, 35% ने सिर्फ येस पे वोट किया है अभी। और जब उन्हें बहुत ही सिंपलर हाइपोथेटिकल वे में पूछा गया लीव और स्टे वाला क्वेश्चन, तो भी 67% ने चुना टू स्टे एंड ओनली 30% ऑप्टेड टू लीव। और साथ में जो 73% जो कैलगरी एडमिंटन के लोग हैं, अर्बनाइज, तो बेसिकली अर्बन लोगों की यहाँ पे बात हो रही है, उन्होंने तो टोटली अपोज किया इस प्रोसेस को, वाइल रूरल अल्बर्टा कहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, 48-48 का रेशियो वहाँ पे है। बट मैं इसमें रियल स्टेट पे इसके इम्पैक्ट की बात भी करना चाहूँगी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सौरभ जी प्लीज़ जुड़े रहें हमारे साथ।

0: Wayne's Auto Group आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम हर जर्नी को बनाए खास Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit karein waynesautogroup.com.
1: Get smart with Saurabh Sabharwal on Filmi Nukkad. Well, तारीफों की हम बात कर रहे थे और तारीफों की बात क्यों भी क्यों ना क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं सौरभ सबरवाल जी से फ्रॉम टीम सबरवाल. हम हमेशा कहते हैं कि जब भी घर का आता है सवाल या रियल स्टेट प्रॉपर्टी का लेना बेचना आप एक बार उनसे कांटेक्ट ज़रूर करिएगा. आपको क्लैरिटी आने में भी मदद मिलेगी और राइट डिसीजन लेने में भी. बट फिलहाल क्लैरिटी हम ले रहे हैं आज ऑन दिस अल्बर्टा की जो एक सेपरेटिज्म की न्यूज़ है उसके ऊपर क्योंकि बहुत लोग हैं जिन्हें इसके बारे में या तो जानकारी नहीं है या डिटेल में नहीं समझ में आता कि एक्चुअली है क्या और उसका क्या असर हम पर एज कैनेडियन पड़ सकता है बिसाइड्स दिस इमोशन के नेशन को स्प्लिट होने की यहाँ पे बात हो रही है. तो उसको हम समझना चाह रहे हैं और सौरभ जी से बेटर कौन होगा क्योंकि वो अक्सर हमें बहुत आसान तरीके से ऐसे बड़ी बड़ी पॉलिटिकल मुद्दे समझा भी देते हैं जिनका इम्पैक्ट हम सिटीजन्स पे होता ही होता है. सौरभ जी से बात करने का नंबर रहता है आफ्टर द शो 6478648844. इवन इफ़ यू एग्री इवन इफ़ यू डोंट एग्री आप इससे इनसे बात कर सकते हैं या फिर स्टूडियो में इस वक्त बात कर सकते हैं 416-593-0055 पर. सौरभ जी वेलकम बैक. अच्छा हम बात कर रहे थे इस पे सेपरेटिज्म पे. आपने एक तो बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया व्हाट एक्चुअली इज द इशू और आपने बेबाक तरीके से अपनी राय भी रखी जो आप हमेशा रखते हैं बिना यू नो गेटिंग डिप्लोमेट अबाउट इट के डिप्लोमेटिक के ये ठीक नहीं है वो नहीं. आप बिल्कुल बेबाक रखते हैं अपनी राय. मुझे बहुत अच्छा लगता है उसमें एक ऑनेस्टी दिखती है इन यू एज अ पर्सन एज वेल. मुझे यहाँ पे एक और सवाल पूछना था कि हम यहाँ पे जब बैठे हैं ऑन्टेरियो में ये बात हो रही है अल्बर्टा की तो अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो सोचते हैं कि एक तो कोई देश की तरह देखता है कि अरे नहीं नहीं सेपरेट किसी प्रोविंस को क्यों होना है पर बहुत सारे लोग इसको इमोशनल तरह से लेते हैं राइट एंड रॉन्ग. और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें ज़्यादा पता नहीं है. जब पड़ता भी लगता है ठीक है मेरी रोजी रोटी ठीक चल रही है मेरी प्रॉपर्टीज ठीक है मेरा डिसीजन पर फ़र्क नहीं पड़ रहा. तो मी एज सिटीजन आपको क्या लगता है इसमें क्या फ़र्क पड़ सकता है?
2: जी देखिए ओवरऑल इम्पैक्ट ऑब्वियसली एज अ नेशन इज अ बिग इम्पैक्ट.
1: यस
2: क्योंकि लेट्स टेक इट टू सिनेरियोस कि अल्बर्टा अगर यू नो सेपरेट हो जाता तो अगर अल्बर्टा सेपरेट हो जाता है दैट इज अ बिग बिग चंक ऑफ यू नो
1: रिसोर्सेज
2: जो we will be giving up and once Alberta is agar the separation goes through they can do whatever they want they can you know build all the pipelines or they can be very because Alberta is you know produces if I'm not wrong the third most they have the third most highest reserves oil ke in the world.
1: Okay
2: so there is a lot of oil to be tapped into but that's what the problem is ki as a nation Canada produces a lot of oil but problem padti hai ki we are not able to transport it efficiently. So if Alberta you know and currently US is the biggest consumer and client hamare oil ka we are not even the biggest oil consumer of our own oil because all these transport issues jo chal rahe hain so you see agar Alberta separate ho jata hai we will lose a big chunk a very important chunk of land where most of the resources are
1: right.
2: So that definitely has a ripple effect on overall economy that
1: yes.
2: makes us significantly weaker. तो दैट्स व्हाट इट इज. एंड जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि दिस इज मोर लाइक अ नेगोशिएटिंग टूल दैट दीज गाइज़ आर यूजिंग
1: यस
2: बिकॉज you know, there's always ek had ke baad you have to start using ways and to make the other party
1: hamari baat kuch to mano ha
2: हमारी मांगी पूरी करो एक किस्म से वाला फंडा
1: हो जाए। फिर ये ऑयल तो आज की तारीख में दुनिया भर में इट्स अपने आप में सोना है, तो अगर सोने को सामने रख के वो कह रहे हैं भी ठीक है।
2: हाँ, और ऊपर से इन ओवर द मेनी इयर्स बहुत सारे पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स कैंसिल भी हुए हैं
1: जी,
2: डिले हुए हैं
1: राइट,
2: और चैलेंज्ड हुए हैं कोर्ट में। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ माय हिस्ट्री सर्व्स मी करेक्टली, आई थिंक 80s में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुई थी on indigenous land. Many decisions have been blocked politically as well. Most recently, if I'm not wrong, Keystone XL ka jo pipeline tha, that got cancelled in the US. So ek kisam se ye frustration ka, you know, this is the reason why there's so much frustration, kyunki Alberta ek kisam se bolta hai yaar, we are the biggest industry and we are constantly restricted. Rightfully so.
1: Mm-hmm.
2: So, and you know, dekha jaye Swati ji, ye pipelines hain, they create jobs. Canada needs the energy revenue the way the economy is right now.
1: Mm-hmm.
2: Why cannot we, you know, take advantage of the resources that we have?
1: Mm-hmm.
2: Revenue as a nation banta hai, global oil demand still exists.
1: Yes.
2: You know, pipelines are safer than railroad transport, even. Mm-hmm. मैं तो कहूंगा टैंकर ट्रांसपोर्ट से भी सेफ है कुछ हद तक। और कनाडा बिगेस्ट थिंग इज, एंड आई वाज शॉक्ड टू रीड दिस, कि कनाडा लूजेस बिलियंस व्हेन ऑयल कैन नॉट रीच वर्ल्ड मार्केट्स, क्योंकि यू नो ऑब्वियसली अल्बर्टा का जियोग्राफिकली लोकेशन जो है इट्स लैंडलॉक्ड, तो इसलिए पाइपलाइंस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे। बट वही नहीं, फेडरल गवर्नमेंट पास करी इतने सालों से, विच हैज क्रिएटेड ऑल दिस टेंशन। तो कैनेडियन ऑयल, जैसे मैं आपको बोल रहा था, दे हैव टू सेल द ऑयल चीपर देन यूएस ऑयल बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेशंस।
1: अच्छा,
2: तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
1: ओके,
2: सो यू नो इन दिस करंट सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन द वे वी आर इन, and right now it's not the strongest economy we are facing. So we are starting to ask a lot of questions. We're starting to react to a lot of realities. And this is just another way of, you know, the province showing its frustration to the federal government, ek kisam se, ki we have the resources, we have the capability. What is the problem?
1: Ji. ठीक है, ये तो आपने बहुत अच्छे से बताया, इसमें भी एक जो बारीकियां होती हैं समझ में आई। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन वही है कि आप इसको फ्रॉम रियल स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू कैसे देख पाते हैं।
2: देखो, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक एंग्जाइटी के सबसे जो एवरीडे कैनेडियंस आर फेसिंग, इट इज थ्रू द रूफ। पीपल आर फीलिंग, और जो हमारा रोज का हमको देखने को मिलता है, यू नो, higher living costs, groceries are ridiculously high,
1: जी.
2: economic uncertainty hai, weaker confidence in government bhi hai kuch had tak.
1: Right.
2: So ye sara regional tensions, frustration bhi create karta hai, not just in Alberta. Kyunki us as a nation, we are facing these things.
1: Right.
2: So once we have the oil and the natural resources aspect figured out, everybody reaps the benefits. So, bhale Alberta has been very economical when it comes to, you know, being one of the most affordable provinces for housing.
1: Mm-hmm.
2: BC and Ontario have been, you know, ridiculously expensive. And a lot of people have been flocking to Alberta.
1: Yeah.
2: So, at the end of the day, if the industry is created where jobs, ये तो है नहीं कि यू नो पाइपलाइंस जब एस्टैब्लिश होंगी, दे विल बी
1: एस्टैब्लिश्ड
2: ऑल थ्रू आउट द कंट्री,
1: या
2: दैट विल क्रिएट जॉब्स ऑल ओवर द प्लेस, नॉट जस्ट अल्बर्टा इटसेल्फ।
1: बिल्कुल ठीक बात।
2: तो यू नो हाउसिंग एंड जॉब्स इक्वल्स मोर हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स, एंड इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट वंस दिस इशू हैज बीन टेकन केयर ऑफ। तो हाउसिंग मार्केट, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है देन इन डिसीजन मेकिंग स्पेशली देन थिंग्स टेंड टू यू नो स्पीड अप क्वाइट अ बिट. तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट्स मोर रिक्वायरमेंट फॉर हाउसिंग विच इन टर्न ऑल्सो क्रिएट्स यू नो मोर जॉब्स फॉर कंस्ट्रक्शन. जैसे हमने पिछले एक दो सेगमेंट पहले बात करी थी, लॉट ऑफ रिपल इफेक्ट्स, स्मॉलर इंडस्ट्रीज टेक प्लेस.
1: हाँ बिल्कुल ठीक बात है.
2: तो इसलिए ओवरऑल सेंस यू नो जब ये व्हेन दीज गाइस स्टार्ट बिल्डिंग द पाइपलाइंस अ लॉट ऑफ गुड विल हैपन थ्रू आउट द कंट्री.
1: तो चले, एक तो मुझे आपसे बात करके समझ में तो आया ही बेटर तरीके से. मुझे ये भी समझ में आया कि एज पर सौरभ जी इट इज मोस्ट लाइकली नेगोशिएटिंग टेक्टिक. इसके आगे ऐसा नहीं है कि ये होने वाला है. अभी तक इट सीम्स लाइक दिस. जनता भी नहीं चाहती, हम भी, कोई भी नहीं चाहता कि देश टूटे. बट और इसके अगर जो ये इसमें पाइपलाइन वगैरह सब ठीक से हो जाता है तो इट्स गोइंग टू हेल्प ओवरऑल इन बेटर इकनॉमी ऑफ कैनेडा. ये भी हमें समझ में आता है. तो आज का ये टॉपिक क्लियर करने के लिए थैंक यू सो मच सौरभ जी. मैं आपका नंबर एक बार देना चाहती हूँ. जो लोग आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते हैं, दोनों सूरतों में आपसे बात अलग से कर सकते हैं और अलग भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिनके भी. 6478648844. एक चीज़ ज़रूर मैंशन करूँगी, इफ़ यू आर कन्फ्यूज अबाउट योर रियल स्टेट डिसीजंस और जो भी आपको लगता है दुनिया में चल रहा है उसकी वजह से कोई कन्फ्यूजन है, एक बार फोन उठा के बात जरूर करें. आपको अपने डिसीजंस के लिए क्लैरिटी जरूर आएगी. 6478648844 और विजिट teamsabarwal.com. थैंक यू सौरभ जी, अगले हफ्ते फिर बात करते हैं.
2: जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच.

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042, विजिट filminukkad.com।
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे आप भी।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th. इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स, डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते. संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो. डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में. विजिट करिए डॉन वैली नॉर्थ हंडे .com, Woodbine Ave और Denison Street, Markkuppur.
4: Doing business your way.
3: Wayne's Auto Group.
5: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 Cotral Boulevard, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
6: Retro in Metro, Nukkad Classics.

एंड अ क्विक रिमाइंडर, हमारे साथ हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट जुड़ चुके हैं. बस कुछ ही मिनटों में आपसे बात कराती हूँ. उनकी स्टूडियो का नंबर हैंडी रखें फॉर योर क्वेश्चंस. वो रहेगा 416-593-0055. बस आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना होगा और अपना सवाल पूछना होगा, आपको अच्छा सा जवाब उनसे मिल जाएगा. स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर दिस सेगमेंट, नंबर डू वंडर्स.

0: advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time. मेरे रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया।
1: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी। पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है। अब बारी आपकी। कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600।
0: दैट्स 416-843-7600 और विजिट माई रियल को.com.

एंड अ क्विक रिमाइंडर, हमारे साथ अनुज ओब्रॉय जी, हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट जुड़ चुके हैं. बस राइट आफ्टर दिस सॉन्ग वी आर गोइंग टू गेट इनटू आवर सेगमेंट नंबर्स टू वंडर्स. कैसे करते हैं उसके लिए आप आज का सेगमेंट सुनिएगा. आज हम डिफरेंट नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं. नंबर 8 के बारे में बात करेंगे आज, क्योंकि डेट भी है 26. प्लस आपके जो भी हैं सवाल, चाहे वो नंबर से मैचिंग है या नहीं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ रेडी रखें, अपना क्वेश्चन रेडी रखें. वी आर गोइंग टू आस्क डायरेक्टली हमारे अनुज ओब्रॉय जी से. तो स्टे ट्यून्ड, राइट आफ्टर दिस सॉन्ग वी आर गोइंग टू गेट इनटू आवर सेगमेंट.

0: ऑलराइट, जैसा कि था वादा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुज ब्रॉय जी, हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट फॉर द सेगमेंट नंबर्स डू वंडर्स. ये ऐसा मानते हैं, और जब ये मानते हैं तो कहते हैं कि भाई मैं मनवा के भी छोड़ूंगा क्योंकि ये जिस तरीके से साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं हाउ नंबर्स ब्रिंग एनर्जी एंड चेंज कैन चेंज आवर लाइफ फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव, तो लगता है कि हाँ बात तो है जो कुछ कह रहे हैं उसमें. बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलते हैं कई बार नंबर्स के अकॉर्डिंगली जब ये चेंज कराते हैं, कई बार नाम की स्पेलिंग में चेंज करवाते हैं, छोटा मोटा सा, नॉट ऑफिशियली बट अनऑफिशियली भी जब आप चेंज कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क देखा गया है. बाकी आप अपना सवाल रेडी रख सकते हैं, स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 आपके सवालों के लिए स्टूडियो का नंबर रहेगा. ये करते रहेंगे उनसे बात धीरे धीरे. वेलकम अनुज जी.
1: थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सारे ऑडियंस के लिए जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है. मैम आपने ठीक कहा, ये छोटे छोटी सी जो ट्यूनिंग होती है ना, जैसे नेम की वाइब्रेशंस, पूरी की पूरी वाइब्रेशन उससे चेंज हो जाती है. तो आपका लक फैक्टर जो है, जो 0 to 20 है, कभी 40 है, वो बढ़ के 60 to 70% हो जाता है. और जैसे कि मेरी कंपनी है नंबर्स डू वंडर्स, उसकी पंचलाइन सेज एनहांस योर चांस.
0: वाओ,
1: सो चांस तो सबके पास है. अगर थोड़ा सा एनहांस कर लेंगे तो क्या जाएगा.
0: और छोटी छोटी चीजें होती है, बहुत बड़े बड़े उपाय नहीं होते ये कि भाई. हाँ, मुझे एक चीज समझ में आती है, जैसे हम गिटार की कई बार हर बार प्ले करने से पहले ट्यूनिंग करते हैं, गले को साफ करते हैं ताकि हम अच्छा गा पाए. सितारों की स्ट्रिंग्स की ट्यूनिंग करते हैं, तबले में भी हम उसकी स्ट्रिंग्स टाइट
1: करते हैं.
0: तो ये सारी चीजें ऐसी हो गई, जैसे आपने कहा नंबर्स है आपके पास, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो आपकी लाइफ पे इफेक्ट डाल रहे हैं, बट वो अच्छे से डालें. उसका
1: गाड़ी भी तो आप सर्विस करानी ही पड़ती है ना.
0: हाँ.
1: तो अपनी लाइफ की गाड़ी भी थोड़ी सी सर्विस करा सकते हैं, और कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ फाइन ट्यूनिंग की जरूरत होती है. जैसे मैंने कहा, चांस तो सबके पास है,
0: राइट,
1: बट यू नीड टू एनहांस योर चांस. सारा गेम उसी का है, वहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है,
0: और वहीं पे एक सक्सेसफुल और नॉन सक्सेसफुल की तरफ फर्क पड़ जाता है. दो लोग खड़े हैं, एक ने अपने चांस को एनहांस कर लिया, एक सोच रहा है कि कब होगा, अपने आप होगा.
1: बिल्कुल मैम, आज 26th है, 8 नंबर. अक्सर अक्सर लोगों को इस नाम से डराया जाता है.
0: अच्छा,
1: शनि.
0: ओके,
1: बट मैं हमेशा बोलता हूँ शनि इज मनी.
0: शनि इज मनी, यस, आपने पहले बताया.
1: शनि के बिना आप कॉर्पोरेट नहीं बना सकते. चाहे आपके कोई भी नंबर हो, नेम नंबर कहीं भी जा रहा है, अगर किसी बिजनेस को एक कॉर्पोरेट लेवल पर ले जाना है, उसमें शनि लगेंगे.
0: ओके,
1: और डराना कुछ हद तक नाजायज है. शनि नो डाउट इट्स एक क्रूर प्लैनेट होता है, एक हार्ड प्लैनेट होता है, मगर जितना बड़ा पोर्टफोलियो शनिदेव के पास है, उतना और किसी के पास नहीं है. दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग, लोहा, आयरन, पेट्रोलियम, गैस, एवरीथिंग फॉल्स अंडर शनि.
0: यस,
1: तो इतना बड़ा हम पोर्टफोलियो को एक विलन का रूप कैसे दे सकते हैं, ये गलत है. हाँ, मानता हूँ शनि जो है एक जस्टिस के जैसे उसको ट्रीट किया जाता है,
0: न्याय के लिए बोलते हैं,
1: कर्म फलदाता बोलते
0: हैं. कर्म फलदाता बोलते
1: हैं, मगर थोड़ा सा डिसिप्लिन मांगते हैं शनि. अगर लाइफ में डिसिप्लिन आएगा तो ये कर्म फलदाता इतना कर्म देंगे, इतने फल देंगे जिसका कोई हिसाब ही नहीं है. मगर जहां पर आप थोड़े से डिसिप्लिन से हट जाते हैं, अपनी लाइफ में थोड़ी सी नाजायज हरकतें करते हैं, तो वहां पर ये जो है दंडनायक शनि भी बन जाते हैं. इसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे के इन्होंने एक विलन का रूप दे दिया है. मगर शनि किसी भी हिसाब से विलन नहीं है, उनसे बड़ा हीरो कोई नहीं है, अगर आप उनकी वैल्यू समझ सकें.
0: ऑलराइट, तो हमें ये पता चला कि यहाँ तो शनिदेव की महिमा की बात हो गई थोड़ी सी, और नंबर 8 आपने कहा कि शनिदेव से रिलेटेड रहता है, ये उनका नंबर है.
1: उनका नंबर है,
0: तो उससे अगर मेरा नंबर बर्थ नंबर 8 है या 26 है या 17 है, तो मेरी लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? नंबर्स डू वंडर्स.
1: सबसे पहले तो या तो आपका बर्थ 8 को हुआ है या 17th को हुआ है या 26th को हुआ है
0: जी,
1: तो आप शनि से गवर्न होते हैं, आपका बर्थ नंबर जो है वो 8 हो जाएगा. अब अगर हम बात करें हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पिछले 3 टर्म से वही हैं, इनसे पहले जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी नंबर 8 से रूल होते हैं. हमारे सुपरस्टार धर्मेंद्र जी, शिल्पा शेट्टी, सब नंबर 8 से रूल होते हैं.
0: आशा जी,
1: और आशा भोसले 8 सितंबर, डेफिनेटली यस. तो कितना बड़ा पोर्टफोलियो है शनि के पास में. सुंदर पचाई, ही इज ऑल्सो नंबर 8. उनका शायद मूलांक तो नहीं, भाग्यांक उनका 8 है.
0: अच्छा, तो अच्छा, एक तो मुझे ये भी समझना है कि मूलांक, जैसे हम लोग जनरली तो मूलांक देख पाते हैं कि बर्थ डेट क्या है, जैसे आपने 3 बताई, मूलांक और भाग्यांक
1: मैम, जैसे वो खुद ही अपने नाम को खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है, भाग्यांक, इसको लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं। इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, ग्रेड फोर मैथ है, अपनी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर ऐड कर लीजिए। जैसे मेरा जन्म हुआ था January 3rd, 1972 को, तो मेरा बर्थ नंबर January 3rd से 3 हो जाएगा। और अगर मैं अपनी सारी डिजिट्स को ऐड कर लूंगा तो मेरा लाइफ पाथ नंबर या मेरा डेस्टिनी नंबर 5 पे आ जाएगा।
0: अच्छा,
1: तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी सारी डिजिट्स को ऐड कर लीजिए और उसको एक सिंगल डिजिट पर रिड्यूस कर लीजिए, तो जो नंबर निकल के आएगा वो आपका लाइफ पाथ नंबर होगा।
0: Okay.
1: और न्यूमरोलॉजी में 70% बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर की आपस में कंपैटिबिलिटी कितनी है, न्यूमरोलॉजी का बेस यही है।
0: ओके. और किसका असर ज्यादा होता है हमारी लाइफ में, आपका मूलांक का या भाग्यांक का?
1: वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैम देखिए, बर्थ नंबर होता है कि आप कुछ गुण लेके पैदा होते हैं, राइट? आपके पास कुछ आपकी नेचर जिसको बोलते हैं, जैसे आप नंबर 1 वाली हैं तो यू आर अ बॉर्न अ लीडर, राइट? मगर आपका जैसे जैसे आपका टाइम बीतता है धरती पे, आप पढ़ाई करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं, तो उन सारे एक्सपीरियंसेस के बाद में आपकी डेस्टिनी आती है, राइट? तो आपकी एजुकेशन है, आपके एक्सपीरियंसेस है, लोगों से मिलना विलना, उठना बैठना, जो भी आपको एक्सपोजर मिलता है उस हिसाब से आपकी डेस्टिनी डिफाइन होती है।
0: तो डेस्टिनी आप बना रहे हैं?
1: डेस्टिनी बना तो रहे हैं मगर कुदरत ने पहले ही बना के रही है।
0: अच्छा, उसको हम कैसे रिसीव कर रहे हैं?
1: आप, आपका बर्थ नंबर जो है, जो आपके गुण है वो आपके, ऐसा सोचिए कि बर्थ नंबर आपकी पढ़ाई है और करियर जो है वो आपका भाग्यांक है, डेस्टिनी है, राइट? तो जो आपने अगर अपने ही फील्ड में पढ़ाई की है तो आपको जॉब में या आपके बिजनेस में या जो भी आप काम कर रहे हैं करियर में आपको हेल्प मिलेगी, राइट? अगर आपने पढ़ाई करी है इंजीनियर की और बन गए आप डॉक्टर गए हैं या कुछ भी ऐसा जिसमें आपकी एजुकेशन मैच नहीं होती है, तो वहां पर गड़बड़ आती है।
0: ठीक है,
1: यही रिलेशनशिप सबसे इम्पोर्टेंट है।
0: ठीक है, मैं एक कॉलर लेती हूँ और उसके बाद हम कॉल्स लेते रहेंगे। आप हमें ध्यान रखें, स्टूडियो के नंबर 4165930055। बीच बीच में आपको छोटे छोटे गाने भी सुनवाती रहूँगी। हेलो जी, आपका मुझे क्वेश्चन बताएं और डेट ऑफ बर्थ और नाम बताना चाहें तो नाम भी बताएं।
2: हेलो
0: हेलो, योर क्वेश्चन एंड डेट ऑफ बर्थ प्लीज।
2: माई डेट ऑफ बर्थ इज 29/10/1990 एंड मेरा क्वेश्चन ये है, लाइक आई जस्ट वांट टू नो अबाउट द डेट ऑफ बर्थ इटसेल्फ। And I actually मैं baking और cooking pursue करना चाहती हूँ। It's my passion, so I just wanted to know about that.
1: Okay, just give me a quick second.
0: So thank you for your question. Our
1: 1990
0: तो हो भी नहीं सकता। जी 1990।
2: अच्छा, तो डरने वाली बात होगी ना।
0: आई नो, डरने वाली बात होगी।
1: नहीं नहीं,
0: कॉल कहाँ से कर रहा है कोई हमें? जी
1: आप एक बार अपना क्वेश्चन फिर से बोलेंगी प्लीज। आप बेकिंग या बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं, राइट?
2: बेकिंग या कुकिंग में मेरे को एक बिजनेस अप्रोच रखनी है। आई वाज जस्ट वांटिंग टू नो कि मैं वो परस्यू कर सकती हूँ या नहीं।
1: एब्सोल्युटली कर सकती है मैम। देखिए, आप अभी मैं बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर बता रहा था, आपका बर्थ नंबर 29 से 2 हो जाता है तो क्रिएटिव तो आप बाय डिफॉल्ट ही हैं, राइट?
2: एंड
1: डेस्टिनी आपकी 4 पे आती है, तो 4 नंबर को वैसे भी हाथों से काम करना बहुत पसंद है।
2: हाँ जी,
1: तो आपको आपके हाथों में कुछ कुछ जादू? मैं बोलता हूँ कुछ जादू है, यू नो यू कैन क्रिएट, मतलब वेस्ट में से भी बेस्ट निकाल सकती हैं आप।
0: इंटरेस्टिंग।
1: और क्रिएटिविटी बहुत है, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी अलग होगी, आर्टिस्टिक टच है आपके पास में,
2: राइट? आई थिंक सो, आई वांट टू बिलीव सो, बट या
1: नो, यू हैव टू टेल मी।
0: वो ये पूछ रहे हैं कि वो सही गैस कर रहे हैं आपके बारे में जो नंबर से,
2: राइट? आई मीन आई ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ लाइक यू नो व्हाटएवर आई गेट, सो मतलब मेरी कोशिश यही रहती है।
1: And I'm sorry, ma'am, आपने इंस्टा पे मेरे को मैसेज किया था, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, बट यू वर देयर ऑन माय लिस्ट।
2: हाँ जी, हाँ जी, यस यस,
1: ठीक है, विल गेट इन टच। बट यू कैन डेफिनेटली एक्सेल, यू विल नॉट डू वेल बट यू कैन एक्सेल इन योर दिस फील्ड।
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू,
1: यू वेरी वेलकम।
0: एक और क्वेश्चन लेने की कोशिश करती हूँ, वरना हम सीधे गाने पे चलते हैं। हेलो जी, हेलो जी, आपका कोई क्वेश्चन है सर से? डू यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग? मुझे लगता है उन्हें हमारी आवाज नहीं आ रही. हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, देन आई विल बी टेकिंग मोर क्वेश्चन सर. और आवाज हम नंबर 8 के बारे में बात कर रहे हैं. स्टूडियो के नंबर बता दूं 4165930055 फॉर योर क्वेश्चन.

0: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन्ड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: राइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं CMR 101.3 FM शो है ये फिल्मी नुक्कड़. मैं स्वाति हूँ, साथ में पयस्विनी है और हमारे साथ हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट अनुज ओब्रॉय जी जुड़े हुए हैं इन द सेगमेंट नंबर्स डू वंडर्स. आपके सवाल हम लेते रहेंगे. स्टूडियो का नंबर 4165930055. पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत आसान है, आपको बस इस नंबर पर डायल करना है और जब हम आपका कॉल पिक करेंगे आपको सिर्फ ये पूछना है, बताना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आपका सवाल क्या है. अपने लिए पूछना चाहते हैं तो भी, किसी अपने के लिए पूछना चाहते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ फुल आपको पता होना चाहिए, उनके लिए सवाल अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो. लेते हैं पहला कॉलर. हेलो जी.
2: या हेलो
1: जी, आप अपना सवाल और डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं.
2: अच्छा, ओके. मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24/09/1949.
1: जी, एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन सर?
2: द क्वेश्चन इज, यू नो, सिंस आई वाज बोर्न आई हैव ऑलवेज बीन अवे फ्रॉम ऑल माय फैमिली एंड क्लोज रिलेटिव्स. इवन व्हेन आई वाज 2 इयर्स ओल्ड आई लॉस्ट माय मदर, राइट? या सो आई वाज वंडरिंग, यू नो, व्हाई इज इट लाइक दिस, यू नो, दैट आई हैव ऑलवेज बीन अवे फ्रॉम ऑल माय रिलेटिव्स एंड क्लोज रिलेटिव्स.
1: वेरी जेन्युइन क्वेश्चन. देखिए, ऐसे क्वेश्चन कम पूछते हैं लोग, बट मुझे लगता है ये ऐसा सवाल है जो अगर किसी के साथ हो तो वाकई बॉदर करता है.
3: बिल्कुल करता है
1: जी.
3: सर, अपनी डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से देंगे प्लीज.
2: अच्छा, 24/09/1949.
1: और मैं बाकी लिसनर्स को बता दूं, स्टूडियो का नंबर 4165930055 फॉर योर क्वेश्चंस.
3: सर देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो कुछ ऐसा है नहीं जिससे इतना ज़्यादा वो कुछ दिखे. सर देखिए, आपको मैं एक थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ.
2: I'll
3: tell you a small story here, you know.
2: Okay.
3: Sometimes, you know, your fate is not in your own hands. You are doing somebody else's destiny or somebody else's karma. I'll give you an example here, like Abhimanyu.
2: Okay.
3: You know, Mahabharata, Abhimanyu?
2: Yeah.
3: He was originally the son of, not Arjuna, but he was originally the son of Moon, Chandrama.
2: Okay, Chandrama.
3: So,
2: okay.
3: Chandrama, every god was contributing in that battle. So, this guy, Chandrama, said that I cannot part with my son. So, because of the pressure around him, he was forced to part with his son. So, he put a condition that Abhimanyu will only part with me for 18 years. 18th year and the day one, he has to be back with me.
2: Mm-hmm.
3: Right?
2: Mm-hmm.
3: So it was not Abhimanyu's destiny, but it was somebody else's destiny which forced for his premature death.
2: Okay.
3: Right? But this is a very interesting question, you know. I've never thought about this in these lines. I will definitely do my homework here.
2: Okay, no problem.
1: Thank you, sir. Thank you so much for your interesting question. I really appreciate when you ask questions and I really appreciate Anuj ji for this honesty. वो जब बताते हैं कि भी इस तरह के एक्सपीरियंस में कई बार क्वेश्चंस नहीं आते, तो उस तरह की आपके एक्सपीरियंस में ही रियली वॉन्ट्स टू नो एंड आपके साथ ये फिर से कनेक्ट करेंगे सर. हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. आपका सवाल सर और योर डेट ऑफ बर्थ. हेलो
4: हेलो,
1: योर क्वेश्चन एंड डेट ऑफ बर्थ प्लीज.
4: हाँ, मुझे मेरी बेटी के लिए पूछना है.
1: हाँ जी, आप उनका डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन बताएं.
4: August 10th, 2003.
1: August 10th, 2003.
4: Yeah, her career and her future family. Sorry.
3: You don't need to worry about her.
4: Okay.
3: She's a born leader. She has a lot of good leadership skills, and she excels in communication. So anything regarding communication is her forte. She can go into media, she can go into glamour side, she can do anything. banking. Very, very good. Very strong your date of birth.
1: And about family?
4: Yes.
3: Well,
4: इसका शादी का यो
3: मैम नंबर वन वाले होते हैं ना थोड़े से इनकी नाक ऊंची होती है
4: वही तकलीफ
3: है अदरवाइज शी इज अ लवली पर्सन
4: ओके
3: ऑलराइट
4: ओके थैंक यू
3: वेरी वेरी गुड लक फैक्टर
4: थैंक यू मैम
1: चलिए सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट कॉलर की तरफ हेलो जी व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन जिनके लिए भी पूछ रहे हैं
5: Hello.
1: Hello. Date of birth and question, Hi. Please. Hi.
5: Hi. My date of birth is 19th March 1969. And my question is, I'm investing in stocks. I'm earning at a slow rate, but can I go for trading or speculation or both or either one? If not, what kind of business can I do?
3: Sir, you can invest, no doubt, but your date of birth does not really support too much of speculation. Long-term investment, yes. Finance is a very good field for you, and you can do any healthcare or anything related to water.
5: What about trading? Not speculation, but trading.
3: Trading, stock markets. Stock trading you can do, but more better for you would be long-term investments.
5: Okay, and some business where it is kind of liquid or something that you
3: mean? Yes, liquid. Anything to do with liquid suits you more than anything else.
5: Like I can go into for oil exports or oil trading or...
3: Definitely. Oil. Anything to do with any kind of liquid.
5: Okay. Thank you, sir.
3: You're very welcome, sir.
1: Chaliye, chalte hain. Next caller ki taraf. Hello. Hello, ji. Your date of birth and the question.
6: Hello. I would like to ask for my daughter as well.
1: Mm-hmm.
6: Her date of birth is 19 August 2009.
1: Okay. And your question, please.
6: About her future and her, like, I don't know, she's still confused where to go.
1: Where to go in what sense? Like career-wise?
6: In career-wise, yeah.
1: Okay.
3: Confusion definitely is her middle name, but she's a very strong personality anyways. 19 is, you know, the strongest in one. But healthcare sector suits her very, very well. Anything to do with caregiving.
6: The healthcare, like a medical field?
3: Anything to do with, you know, where healthcare or anything caring, like a nurse or, a old age home or anything where, you know...
1: There is a care involved.
3: Care involved. Love, care. And she could be a very good artist as well. I'm sure she has some artistic skills in her.
6: Okay. She's just saying right now she's confused where to go, like,
3: Healthcare is definitely very good for her.
6: And what about her health?
3: Health is fine, just a bit of emotion content is a bit too high. Other than that, it's fine.
6: Oh, thank you so much.
3: You're very welcome, ma'am.
1: Okay, next caller. Thank you. Next caller, hello G, your date of birth and your question, please.
7: Hello.
1: Yes, hi, your date of birth and question?
7: Yeah, I'll ask my question first. And then I'll check the date of birth.
1: Sorry, please again?
7: Yeah.
3: Okay. Go ahead, sir. Go ahead.
7: Yeah. I have a question that I don't know my date of birth, actually. Like, it's whatever date I have is the first date.
1: Okay, aap keh rahe hain ki you don't have a correct date with you for your date of birth. Whatever
7: correct.
1: You have is a false date.
7: Yeah. Documented date.
1: Documented date and it is not a correct date. You are sure correct, about it.
7: Correct, correct. So, how the numbers are going to help me?
1: Good sir, question.
3: How do you expect me to help you? You tell me. See,
1: Achha,
3: you're asking about numbers and you don't have the numbers with you.
1: Achha, aisa ho sakta hai ki, Anuji ke numbers, jaise hum kehte hai na ki hum jis number ko jee rahe hai, ki inhone jo date of birth apni maan li hai documents mein, wo inki correct date of birth ban jati hai.
3: Sir, ma'am, bilkul ban, par uska effect nahi aayega kabhi
1: bhi. Uska effect nahi hota.
3: No, this is false, you know.
1: Achha.
3: This is not true. So, sir, aap mere se off-air baat kar lijiye, to hum aapke traits jaan ke aapki date of birth guess karne ki koshish kar sakte hain.
7: Sure, because, you know, my wife is like, trying to guess my, whatever.
3: Never mind, sir, we will guess it together.
1: Guess, guess game aap log khel sakte hain milkar.
3: Theek hai sir?
7: Okay, thank you.
3: Because, you know, without numbers, main kya karunga na, this time on air.
7: Okay.
1: मैं अनुज जी का नंबर यहाँ जरूर बता देती हूँ आपको, 6473308555। इस नंबर पे जो भी लोग आज रीच आउट नहीं कर पाते हैं या उनके कुछ क्वेश्चंस उसके बाद रह जाते हैं वो प्लीज बात कर सकते हैं, 6473308555। एंड इनकी वेबसाइट है numbersdowonders.com। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो जी, आपका सवाल एंड योर डेट ऑफ बर्थ इफ यू हैव अ करेक्ट वन।
3: That's important.
1: Hello? Ji, please bole apna date of birth and your question.
8: Hello,
1: can you hear us?
8: Yes.
1: To please.
8: October 1980.
1: Kaunsa October?
8: 30
1: October, 30, 1980. And your question, sir?
8: I'm in a trading business, so I'd like to know how it is to me. Good or not?
3: So what kind of trading are you into?
8: Daily trading, like NASDAQ.
1: Those shares wala trading.
3: Share market.
8: Yes.
3: Sir, you know, instead of trading, if you had a brokerage or some kind of a, where you can earn commission, that suits you better than actually trading.
8: Okay.
3: Like share brokerage or anything like that, you know.
8: Okay.
3: Commission work suits you very, very well. You're a knowledgeable person. You have a lot of wisdom in you. And you have a very, very good head over your shoulders. So, use your brains to make money without investing money. That is the best advice for you.
8: Thank you, sir.
3: You're very welcome.
1: All right. Hum chalte hain next caller ki taraf. Hello, ji. Hello.
9: Yep.
1: Aapka sawal bataye aur saath mein date of birth.
9: Mera naam hai Navpreet.
1: Ji.
9: और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1988। और मेरे को बेसिक अपनी लाइफ के बारे में जानना है, जनरल
1: कि जिंदगी कैसी है। लाइफ सही है, टेंशन नहीं है, ये याद रखें बस।
3: बढ़िया है सर, लगता है स्पोर्ट्स में काफी अच्छे रहे होंगे आप।
9: बचपन में क्रिकेट बहुत खेला है सर।
3: लगता है आपकी डेट से। सर कंफ्यूजन आपका मिडिल नेम है, उसको अवॉइड करिए। एंड यू हैव अ टेंडेंसी ऑफ ओवर थिंकिंग एंड ओवर ट्रस्टिंग अदर्स।
9: बिल्कुल सर।
3: तो इस चीज पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए सर। पैसे कभी किसी को उधार मत दीजिएगा एंड कभी पार्टनरशिप में काम मत कीजिएगा।
9: ठीक है सर, ठीक है।
1: अच्छा, मिडिल नेम क्या है इनका? आपने बोला मिडिल नेम में प्रॉब्लम है,
3: ओवरथिंकिंग, कंफ्यूजन। सर ट्रस्ट मत करिए किसी को जल्दी। दैट इज माय एडवाइस टू यू।
9: मैंने अभी धोखा खाया सर रिसेंटली।
3: सर मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता था, बट डिसअपॉइंटमेंट, धोखा एंड ये नंबर 7 के बहुत कॉमन ट्रेट्स है। बट आपकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, आप उससे उभर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम।
9: अगर पार्टनरशिप करनी है किसी से, डॉक्यूमेंटेड कर सकते हैं किसी कंपनी के साथ?
3: किसी से भी नहीं करनी सर पार्टनरशिप।
9: ठीक है सर।
3: पार्टनरशिप विज लीड यू टू डिसअपॉइंटमेंट्स विच इंटरनल विल लीड यू टू धोखे।
9: ठीक है, आई गॉट इट सर,
3: थैंक यू।
1: चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो जी, योर क्वेश्चन एंड योर डेट ऑफ बर्थ, जिसके लिए भी सवाल पूछ रहे हैं। हेलो, हमें आवाज़, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हमें नहीं आ रही है क्योंकि, तो अभी इस कॉल को हम होल्ड पे रखते हैं, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं।
10: हेलो,
1: आ गए जी, अब आ गए जी। आपका क्वेश्चन और डेट ऑफ बर्थ बताएं क्विकली।
10: 10th जनवरी 1985। I've started new business. ये metal में ठीक रहेगा कि नहीं?
1: Metals में आपका business है, ठीक रहेगा या नहीं? 10th January, मेरी best buddy 10th January से है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे दोस्त से बात हो रही है, पर चलें ठीक है।
3: सर metal में क्या exactly कर रहे हैं आप?
10: Copper, buy and sell.
3: सर copper सीधा सीधा सूर्य को represent करता है। Number 10 से आप 1 हो जाते हैं, suits you. अगेन नो पार्टनरशिप एंड नो लेंडिंग मनी टू एनीबडी।
10: नो पार्टनरशिप तो नहीं कर रहा।
3: कॉपर आपको सूट करता है, बट आर यू ट्रेडिंग और व्हाट आर यू डूइंग एग्जैक्टली?
10: वी आर बाइंग। सी देयर इज अ कंपनी, दे प्रोड्यूस सम सॉर्ट ऑफ कॉपर प्रोडक्ट्स, वी बाय दोस एंड देन वी सेल।
3: ओके, ठीक है सर। कॉपर आपको सूट करता है सर, कॉपर डायरेक्टली सूर्य को रिप्रेजेंट करता है एंड यू गवर्न्ड बाय सूर्य, सो इट्स परफेक्टली फाइन।
10: एक और चीज बताइए, हेल्थ कैसी रहेगी? मतलब क्वाइट स्ट्रेसफुल रहता है।
3: थोड़ा सा हेल्थ का है इशू।
10: अच्छा,
3: थोड़ा ध्यान रखिए अपना.
10: और हाउ अबाउट द स्ट्रेस लेवल?
3: बाकी 8 कॉल्स अभी वेट पे है सर. 1 क्वेश्चन एट अ टाइम. आई एम सॉरी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑफलाइन एंड आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस.
1: चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो जी, व्हाट्स योर क्वेश्चन एंड डेट ऑफ बर्थ? हेलो जी, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन. मुझे लगता है हम सुन पा नहीं पा रहे हैं इस नंबर को. हम कैन यू हियर अस? चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं. हेलो जी. हेलो. हाँ जी, आपका क्वेश्चन एंड योर डेट ऑफ बर्थ प्लीज. व्हाट्स योर क्वेश्चन एंड डेट ऑफ बर्थ? हेलो.
11: हेलो.
1: हेलो जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपका सवाल पूछे और प्लीज योर क्वेश्चन एंड डेट ऑफ बर्थ.
11: कैन यू हियर मी?
1: यस आई कैन.
11: Yeah, September 13, 1978.
1: September 13, 1978. Yes, 1978.
11: 1978. Mm-hmm. Yeah, 1978. And your
1: question?
11: Is financial business good for me or not?
1: Financial business works for him or not?
3: Sir, any kind of brokerage will work well for you.
11: Any
3: kind of brokerage, I said.
11: Okay.
3: Okay, that.
11: All right.
3: That works very well for you.
11: Yeah, thank you very much.
3: You're very welcome.
1: Okay, हम next question की तरफ चलते हैं. Hello जी. Hello.
12: Hello.
1: हाँ जी, आपका सवाल और date of birth जिनके लिए पूछ रहे हैं.
12: 11th November 1982. And health and career.
1: Health and career. Meanwhile, studio का number 416593005 for your questions.
3: Ma'am, what do you do right now?
12: I'm a software developer.
3: It's, as per your date of birth, it's not the best career, but not bad at all.
12: Okay, what should I, what will be the best career for me?
3: Software is okay. You know, anything to do with luxury.
12: Okay.
3: Anything to do with female fashion. Like okay. Artificial jewelry, pure jewelry, anything to do with fashion, glamour, media, that those are your strengths.
12: I'm thinking of starting a business, so this area would be good for me.
3: Yeah, I just gave you a few examples, you know. Anything to do with luxury is your forte.
12: Okay, and what about health?
3: Health can be an issue, but not right now. You know, excess of everything is bad. So your water element is exceeding everything else. It's like, you know, 5 times 1. 1, 1, 1, 1, 1, 9.
12: Yeah.
3: So we need to balance this, you know.
12: So, like, health will be an issue in older age?
3: No, not as an issue, but, you know, we have to balance the 5 basic elements. Here, what is happening is some key elements are missing and there is excess of number 1. Right? So, that creates an imbalance.
12: Okay.
3: Okay?
12: Okay.
3: All right, ma'am.
1: ऑल राइट, अब एक और कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो जी. हेलो, कैन यू हियर अस? मुझे लगता है हमें आवाज़ नहीं आ रही है इनकी. जो कॉलर है प्लीज़ अपना दोबारा ट्राई करें या तो हमें. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं अनुज जी, बहुत सारी चीज़ें आज आपने हमें समझाई, भाग्यांक की, मूलांक की. अगर मैं इसे डिटेल में समझना चाहती हूँ तो आप अपने कोर्स के बारे में मुझे बताएं कि हाउ आई कैन जॉइन एंड व्हाट आई एम गोइंग टू लर्न इन दैट कोर्स.
3: मैम, इट्स अ 30-day कोर्स फ्लैट अबाउट, यू नो, 95% ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड 5% ऑफ वास्तु एंड सॉरी नॉट 5 बट 90% न्यूमरोलॉजी, 5% वास्तु, एस्ट्रोलॉजी एंड आयुर्वेदा. इट हैपेंस एवरी मंथ, सो इट्स अ ऑन गोइंग थिंग. यू कैन रजिस्टर एंड यू कैन डू इट एनी टाइम यू वॉन्ट. गिव मी 30 days, आई चेंज योर लाइफ.
1: 30 days में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और जैसा कि अनुज जी कहते हैं कि ही कैन चेंज योर लाइफ, क्योंकि आप कुछ ऐसा सीखते हैं जिसमें आप अपनों की और अपनी खुद की भी मदद कर सकते हैं. वैसे अगर आप नहीं सीखना चाहते तो अनुज जी आपको कैसे कांटेक्ट किया जाए?
3: मैम देखिए, मेरे पास आपके कॉलर्स के लिए एक बेहतरीन ऑफर है.
1: अच्छा, बताएं.
3: मैम, आई कम एट अ कॉस्ट.
1: जी
3: राइट, बट I've seen people contacting me and then after asking my price, they don't actually really, you know, those leads are not converted.
1: Yes.
3: So it's a win-win situation for everybody. Sare audience ke liye open offer hai. मैं आपको मात्र $100 में $100 में आपको मैं 51 पेजेस की रिपोर्ट दूंगा जिसमें आपके बारे में एवरीथिंग वुड बी मैंशनड एंड वो रिपोर्ट समझाने के लिए मैं 20 से 25 मिनट आपके साथ में स्पेंड करूंगा.
1: अरे वाह.
3: तो आपको अपने बारे में सब कुछ पता चल जाएगा. बट हाँ, इसमें थोड़ा सा पढ़ना आपको खुद पड़ेगा. 51 पेजेस है. इट वुड इंक्लूड लाइक यू नो नेक्स्ट 10 ईयर्स ऑफ योर फ्यूचर. एनीथिंग एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. तो एक ये ऑफर मैं देना चाहता था आज सब लोगों के लिए.
1: ओके. तो एक ऑफर बहुत अच्छा है मेरे सब लिसनर्स के लिए एंड दैट इज कि आप सिर्फ $100 देंगे अनुज जी को और वो आपको 51 पेजेस की एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके आपके बारे में देंगे. उसको समझाएंगे भी 20-25 मिनट में आराम से डिटेल में, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे और ये बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे आप लोगों के लिए, फिल्मी नुक्कड़ के लिसनर्स के लिए.
3: फर्स्ट टाइम है इससे ये, कभी भी मैंने प्राइस अपना कम नहीं.
1: सो स्वीट ऑफ यू. थैंक यू सो मच.
3: एंड आई डोंट इवन नो हाउ लॉन्ग दिस ऑफर वुड लास्ट.
1: चलें तो हाउ लॉन्ग कभी नहीं पता, तो फटाफट इसे ग्रैब कर लें. अनुज जी को आप कॉल कर सकते हैं 6473308555555. एक और लास्ट कॉल लूंगी क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है एंड देन वी आर गोइंग टू से बाय आफ्टर दिस. जी हेलो.
13: हेलो.
1: हाँ जी, आपका सवाल बताएं और अपना कोई डेट ऑफ बर्थ.
13: नहीं, मेरा सवाल था अनुज जी से कि आपने ये कोर्स के बारे में जो बताया यू कैन चेंज द लाइफ, तो जो यू आर बॉर्न विद अ पर्टिकुलर नंबर, हाउ इज दैट चेंज? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट डाउटिंग.
1: अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जिस जो चीज हम बॉर्न है जिस नंबर से, उससे आप चेंज कैसे कर सकते हैं लाइफ?
3: मैम, सर, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि आप उस नंबर को या अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं. बट हर नंबर का कुछ नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं. Right?
13: Okay.
3: So it is all about, I always say, numerology is no miracle. It is all about balancing your life. So okay. Every number has certain weaknesses, but it has every number, you know, be it Shani, be it Rahu, every number has some strengths as well.
13: Mm-hmm.
3: So my job is to identify those strengths as based on your date of birth and get you the best out of it. That is why I say, sir, enhance your chance. Everybody is born with a chance. We have to enhance it.
1: कई बार हमें पता ही नहीं होता. वंस यू नो द स्ट्रेंथ्स एंड द वीकनेसेस, यू वर्क मोर ऑन योर स्ट्रेंथ्स जिससे कि आप उससे बेस्ट बना सकें. वीकनेसेस को पे या तो आप वर्क करते हैं या उसको आप वो एनर्जी आप स्ट्रेंथ्स पे लगाते हैं. Am I right?
13: Right.
3: कुछ हद तक सर. वो थ्री इडियट्स में आप फिल्मी नुक्कड़ है तो फिल्म एक बार ही तो फिल्मी बात होनी है.
1: प्लीज
3: सर, वो थ्री इडियट्स में बोलते हैं ना कि सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं कि सिंगर बन जा. राइट. सचिन तेंदुलकर हैड सर्टेन नंबर्स इन हिम, सर्टेन अलाइनमेंट वाज देयर, दैट इज व्हाई ही बिकेम सचिन तेंदुलकर. राइट. दैट इज प्रिसाइसली व्हाट आई डू.
1: थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन एंड थैंक यू अनुज जी फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस. और आपने जो ऑफर हमारे लिसनर्स के लिए दिया है $100 वाला एंड फुल 51 पेजेस की रिपोर्ट प्लस 20-25 मिनट्स की कंसल्टेशन भी इंक्लूडिंग दैट रिपोर्ट, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच.
3: वेरी वेलकम मैम. एंड दिस इज नॉट अ जनरलाइज्ड रिपोर्ट, दिस विल बी योर पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट.
1: चले एंड दिस ऑफर इज वैलिड ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. प्लीज मेक यूज ऑफ दिस 6473308555.
3: थैंक यू.
14: ही इज ब्रेकिंग थ्रू द मिडफील्ड.
15: डॉन वैली नॉर्थ हंडे आपको दे रहा है मौका फीफा वर्ल्ड कप 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज. Winter tires या extended warranty ले और हर एक के साथ पाएं एक extra entry. आज drive करें, कल जीते. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.

Well, that was 80s की रॉकी सुपरहिट फिल्म से गाना जिसे संजय दत्त ने अपना धमाल से डेब्यू भी किया था और डायरेक्टर थे उनके पापा सुनील दत्त. नेपोटिज्म का शोर कोई नहीं करता था भाई तब, पर सुनील दत्त को क्रेडिट देना भी पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली ही वॉज ऑल्सो अ टैलेंट स्पॉटर बिसाइड्स बींग ग्रेट एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड इवन अ पॉलिटिशियन. कहते हैं अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना का टैलेंट स्पॉट करने का क्रेडिट भी उन्हें काफी सारा जाता है. बाकी खुद फिल्म इंडस्ट्री में कैसे स्पॉट हुए थे, यूं ही नहीं हुए थे. एक अच्छी सी आवाज थी उनकी और जब वो आवाज लोगों ने समझी तो फटाफट फिल्मों में आए. और उससे पहले लेकिन कहते हैं बस कंडक्टरी भी की उन्होंने और आवाज की दुनिया में भी थे, यानी कि आर्जिंग भी करी थोड़ी सी कुछ टाइम एंड देन स्टार्ट हुआ फिल्मों का सफर. नेगेटिव रोल्स टू प्रॉपर हीरो वाले रोल्स, कॉमेडी टू कैरेक्टर रोल्स सारे बखूबी किए हैं. अवार्ड शो की लिस्ट लंबी है, वहां ना जाते हुए फिलहाल मैं चलती हूँ और छोड़ी जाती हूँ आपको इस वन ऑफ माई फेवरेट गाना ऑफ हिज फ्रॉम वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स. बड़ा सेंसेशन.

0: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
1: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। अमरीकी फौज का कहना है कि उसने जनूबी ईरान पर नए हमले किए हैं जिनमें ईरानी मिजाइल तनसीबात और उन कश्तियों को हदफ बनाया गया है जो बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थीं। उधर पासदारा ने इनकलाब ने कहा है कि हम जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के हक को जायज और यकीनी समझते हैं। ईरान की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने खबरदार किया कि अगर ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की नई जारहियत की गई तो उसका सख्त और पहले से ज्यादा शदीद जवाब दिया जाएगा। ईरान ने वाज़ेह किया है कि आबनाए हुरमुस को किसी भी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा और आबनाए हुरमुस से गुजरने का निज़ाम ईरान के तय करदा उसूलों के तहत

0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
1: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458।
2: क्या आपकी विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं, तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट एक साल के बाद कर दें कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ, या अदायगी इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए। सम कंडीशंस में अप्लाई। मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200। It's 416-206-3200।
3: जी हाँ, 416-206-3200 राइट विंडो फोर्स के रबते के नंबर है। अगर आपकी विंडोज लीक हो रही हैं, पुरानी हो गई हैं, रेनोवेट कराना चाहते हैं, घर बेचना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप परेशान ना हो, फौरी तौर पर सुबहानु जी को रबता कर लीजिए 416-206-3200। जो वक्त देंगे उसी में विंडोज चेंज भी हो जाएंगी, और स्पेशल इनके पास प्लान भी हैं जिसमें आप कहाँ अभी इंस्टॉलेशन करवा लीजिए और पेमेंट आप बाद में कर सकते हैं सम कंडीशन में। हमारे साथ मौजूद हैं खुश आमदीद कहेंगे सुमानु जी, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
4: थैंक यू भट्टी साहब।
3: अच्छा, एनर्जी स्टार क्या, कौन सी विंडोज होती हैं, ये जरूर बताइएगा लोग, क्योंकि डिफरेंट किस्म के मार्केट में आप देखें तो बहुत सारी चीजें हमें सुनने को मिलती हैं।
4: जी, तो भट्टी साहब, एनर्जी विंडोज जो है वो एक गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है जिसमें गवर्नमेंट पूरा चेक करती है, लैब में टेस्टिंग होती है, और इससे ये पता लगाया जाता है कि भाई -30, -35, -40 तक विंडो आपकी हीट को अंदर रोक सकती है कि नहीं रोक सकती।
3: okay.
4: तो ये जो सर्टिफिकेशंस होती है भट्टी साहब, ये रिक्वायर्ड होती हैं अगर आपने अच्छी क्वालिटी की विंडो लेनी है जो एटलीस्ट 25 से 30 साल चलेंगी।
3: ओके, सही है
4: जी।
3: अच्छा, इसमें लेयर्स भी होती हैं, ग्लास की लेयर्स विंडोज में?
4: जी भट्टी साहब, इसके अंदर डबल ग्लास होता है और एक ट्रिपल ग्लास की विंडो होती है। नॉर्मली ट्रिपल ग्लास रिक्वायर्ड होता है नॉर्दर्न टेरिटरीज में, जैसे यूकॉन हो गया या नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज हो गई। हमारे जीटी के अंदर डबल ग्लास अगर अच्छी क्वालिटी की एनर्जी स्टार विंडोज है तो डबल ग्लास इज गुड एनफ। आजकल एक चलन चला है मार्केट में, जो हल्की विंडोज होती है तो उसमें जिनके फ्रेम हल्के होते हैं तो लोग कहते हैं कि हम आपको ट्रिपल पे फ्री अपग्रेड कर देंगे। तो फ्री अपग्रेड तो कुछ होता नहीं है, बस वो बेसिकली कवर अप कर रहे होते हैं क्योंकि उनके फ्रेम्स थोड़े वीक होते हैं, तो वो ट्रिपल पे जाना ले जाने चाहते हैं आपको।
3: 416-206-3200 416-206-3200 रबते के नंबर। अच्छा, वारंटी कितनी है, आप जो इंस्टॉल करते हैं विंडोज की कितनी वारंटी होती है, कितना टाइम लगता है? जैसे आपको आज किसी ने कॉल किया तो क्या जब आप जाते हैं तो वो फ्री है, आप जब एवेल्युएट करते हैं जाके देखते हैं, और कितना टाइम लगता है?
4: सो भट्टी साहब, इसके अंदर जो टर्न अराउंड टाइम अब हो गया है वो ऑलमोस्ट 4 to 6 weeks का है। okay. अभी तक 2 to 3 weeks चल रहा था जब तक लीन सीजन था, अब सीजन थोड़ा उठ रहा है।
3: ठीक है,
4: बट लकीली अभी भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, लकीली अभी तक मुझे नहीं समझ आया, लेकिन प्राइस अभी तक रुके हुए हैं। जो हम पहले दे रहे थे 2 महीना पहले, वो भी आज भी वही प्राइस है। सो प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया है।
3: ठीक।
4: और एक चीज और भट्टी साहब, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि लोग ना $200-$300 के पीछे दूसरी कंपनी के पास भाग जाते हैं, तो बट वो ये रियलाइज नहीं करते कि लॉन्ग टर्म में आपकी विंडो की ड्यूरेबिलिटी क्या है। आप पहले प्रोडक्ट को देखिए, चेक करिए, तब आप उसको डिसाइड करेंगे भाई वाकई $300 वर्थ इट है कि नहीं है।
3: बिल्कुल सही,
4: क्योंकि आप जब 15-10 हजार खर्च रहे हैं तो उसमें $300 आई डोंट थिंक शुड मैटर, बट ऑफकोर्स सेंसिटिविटी है। और भट्टी साहब, आपके रेडियो चैनल पे मुझे बहुत अरसों हो गए आते हुए, सो कस्टमर को ये भी समझना चाहिए कि अगर मैं आपके रेडियो चैनल पे हूँ, मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ, मतलब आई एम नॉट समबडी विल रन विद द मनी, है ना?
3: ठीक, बिल्कुल।
4: तो बहुत सारी दुनिया आजकल ऐसे भी काम कर रही है।
3: बिल्कुल ठीक। अच्छा, वारंटी कितनी है जो विंडोज इंस्टॉल होती है?
4: ये 25 साल सर,
3: 25 साल की वारंटी। अच्छा, दूसरा, आप जैसे आजकल की सिचुएशन है, बहुत से लोग हैं घर बेचना चाह रहे हैं फॉर सम रीजन, जाहिर है वो कहते हैं थोड़ा सा रेनोवेट कर लें, विंडोज चेंज करवा लें, तो उसमें क्या है कि मतलब अगर पैसे फिलहाल नहीं है तो कुछ डाउन पेमेंट दे के इंस्टॉलमेंट्स वगैरह बनवा सकते हैं, कैसे प्लान है?
4: बिल्कुल भट्टी साहब, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि फॉर एग्जांपल घर की सारी विंडोज और डोर्स आप चेंज कराना चाहते हैं और आपका बिल आ गया लेट से 10,000। आप 10,000 में अगर आपने $1,500 दे दिए तो हम आपकी आसान किस्तों में एज लो एज $79, $80, $85 ऐसे आपकी किस्त बना के आप आराम से पे करिए, और ये ओपन लोन है, आपका जब दिल करे आप पे कर दें। तो मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम आपको लेनी चाहिए एमर्टाइजेशन उसकी 20 साल की लीजिए, 10 साल की लीजिए, और उसको जितना जल्दी हो पे ऑफ कर दीजिए जैसे जैसे आपके पास पैसे आते जाते हैं, नहीं तो बाकी आपके सर पे कोई लोड नहीं है, मतलब $70-$80 पे, मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन जो सर्दियां पीछे निकली हैं उसे अगर आप देखेंगे तो, और जो आने वाली है अब आगे हमें पता नहीं क्या होने वाला है, तो अगर वो और ज्यादा शदीद पड़ी इस बार तो देन आपको तब बड़ी मुश्किल होने वाली है, और रेट हर चीज के ऊपर जा ही रहे हैं आपको पता
3: है। राइट, लेकिन ये ऑप्शन मौजूद है कि इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है और कुछ डाउन पेमेंट दे दें और कुछ अरसे बाद दें।
4: जरूर,
3: ठीक,
4: जी जी जी जी बिल्कुल।
3: नंबर नोट कीजिए 416-206-3200, 416-206-3200। कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप?
4: तो बस मैं यही कहना चाहूंगा पटेल साहब कि अभी वेदर बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो क्या होता है साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि भाई वाह बहुत बढ़िया मौसम है, क्या चेंज करानी है, लेकिन जब आपके जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको याद आएगा कि आपकी ठंडी हवाएं थी घर में और आपके जो बिल थे पटेल साहब फर्नेस के बिल,
3: सही, वो बढ़ जाए।
4: मैं आपको एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, एक घर में 350-400 का बिल आता था, उनका बिल ऑलमोस्ट 150-200 पर मंथ के हिसाब से गिरा सर्दियों में।
3: क्या बात है जनाब, नोट कर लें नंबर, अभी कॉल कर लें 416-206-3200, 416-206-3200। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, और
4: थैंक यू बड़ी साहब,
3: थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, 7:29 हो गए हैं, न्यूज 7:30 पे होती है, तो फिर मेखल में हम बाद में आज की शायरी ले लेंगे, मैं 2-3 पैगाम दे दूँ और उसके बाद इंशाल्लाह आप तो को कैनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस से ले चलेंगे। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ बोल्टन एंड कैलेडन खुलफा राशिदीन इस्लामिक सेंटर के ज़ेर एहतमाम ईद उल अज़हा की नमाज आपके एल्बियन बोल्टन कम्युनिटी सेंटर में 2 नमाजें अदा की जाएंगी, पहली 8 बजे, दूसरी 10 बजे। एल्बियन बोल्टन कम्युनिटी सेंटर 150 क्वीन स्ट्रीट साउथ बोल्टन में है, और बच्चों के लिए कैंडीज और बलून्स का भी और रिफ्रेशमेंट का भी बच्चों के बड़ों के लिए इंतजाम है, लॉट ऑफ पार्किंग यहाँ अवेलेबल है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप कॉल कर लीजिए 647-400-8004, 647-400-8004। बोल्टन में शायद ये वही जगह है जहाँ पे नमाज हो रही है। अगर अब टोबेको की बात करें तो वहाँ इकरा सेंटर के ज़ेर इहतमाम हर साल की तरह वो भी इस साल भी ईद उल अज़हा की 2 नमाजें होंगी, पहली 8 बजे, दूसरी 10 बजे, कल यानी May 27 को। मिराज बैंकुट हॉल एंड कन्वेंशन सेंटर जो कि 1917 एल्बियन रोड टोबेको में है, वहाँ नमाज ईद उल अज़हा की नमाजें जो है वो अदा की जाएंगी, फ्री पार्किंग, फ्री बलून्स एंड चॉकलेट्स फॉर द किड्स। आप मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल
5: 416-744-2099, 416-744-2099। Good evening, you're listening to Radio Pakistan Toronto. This is me, Vani, with local update. The Canadian government says travelers from Ebola-affected regions will be required to self-isolate for 21 days, while immigration authorities are temporarily suspending decisions on applications from Democratic Republic of Congo, South Sudan, and Uganda. Ontario's Treasury Board says public service employees may be allowed to work remotely during the daytime FIFA World Cup matches in Toronto following union calls for more flexible work options during the tournament and criticism of the government's return to office mandate. A man has been charged with murder after unidentified person found dead in Cabbagetown garage. The city of Mississauga claims Paramount Fine Foods owes $1.6 billion in unpaid naming rights fee. The owner of Trouble Complex at 500 Dawes Road sentenced in connection to safety violations at separate properties. A large portion of downtown Toronto experienced a power outage on Tuesday and it took approximately 4.5 hours for power to be fully restored. Advocates of some Toronto's most vulnerable report growing security escalations around Union Station just as the city prepares for the arrival of World Cup. The organizations raise concern about unhoused population ahead of the World Cup. SIU is investigating an incident where a man was fallen from a high-rise building 11th floor balcony. The Liberal Climate Caucus meets next week after 14 Liberal members sent a letter to the PM outlining their concerns about climate policy and report that the former Environmental Minister Stephen Gilbilt is preparing to quit the party. Hamilton Police says they have arrested 4 suspects who allegedly pulled off a string of a high-end perfume and cologne theft at Shoppers Drug Mart location across the city, in some instances using smash-and-grab techniques frequently seen in jewelry stores' heist. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
3: कनेडियन इंग्लिश एयरलाइंस वानी आपके लिए पेश कर रही थी। आप सुन रहे रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। सऊदी महकमा शुमारियात के मुताबिक इस साल 17,07,301 अफराद ने फरीजा हज अदा किया है। एक्स पर जानी बयान के मुताबिक 15,46,655 हुजाज बैरून मुल्क से आए थे, जिनका ताल्लुक 165 कौमियतों से था, जबकि 1,60,646 मकामी हाजी थे, जिनमें सऊदी शहरी और वहां पर रिहायश पजीर अफराद जो हैं वो शामिल हैं। मर्द हुजाज की तादाद 8,93,396 जबकि खवातीन हुजाज की तादाद 8,13,905 थी। सऊदी हुकाम के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले हुजाज में से 14,85,729 फिजाई सफर करके, जबकि 54,429 हुजाज जमीनी रास्ते से और 6,497 बहरी रास्ते से मुमलकत में दाखिल हुए। गुज़िश्ता साल 16,73,230 अफराद ने फरीजा हज अदा किया था। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। बटकड़ाही की जो पिकिंग लोकेशन है वहाँ पे आपके लिए जून के पहले हफ्ते में 6 जून से हलवा पूड़ी का स्पेशल नाश्ता जनाब शुरू हो रहा है। वो कहते हैं ऐसा जायका आपने कहीं नहीं देखा होगा, इनकी कढ़ाइयाँ तो वैसे मशहूर हैं ही, तो आपको तशरीफ ले जाना है बटकड़ाही का पिकनिंग की लोकेशन 820 किंगस्टन रोड पिकनिंग 905-839-0002 इस वक्त आपके लिए पेश कर रहे हैं आज की शायरी और उसके बाद आपकी मुलाकात कराएंगे सिद्दीक साहब से। ऑल द सॉल्यूशन स्टे ट्यून।
6: जिंदगी गुजरने में देर कितनी लगती है, आशियां उजड़ने में देर कितनी लगती है, मौसमों से करते हो जाने जां गिला यूं ही, आदमी बदलने में देर कितनी लगती है, याद की चताओं पर आंख जब भी रोती है, रूह के निकलने में देर कितनी लगती है, जिंदगी की राहों पर क्यों उदास फिरते हो, जिंदगी बदलने में देर कितनी लगती है, हिचकियां सी आती हैं याद आ रहे हो तुम, सांस के उखड़ने में देर कितनी लगती है, तुमसे जो मोहब्बत है साथ साथ चलते हैं, रास्ता बदलने में देर कितनी लगती है, आज तो सितारे हैं आपकी फजाओं में, आज तो सितारे हैं आपकी फजाओं में, आसमान से गिरने में देर कितनी लगती है, मौसमों से करते हो जाने जां गिला यूं ही, आदमी बदलने में देर कितनी लगती है।

0: வணக்கம். You are listening to Radio Pakistan Toronto.
1: Barbecue Tonight की दूसरी लोकेशन 5165 Dixie Road, Dixie और Emco का इंटरसेक्शन Mississauga में 200 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश, बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं। बारबेक्यू आइटम्स, बिहारी कबाब, सीख कबाब, कड़ाही, बिरयानी, ताजा नान और बेशुमार डिशेज, जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन। पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 9052829868। बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 Dixie Road, Dixie और Emco का इंटरसेक्शन Mississauga में 9052829868।

0: Talabat 6472957861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talabat 6472957861. Talabat 6472957861.
1: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773. कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं. फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773. पाकिस्तान के नंबर वन डेवलपर HMR ग्रुप आपके लिए ला रहे हैं कराची में HMR वाटर फ्रंट. इस प्रोजेक्ट के हवाले से एक्सक्लूसिव इवनिंग संडे 7 जून शाम 5 से 9 बजे तक हिल्टन गार्डनिंग 1870 मैथिसन बुलेवार्ड मिसिसागा में. इस लग्जरी वाटर फ्रंट लिविंग की डिटेल के लिए कराची से HMR की टीम यहां तशरीफ ला रही है. लेट्स कनेक्ट, इनोवेट एंड शेप प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर. आपको इस एक्सक्लूसिव मीट एंड ग्रीट में शिरकत की दावत दी जाती है. रजिस्ट्रेशन के लिए HMR वाटरफ्रंट canada.com पे लॉगिन हो या मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए नजमा मलिक 6478241485 या फरहान अंसार 6479190645.
2: बहुत खुशबू आ रही है खाने में. ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो.
3: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके.
4: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद.
5: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550.
1: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे. अगर आप रिफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी. 2 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन. अभी कीजिए 416-855-9464. शहबाज अकबर साहब के रابطے के नंबर 416-855-9464. ग्रीन स्टार इमिग्रेशन. The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine in karein ya take out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice Pizza Pop. Laziz aur mazedar tandoori chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer: large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, 2 dipping sauce, 3 cans of pop for $24.99 only. For more information and take out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga. अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं. आईकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं. तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं. इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ. बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा. एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रम्पटन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600. क्वींस मैनर इवेंट सेंटर
6: सिर्फ मॉर्गेजेस। दस राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001 लाइसेंस नंबर 12374।
7: जनाब, इकरा सेंटर के जरिए तमाम ईद उल अजहा की नमाज, दो नमाजें होंगी, पहली 8 बजे, दूसरी 10 बजे, मिराज बैंकेट हॉल एंड कन्वेंशन सेंटर 1917 एल्बियन रोड इटोबिको में, और फ्री बलून्स एंड कैंडीज फॉर द किड्स, फ्री पार्किंग है। पहली नमाज 8 बजे, दूसरी 10 बजे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल 416-744-2099 416-744-2099। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम 24 घंटे, माइनस शायद रेडियो पाकिस्तान डॉट एफएम पर सुन सकते हैं। हमारा टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 टीवी। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के निशात हमारे टेलीविजन चैनल पे भी आप इस 2 घंटे के दौरान 7 से 9 बजे जो है बराह रास्त टेलीविजन पे भी देख सकते हैं। रियल सेट के वाले से कोई सर्विस चाहिए, टीम भट्टी से रब्ता कीजिए। कॉल ताला भट्टी 6472957861 6472957861। लीजिए लेंगे अपनी न्यूज़ की तरफ, जो पेश करें जनाब जुबैरुद्दीन साहब।
8: You're listening to CMR FM 101.3।
9: न्यूज के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने।
10: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
9: न्यूज के लिए तावन देते हैं आइकॉन इवेंट स्पेस 6887 डिक्सी रोड मिसागा, डिक्सी डेयरी के इंटरसेक्शन, 3 खूबसूरत हाल, 1200 तक अफराद की गुंजाइश, एम्पल पार्किंग। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आइकॉन इवेंट स्पेस के साथ। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 4374252500। इट्स 4374252500। आइकॉन इवेंट स्पेस। न्यूज के लिए दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट। फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
11: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान टोरंटो है। अब आप जुबैरुद्दीन से खबरें सुनिए। अमरीकी फौज का कहना है कि उसने जुनूबी ईरान पर नए हमले किए हैं, जिनमें ईरानी मिसाइल तंजीबात और उन कश्तियों को हदफ बनाया गया है जो बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थीं। अमरीकी सेंट्रल कमान ने एक बयान में कहा कि ये हमले अपने दिफा में किए गए और इनका मकसद अपने फौजियों को ईरानी फौज की जानिब से लाहक खतरात से बचाना था। उधर ईरानी पासदारा ने इनकलाब ने एक बयान में खबरदार किया है कि वो अमरीकी फौज की जानिब से जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का हक जायज और यकीनी समझते हैं। पासदारा ने इनकलाब का कहना था कि उसने एक RQ-4 ड्रोन और एक F-35 लड़ाका तैयारे पर भी फायरिंग की है, जिसके नतीजे में वो पसपा होकर इलाकाई पानियों से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। ईरान की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने खबरदार किया कि अगर ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की नई जारियत की गई, तो उसका सख्त और पहले से ज्यादा शदीद जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान के मुताबिक ईरान अपने कौमी मफादात और इलाकाई सलामती के तहफ्फुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। ईरानी फौजी